0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: श्रोतागण, ई प्रातः कालीन बेला में स्वागत बा रउआ सबके प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल में। तो दोस्त लोग रउआ तो जानत ही बानी कि ई प्रोग्राम लेके आवेली राउ रेडियो दोस्त दीपाली। तो सबसे पहले रउआ सबके सुप्रभात प्रणाम। लोग हर बार की तरह ई बार भी हमरा पास पर रोज स्वास्थ्य की संवारे खातिर बहुत सारा हेल्थ टिप्स। तो चलिए शुभ आरंभ कर जाओ आज के कार्यक्रम के। दोस्त लोग, आज जानल जाए सबसे पहले चना के शक्तिशाली गुण के बारे में। नाश्ता खातिर एक मुट्ठी काला देशी चना पानी में डाल के रख दी। सुबह एक एक कच्चा या उबाल के या तवा पर थोड़ा भून के मसाला मिला के खूब चबा चबा के खाएं। चना के साथ किशमिश खा सकता नहीं और ये कोनो मौसमी फल भी खा सकता नहीं। केला के पानी से धो के छिलका सहित गोलकार टुकड़ा में काट ली और ये छिलका सहित चबा चबा के खाएं। नाश्ता में अन्य कौनो चीज ना ली। भोजन में भी रवा चना के इस्तेमाल कर सकता नहीं, जैसे रोटी के आटा में चोकर मिलल होखल होके और इस सब्जी या दाल में चना के चुनी यानी चना के छिलका मिलल होखल होके तो ये आहार बहुत ही सुपाच्य और ही पौष्टिक हो जाला। चोकर और ये चना में सब प्रकार के पोषक तत्व होला। चना गैस ना करेला। शरीर में विषाक्त वायु होके तो अपान वायु के रूप में बाहर निकाल देला। ऐसे पेट साफ और हल्का रही, पाचन शक्ति प्रबल बनल रही, खाल पियल अंग लागी, जैसे शरीर चुस्त दुरुस्त और शक्तिशाली बनल रही। कमजोरी, गैस, मधुमेह, हृदय रोग, बवासीर, भकंदर आदि रोग ना हुई। चना के आटा के उपटन शरीर पर लगा के स्नान करे से खुजली रोग नष्ट होला और ये त्वचा उजला होला। पूरा परिवार चना के नियम पूर्वक सेवन करे तो घोड़ा के तरह शक्तिशाली, फुर्तीला, सुंदर और परिश्रमी बनल रह सकेला। चना और जौ तीनों समान वजन में जैसे तीनों दो दो किलो लेके मिला ली। और मोटा पिसवा के चाले बिना यानी चोकर सहित आटा की रोटी खाइल शुरू कर दी। एके बेजड़ या मिक्सी रोटी कहल जाला। चना के गरीब के भोजन भी कहल जाला, लेकिन एके ताकत के हमनी के अनदेखा कर देनी सा। चना सस्ता भी है और सरल सुलभ भी। ऐसे हमने के पथ्य यानी सेवन करे योग्य आहार के रूप में चना के सेवन करके स्वास्थ्य लाभ अवश्य प्राप्त करे के चाहिए। तो दोस्त लोग ई तरह है चना के घरेलू नुस्खा। चलिए अब जान लिया जाओ रंगीन आहार सेहत के आधार एकरा बारे में। वैज्ञानिक लोग ई पौले बा कि अलग अलग रंग के खाद्य पदार्थ रोग शरीर के अलग अलग हिस्सा के फायदा पहुंचावेला। तो चलिए जानल जाओ कि कौन सा रंग शरीर के कौन अंग के मित्र है। सफेद यानी आलू लहसुन सफेद मशरूम आदि रोगा फेफड़ा खातिर फायदेमंद होला। नारंगी रंग प्लीहा के सलामती खातिर नारंगी रंग की चीज खाइल फायदेमंद होला। संतरा में विटामिन सी तो होला ही, कुछ मात्रा में विटामिन ए भी होला जौन प्लीहा खातिर अच्छा होला। हरा फल सब्जी में लूटीन व इंडोल नामक फाइटोकेमिकल्स होला जौन लीवर की रक्षा करेला, अतः हरा रंग की चीज खूब खाई। जामुनी यदि रउआ अपना मस्तिष्क के सलामती चाहतनी तो जामुनी फल सब्जी के अपना आहार में शामिल करें। इमे हा अंगूर प्याज जामुनी रंग के पत्ता गोभी बैगन आदि शामिल करें। लोग यूं काला रंग लोग के कम ही पसंद होला, खास तौर पर खाए पिए के मसाला में, लेकिन यकीन मानी काला रंग के आहार रोग गुर्दा खातिर बहुत लाभकारी हुई।

0: लाल यदि रउआ दिल के रक्षा करे के चाहतनी त लाल रंग के चीज खाई। लाल रंग के फल सब्जी में फाइटोकेमिकल्स पावल जाला, तरबूज अमरूद टमाटर आदि ई श्रेणी में आवेला। स्ट्रॉबेरी रसबेरी और बीटरूट में एंथोसाइनिन पावल जाला। ई फाइटोकेमिकल्स के ही एगो समूह है जौन उच्च रक्तचाप के नियंत्रित करेला और डायबिटीज से जुड़ल समस्या से बचाव करेला। तो दोस्तों अब हम बताएं दूध से निखरत कोमल सौंदर्य के घरेलू नुस्खा। दूध के गुलाब जल में मिला के लगावे से त्वचा के रंगत निखरेला। दूध में थोड़ा सा नमक मिला के चेहरा पर सुबह शाम लगावे से मुहासा दूर होला। बादाम बेसन गाजर के रस दूध में मिला के उबटन की तरह लगावे से त्वचा में कमनीयता आवेला। दूध के पूरा शरीर पर लगा के रगड़े से त्वचा में चमक आवेला। नाखून के सुंदर बनावे खातिर कुछ देर दूध में भिंगा के रखी। बर्तन साफ करे से हाथ खुरदुरा हो जाला। ए पर दूध में नींबू के रस मिला के लगावे से राउर हाथ सुंदर हुई। होठ के कलापन दूर करे खातिर दूध के होठ पर प्रतिदिन लगाई। आधा चम्मच काला तिल और आधा चम्मच सरसों के बारीक पीस के दूध में मिला के मुहासा पर निरंतर लगावे से फायदा होला। चिरौंजी के दूध के साथ पीस के लगावे से त्वचा चमकदार बनेला। तो दोस्त लोग अब जानल जाइए जब पेट में दर्द होखे तब का करे के चाहिए। पेट के ऊपरी भाग में दर्द की स्थिति में 3 बूंद पिपरमेंट ऑयल 2 बूंद क्लोव ऑयल 1 बूंद यूकेलिप्टस ऑयल के मिश्रण में 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल मिला के मालिश करे से लाभ होला। दर्द यदि पेट के निचला हिस्सा में होके तो 2 बूंद जिरेनियम ऑयल 2 बूंद रोजमेरी ऑयल। वह 1 बूंद जिंजर ऑयल में 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल के दर्द वाला भाग पर हल्का हाथ से मालिश कई जा सकेला तो इसे दर्द में राहत मिली। तो दोस्त लोग ई रहला आज के घरेलू नुस्खा जिमे हमनी के जननी हसन चना के घरेलू नुस्खा और रंगीन आहार के बारे में ओकरा साथे साथे दूध से निखरल कोमल सौंदर्य के बारे में। तो अब वो वक्त आ गई बा जिमे दीपाली ली है रउआ से जाए के इजाजत। तो रखी रउआ आपन सेहत के ख्याल रही खुशहाल। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द माइग्रेन चक्कर आना मिर्गी की दौरे झटके सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर फालिज साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097706575।
6: अच्छा एक काम करता है, कहानी शकुनी से शुरू करता है। क्या बोल रहे? नहीं कहे? नहीं, कहानी तो शकुनी से ही शुरू होगी। क्यों? क्या है कि हर महाभारत की नींव में एक शकुनी होता है और वो शकुनी अपने हिसाब से एक दुर्योधन भी चुन लेता है। अब भैया आपको कोयला भी तो चाहिए ना, जो भड़क सके, उस आग को थाम सके। तो मैं उस आग यानी शकुनी के बचपन का साक्षी रहा हूं, जिसने अपने बाप और भाइयों को दर्द और भूख से मरते देखा। आज मैं उसी विद्रोही शकुनी की कहानी सुनाता हूं आपको, क्योंकि मैं वो आंख हूं जो सब कुछ देखती है। मैं आकाश हूं। दरअसल भीष्म को ये कभी मंजूर नहीं था कि जिस कुरुवंश को बचाने के लिए उन्होंने खुद को दांव पर लगा दिया, कोई उसके साथ छल करे। तो महाभारत की सीधी सी कहानी केवल इतनी है कि कुरुवंश को बचाने के लिए भीष्म जो कर सकते थे उन्होंने किया, और उसको बर्बाद करने के लिए शकुनी जो कर सकता था उसने भी किया।

0: क्या कहना चाहते हो? स्पष्ट करो।
1: महाराज, गंधार राज आपके डर से पूरा सच नहीं बता सके।
0: तो पूरा सच क्या है?
1: महारानी गांधारी की कुंडली में मंगल दोष है महाराज। जन्म कुंडली देखकर उनके कुलगुरु ने बताया था कि इस मंगल के कारण विवाह के लगभग 3 महीने में उनके पति की मृत्यु हो जाएगी।
0: क्या? पर ये किसने बताया तुम्हें?
1: स्वयं गंधार राज के कुलगुरु ने महाराज। वो अभी जीवित है।
0: फिर क्या हुआ?
1: इस संकट को टालने के लिए कुलगुरु ने उन्हें एक उपाय सुझाया। उनके उपाय के अनुसार महारानी गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से कराया गया और फिर उसकी बलि दे दी गई।
0: तो इसे सुबल ने मुझसे क्यों छुपाया?
1: शायद आपके डर से महाराज।
0: तुम जाओ।
2: ईश्वर, ईश्वर, बहुत भूख लगी है पिताजी, नींद नहीं आ रही है। मैं
3: सोने की कोशिश करो बेटा, कल कुछ करता हूँ।
2: पिताजी, कहीं से भी भाइयों के लिए भोजन ले आइए पिताजी, वो भूख से कंगाल हो गए।
3: हाँ बेटा, अभी सो जाओ।
4: एक तो भीष्म ने गलतफहमी के चलते शकुनी, उसके भाइयों और पिता को कारागार में सड़ा दिया था, और ऊपर से उन्होंने शकुनी की बहन गांधारी को यह भी नहीं बताया था कि जिस धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए उसे वो उठा लाए हैं वो अंधा है। गलत बात थी ना? हाँ, हम सभी इस तरह की गलतियां करते रहते हैं। तो भाई, कुछ तो होना ही था, सो हो गया।
5: अरे, बहू का श्रृंगार तो हो गया है, अब देर क्यों हो रही है?
6: जल्दी करो, नहीं तो महाराज धृतराष्ट्र भागकर यहीं पहुंच जाएंगे।
5: दुल्हन को सुहाग कक्ष में हमें ही ले चलना होगा। चलो बहू,
7: अभी मेरा श्रृंगार बाकी है।
5: अरे, अब कौन सा श्रृंगार बाकी है? अंग अंग आभूषणों से तो भरे हैं।
7: मेरे लिए इस श्रृंगार का कोई महत्व नहीं है।
5: मतलब?
7: मेरे पति अंधे हैं, किसके लिए करूं मैं ये श्रृंगार? दात्री, श्वेत वस्त्र की पट्टी ले आओ।
5: पट्टी? क्यों?
7: मेरी आंखों के लिए, जिस संसार को मेरे पति नहीं देख सकते, उसे देखकर मैं क्या करूंगी?
5: यह आपका गुस्सा है या प्रतिकार?
7: नहीं, ये मेरा प्रतिकार नहीं, स्वीकृति है। मेरे पति जो भी हैं, जैसे भी हैं, मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें स्वीकार करती हूं। मैं गांधारी हस्तिनापुर के इस राजसी खेल को स्वीकार करती हूं।
3: हे ईश्वर, ये मुझे किस जन्म के पाप का दंड दे रहा है तू? गांधार राज के सामने उसके बेटे दाने दाने के लिए तड़प रहे हैं। कितना बेबस और लाचार बना दिया है तूने। शक्ति और सत्ता का ये कौन सा क्रूर चेहरा है जो किसी के जीने का हक छीन कर आनंद मना रहा है? तू ये कैसे दिन दिखा रहा है परमेश्वर? इससे तो अच्छा होता कि महाबली भीष्म हमारी बलि ही ले लेता। एक बाप को अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए तो नहीं देखना पड़ता।
2: पिताजी, देखिए पिताजी।
3: क्या हुआ शकुनी? क्या हुआ पुत्र?
2: चुप क्यों है पिताजी? हमारे भाई एक एक करके यातना और भूख से मर रहे हैं और आप चुप हैं। हमारे भाइयों की सड़ती देह कंकाल देखकर आप चुप हैं पिताजी, जिनके कारण हमारा जीवन नरक बन गया, जिनकी मनमानी अहंकार क्रूरता से हमारा छिन गया, उनके लिए आपके मुख से एक शब्द नहीं निकलता। धिक्कार है आपको, धिक्कार है आपको पिताजी, धिक्कार है।
3: जीवन पर मेरी पकड़ छूटती जा रही है पुत्र शकुनी। मैं जानता हूं मैं जानता हूँ कि मेरे बेटों की आत्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी, पर मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं। महाबली भीष्म का बंदी होकर मैं क्षण क्षण मर रहा। मेरे एक एक बेटे की मौत मेरी मौत है पुत्र शकुनी। कितने क्रूर है ये भरतवंशी। भोजन के नाम पर पूरे दिन में केवल मुट्ठी भर अनाज देकर भूख को अपमानित किया है। इस निर्दयी भीष्म ने
5: पिताजी।
2: भैया तरुण, तरुण क्या हुआ? तरुण आंखें खोल। तरुण पिताजी, देखिए मेरा भाई कोई जवाब नहीं दे रहा। आप चुप क्यों है पिताजी? क्या हुआ है आपको? बोलिए।
3: सुरपुत्र, मैं आखिरी सांसे गिन रहा हूं। मेरी बात सुन पुत्र। मैंने भीष्म से तुझे प्राण दान देने का वचन लिया है, इसीलिए वो तुझे जीवित छोड़ देगा। पर तू मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनाना। वो पासे तेरे इशारे पर नाचेंगे। वो पासे हर बार तुझे जिताएंगे। जुए के खेल में तुझे कोई हरा नहीं सकेगा पुत्र। मेरी ये पूरी हड्डियां एक दिन बहुत काम आएंगी तेरे।
2: पिताजी, आपने भी नहीं दिया ना मेरा साथ, अकेला छोड़ दिया मुझे। आप मर नहीं सकते पिताजी, आप मर नहीं सकते कभी। आपको भीष्म ने मारा है, उस अत्याचारी ने मेरे सारे भाइयों को मारा है। पर याद रखना भीष्म, मेरे पिता ने मेरे ये घुटने अपने हाथों से तोड़े हैं केवल इसलिए कि उनके लंगड़े बेटे को सदा याद रहे कि उसे कुरुओं से प्रतिशोध लेना है। आज मैं गंधार राज सुबल का बेटा अपने भाई बंधुओं और पिता के शवों को साक्षी मानकर प्रण लेता हूं कि जैसे मैंने अपने परिजनों को मरते देखा है, वैसे ही तू अपने परिजनों को मरते देखेगा। जैसे तूने मेरे अपनों की बलि ली है, वैसे मैं तेरे परिजनों की बलि का साक्षी बनूंगा। सुन लो कुरुवंश, जब तक मेरा ये प्राण पूरा नहीं होता तक मैं हस्तनापुर नहीं छोड़ूंगा। जिस हस्तनापुर पर इतना घमंड है ना विष्णु, उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा।
8: हस्तिनापुर को मिट्टी में मिलाने का अपना प्रण मैं कभी नहीं भूल सकता विष्णु। पिता की अस्थियों से बने पासे जब तक मेरे पास है, तब तक प्रतिशोध की ये आग धधकती रहेगी और उस आग में जलेगा सारा कुरुवंश, उस आग में जलेगा तेरा अहंकार और तेरी शक्ति। तिल तिल करके जलेगी, तिल तिल करके जलेगी पितामह भेष, तिल तिल करके चलेगी।
9: मामा, आप यहां अकेले क्या कर रहे हैं?
8: अकेला?
9: अरे क्या सोच रहे हैं आप, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूं।
8: मैं अपने भांजे का भविष्य ढूंढ रहा हूं।
9: कौन सा भविष्य मामा, कैसा भविष्य? अब बचा ही क्या है? और मुझे सबसे बड़ा दुख यह है कि आप भी पिता मां के सामने कुछ नहीं बोले। हम सब कुछ जीत कर भी हार गए मामा, और आप चुपचाप खड़े देखते रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी आपने, सब भूल गए आप।
8: बस करो भांजे, बस करो। मैं सब कुछ भूल सकता हूं, पर तुम्हारे माथे पर उभरी चिंता की लकीरों को कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारे सपनों के इंद्रप्रस्थ को कभी नहीं भूल सकता भांजे।
9: अब कौन सा इंद्रप्रस्थ, कौन सा सपना मामा? सब कुछ मिट्टी में मिल गया। आप क्या समझते हैं कि केवल पासों से सत्ता का खेल खेला जाता है मामा?
8: खेल तो पासों का ही होगा भांजे। अभी अभी बहुत दम है इन पासों में। ये पासे अभी भी वही करते हैं जो मैं चाहता हूँ। यही पासे तुम्हारा भविष्य लिखेंगे भांजे, यही सजाएंगे तुम्हारे सपनों का संसार। यही पासे इंद्रप्रस्थ का स्वर्ण सिंहासन तुम्हारे कदमों में ला गिराएंगे भांजे।
9: तो उस समय आपके पासे चुप क्यों बैठ गए थे मामा? पिता माँ को क्यों नहीं रोक लिया आपके इन पासों ने?
8: मिट्टी डालो भांजे, लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो। अभी तो इन पासों का खेल शुरू हुआ है और पितामह सिर्फ रुकेंगे नहीं, टूटेंगे भी। पांडव हाथ से गए हैं, जात से नहीं। एक बार फिर बुलाओगे तो वो फिर आएंगे।
9: क्यों बहला रहे हो? मैं इतना भी बोला नहीं हूँ कि आपके बुलावे में आ जाऊं।
8: ये बुलावा नहीं, सच है भांजे। तुम एक बार फिर से अपने पिता के पैर पकड़ो, गिड़गिड़ाओ, कौन से कि वो एक बार, बस एक बार फिर पांडवों को हस्तिनापुर बुलाएं। एक बार
9: उन्हें वापस हस्तिनापुर बुलाएं। पिताश्री उन्हें फिर से क्यों बुलाएंगे? और बुला भी लें तो वो भला क्यों आएंगे? वो क्या करेंगे यहाँ आकर?
8: एक बार फिर जुआ खेलेंगे। जुए का मोह एक बार मुंह लग जाए तो शमशान घाट तक पीछा नहीं छोड़ता। बस एक बार यहाँ बुला ले, फिर देखना।
9: धतूरा तो खा के नहीं आए ना मामा? बस करो मामा, मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। मैं हारा हुआ खिलाड़ी बनकर रह गया हूँ।
8: अरे खिलाड़ी कभी नहीं हारता भांजे, हारते तो अनाड़ी हैं। और फिर जिसका मामा शुकनी हो वो कभी अनाड़ी हो ही नहीं सकता। तुम एक बार फिर अपने पिताजी के पास जाओ, उनसे कहो कि तुम बिगड़े खेल को बनाना चाहते हो, भाई भाई के संबंध में मिठास घोलकर भविष्य का युद्ध टालना चाहते हो।
9: संबंधों में मिठास, भाई भाई, ये सब क्या कह रहे हो मामा? आपकी मति तो नहीं मारी गई है, मुझे लगता है आप सचमुच में धतूरा खा गया है।
8: ईश्वर के लिए तुम सोचना बंद कर दो, सोचने का काम केवल मेरा है। तुम अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाओ, सर पटको उनके सामने, उनसे कहो कि बस पांडवों को एक बार फिर युद्ध क्रीड़ा के लिए बुला ले। कहो उनसे कि तुम केवल एक दाव का खेल खेलना चाहते हो, बस एक दाव भांजे, एक दाव,
9: बस एक दाव। पर आप उस एक दाव में
8: सोचो मत भांजे, सोचो मत। मेरा एक दाव भाग्य पलट सकता है, तुम्हारा भी और उन पांडवों का भी। मेरा एक दाव राजा से रंक बना सकता है, तुम्हें भी और उन पांडवों को भी। काल बनकर आ सकता है मेरा एक दाव, तुम्हारे लिए भी और उन पांडवों के लिए भी। ये शकुनी का दाव घाव नहीं करता भांजे, सीधे यमलोक पहुंचा देता है।

0: यदि यदि वो ऐसी सलाह ना भी देते तो भी मेरा निर्णय वही होता।
1: बस कीजिए, बस कीजिए पिताश्री, बस कीजिए। उन्होंने सलाह नहीं आदेश दिया था, जिसका पालन करना आपकी विवशता थी, क्योंकि आप सदा भयभीत रहे हैं उनसे, सदा भयभीत रहे हैं। आपने कभी इतना साहस नहीं हुआ पिताश्री कि उनके सामने अपने पुत्र का पक्ष ले सके।
2: क्या है कि दुर्योधन तो शकुनी का बस एक मोहरा था। जिंदगी में कई दौर आते हैं जब मोहरा बन जाना हमारी मजबूरी हो जाती है और हम सिर्फ किसी और के इशारों पर चलते हैं। पर उससे भी ज्यादा भयानक है धृतराष्ट्र बन के बार बार गलतियों को दोहराते जाना। महाभारत

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89733।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: कह दूं तुम्हें
4: हाँ
3: या चुप रहूं?
4: ना,
3: दिल में मेरे आज क्या है?
4: क्या है?

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। स्कॉर्पियो से पकड़ी गई 465 लीटर से अधिक शराब, कटिया पुलिस ने भी 178 लीटर शराब के साथ 5 आरोपियों को पकड़ा। ज्वेलरी लूट कांड में पुलिस कर रही है लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। सांसद के आवास पर आज लगा जनता दरबार। आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी में एक युवक जख्मी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। मीरगंज थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। इस दौरान दो वाहनों को भी पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए मीरगंज के जिगना राजघाट फील्ड के पास वाहन जांच शुरू किया। इसी दौरान एक कार से कुल 465 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। विधिवत कार और शराब को जब्त किया गया। साथ ही अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त कार स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया गया है। इस मामले में वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कांड दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, गाड़ी छोड़कर शराब तस्कर फरार हो गया है। कटिया थाना की पुलिस ने भी एक भारी मात्रा में शराब के कंसाइनमेंट को पकड़ा है। इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शराब के विरुद्ध अभियान चलाते हुए मिश्र मझवलिया गांव के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान एक महिला के घर से 135 लीटर देशी शराब बरामद हुआ। इसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जाँच के क्रम में पुलिस ने महंथवा मोड़ के पास से 2 मोटरसाइकिल पकड़ी। तलाशी लेने पर गाड़ियों से 33 लीटर से अधिक देशी शराब बरामद हुआ। इस मामले में कुल 5 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जिसमें एक महिला है, एक परवेज अली पिता हैदर अली, दूसरा राहुल कुमार पिता बीरेंद्र सिंह, ये दोनों साकिन छोटकी मगहिया थाना कटिया के निवासी हैं, चौथा चंदन कुमार पिता स्वर्गीय रुदल शाह और पांचवा विशाल कुमार पिता उपेंद्र शाह, ये दोनों सुस्ता माधोपुर थाना सदर जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इन सभी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कटिया थाना क्षेत्र के जमुनहा बाजार में हुई ज्वेलरी दुकान के मालिक से लूट कांड में पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। बताते चलें कि शनिवार की देर शाम बाइक सवार चार अपराधियों ने विष्णु ज्वेलर्स के दुकानदार हरेंद्र वर्मा पर हमला कर दिया। ज्वेलरी से भरा हुआ उनका बैग लूट लिया। घटना के दौरान लोगों ने अपराधियों को घेरने का प्रयास किया तो अपराधियों ने फायरिंग भी की और मौके से फरार हो गए। हालांकि अपराधियों की एक मोटरसाइकिल घटनास्थल पर ही छूट गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। हरेंद्र वर्मा के सिर में गंभीर चोट लगी है, उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि वे अपने बैग में करीब 10 लाख रुपए से अधिक की ज्वेलरी लेकर जा रहे थे। इसी बीच अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि लूटी गई ज्वेलरी की वास्तविक कीमत दुकानदार के होश में आने और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हरेंद्र वर्मा शनिवार की शाम जमुनहा बाजार स्थित अपनी दुकान बंद करने के बाद ज्वेलरी को एक बैग में रखकर बाइक से भृंगी चौक अपने आवास को लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार चार अपराधियों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि अपराधियों ने हरेंद्र वर्मा पर हमला कर दिया और उनके पास मौजूद ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार होने लगे। हमले में दुकानदार के सिर पर चोट लगी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को जुटता हुआ देखकर अपराधियों ने फायरिंग की। स्थानीय लोगों ने अपराधियों को घेरने का प्रयास किया, परंतु अपराधियों ने जब फायरिंग शुरू की तो लोग इधर उधर भागने लगे और इसी बीच अपराधी भी भागने में सफल हो गए। पुलिस अब पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। जनता की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके समाधान के उद्देश्य से गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने अपने आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, सांसद को अपनी समस्याओं को लेकर अवगत कराया। सांसद महोदय ने भी गंभीरता से जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों से दूरभाष पर बातचीत कर कई मामलों के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जनता दरबार में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेंशन, सरकारी योजनाओं का लाभ सहित विभिन्न जनहित से जुड़े मामलों को लोगों ने सांसद के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है और इसको लेकर वे जब भी गोपालगंज में रहते हैं जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। नगर थाना क्षेत्र के जंगलिया मोहल्ले में शनिवार की शाम को दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद शांत कराने पहुंचे एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। चाकू लगने से युवक के पैर में गंभीर चोटें आई। घायल युवक जंगलिया के नूर आलम का पुत्र मोहम्मद इकबाल उर्फ बिक्की बताया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जंगलिया में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। मोहम्मद इकबाल उर्फ बिक्की वहां और दोनों पक्षों के बीच हो रहे झगड़े को शांत कराने का प्रयास करने लगा। आरोप है कि इसी दौरान एक व्यक्ति ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू उसके पैर में लगी और वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने उठाकर इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां मोहम्मद इकबाल का इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना का आज कई पदाधिकारियों ने दौरा किया। इस दौरान अतिथियों ने संस्थान की अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और प्रक्षेत्र आधारित गतिविधियों का अवलोकन किया। दौरे का उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं विकसित भारत 2047 के अनुरूप विज्ञान आधारित, मांग आधारित एवं किसान केंद्रित कृषि अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी प्रसार को सुदृढ़ करना था। इस दौरान प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज आधारित फसल प्रणालियों, विविधीकृत पोषक वाटिका, सौर ऊर्जा आधारित कृषि मशीनीकरण, स्मार्ट जल प्रबंधन तथा जलवायु अनुकूल किस्मों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। रेन आउट शेल्टर, ओपन टॉप चैम्बर्स तथा एक एवं दो एकड़ के समेकित कृषि प्रणाली मॉडल का भी अवलोकन किया गया। पशुधन प्रक्षेत्र में ब्लैक बंगाल बकरी एवं मुर्रा भैंस के अनुवांशिक सुधार संबंधित गतिविधियों की जानकारी भी ली गई। बताया जा रहा है कि इस अवसर पर संस्थान की प्रौद्योगिकियों एवं किसान केंद्रित नवाचारों पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। सफल किसानों ने समेकित कृषि, सब्जी उत्पादन, बकरी एवं मछली पालन से आय बढ़ाने के अनुभव साझा किए। श्री त्रिपाठी ने परिणामोन्मुखी एवं प्रक्षेत्र प्रासंगिक अनुसंधान तथा वैज्ञानिकों और किसानों के बीच मजबूत संपर्क पर जोर दिया। उन्होंने प्रौद्योगिकी के त्वरित प्रसार एवं राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय की भी आवश्यकता। बताई। इस दौरान ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी अपर सचिव डियर एवं सचिव ICAR तथा नर्मदेश्वर लाल प्रधान सचिव कृषि विभाग बिहार सरकार ने एक एक बिंदुओं पर वहां दौरा करते हुए समीक्षा किया और वहां तैनात पदाधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज जिले के सभी थानों पर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर चौकीदारी परेड का भी आयोजन हुआ, जिसमें चौकीदारों को अपने अपने क्षेत्र में सतर्क और सक्रिय रहकर संदिग्ध गतिविधियों, असामाजिक तत्वों और जेल से छूटे पेशेवर अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया। स्थानीय आसूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही शराब तस्करी और अवैध शराब निर्माण पर भी प्रभावी रोक लगाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। उत्पाद विभाग की पुलिस ने कटिया के भागी पट्टी में जांच चौकी पर एक मोटरसाइकिल से 81 लीटर से अधिक शराब पकड़ी है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने शराब और मोटरसाइकिल को जब्त कर तस्कर की पहचान करने के लिए अभियान और जांच पड़ताल शुरू किया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने आज अलग अलग मामलों में पकड़े गए कुल 4,245 लीटर से अधिक देशी और विदेशी शराब को नष्ट किया। बताया जा रहा है कि उत्पाद पुलिस ने कुल 30 मामलों में पकड़े गए 3,254 लीटर से अधिक विदेशी शराब को भी पकड़ा। कुल देशी और विदेशी मिलाकर 7,500 लीटर से अधिक शराब को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि न्यायालय के निर्देश पर इन सभी मामलों में पकड़े गए शराब को बलथरी चेक पोस्ट के पास JCB से कुचलकर जमीन में दफन कर दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आज कुचायकोट के संगवाडीह पंचायत भवन परिसर में सूचना का अधिकार अधिनियम एवं नागरिकों के मौलिक कर्तव्य तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, इसके रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 को लेकर विधिक सहायता आदि विभिन्न विषयों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता संजीव एवं PLV इम्तियाज अंसारी की टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, किसी विभाग से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के तरीके, सूचना प्रदान करने की समयावधि, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य एवं राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा को लेकर भी लोगों को विस्तार से जानकारी दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो रिमझिम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी दुनिया के किसी भी कोने से रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्कॉर्पियो से पकड़ी गई 465 लीटर से अधिक शराब। कटिया पुलिस ने भी 178 लीटर शराब के साथ 5 आरोपियों को पकड़ा। ज्वेलरी लूट कांड में पुलिस कर रही है लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। सांसद के आवास पर आज लगा जनता दरबार। आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी में एक युवक जख्मी। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0907-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
12: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
12: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम 90.4 सुनने वाले सभी लोगों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका मन पसंद कार्यक्रम आपका संदेश मिला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला कार्यक्रम में देश विदेश, प्रदेश और अपने जिले के विभिन्न जगहों से बहुत सारे संदेश आए हैं। उन संदेशों को मेरे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर सोनू जी, उसे पढ़ेंगे और मैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई से उसका जवाब दूंगा। आपका संदेश मिला कार्यक्रम पूरे सप्ताह भर रेडियो रिमझिम का जो कार्यक्रम हम प्रसारण करते हैं उसके संदर्भ में आप लोगों का सुझाव, शिकायत, उलाहना आता है और इससे हम अपने कार्य पद्धति में सुधार करते हैं। मेरा मानना है कि जिसके लिए हम प्रसारण करते हैं यदि वह संतुष्ट है तो रेडियो रिमझिम 90.4 की उपलब्धि है। यदि हमारा कोई भी श्रोता हमारे प्रसारण से खुश नहीं है और संतुष्ट है तो हम अपने प्रसारणकर्ता होने के नाते नीचे के तरफ चले जाते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम के कई कार्यक्रम हैं जिसमें सुबह 5 बजे से रात को 11:10 तक रेडियो पर आप हमें सुनते हैं और ऐप के माध्यम से 24 घंटे रेडियो रिमझिम को सुन सकते हैं। आज भी जब हम गांव देहात शहर में जाते हैं तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि रेडियो रिमझिम का ऐप जो है गूगल के प्ले स्टोर में है, जो बहुत कम MB का है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जब इच्छा हो रेडियो रिमझिम को सुन सकते हैं। रेडियो रिमझिम बेहतर प्रसारण के लिए अपने श्रोताओं को बार बार धन्यवाद देता है कि आपके सुझाव से हम बेहतर प्रसारण कर पाते हैं। हमारे कई श्रोता ऐसे हैं जो हमें तकनीकी रूप से भी सुझाव देते हैं, प्रसारण में कहीं कोई त्रुटि है उसके बारे में बताते हैं और हम उसमें सुधार करते हैं। रेडियो रिमझिम की जो टीम है युवाओं की है, मैं अपना अनुभव देता हूं और जो युवा साथी हैं मेरे रेडियो रिमझिम में वे अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिसके वजह से रेडियो रिमझिम का प्रसारण लंबे समय से निरंतर और बेहतर चलते आ रहा है। रेडियो रिमझिम के सभी सदस्यों का मानना है कि हम लोग जिसके लिए प्रसारण करते हैं वह क्या चाहते हैं, किस तरह के कार्यक्रम चाहते हैं, उस पर हम लोगों का विशेष ध्यान रहता है और यह भी ध्यान रखते हैं कि भारत सरकार ने एक मार्ग निर्देशिका दिया है एक गाइडलाइन दिया है जिसके अंतर्गत रहकर हमें अपने कार्यों को बेहतर करना है। रेडियो रिमझिम का प्रसारण ऐप के माध्यम से पूरे दुनिया में सुना जाता है और गोपालगंज की मिट्टी की महक जो है हम पूरे दुनिया में आवाज के माध्यम से बिखेरते हैं। हमारे कई आदरणीय श्रोता हैं जो अपने बातों को लिखकर नहीं भेज पाते हैं, फिर भी रेडियो रिमझिम के कार्यालय के नंबर पर फोन करते हैं, अपने संदेश को लिखवाते हैं। मैं उन श्रोताओं को विशेष करके धन्यवाद देता हूं कि आपकी रुचि, आपकी सहनशीलता, आपका बड़प्पन है कि आप अपने बातों को हम तक पहुंचाते हैं। हम लोग कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। माता पिता किसान थे और उस किसान परिवार में जन्म लेकर तकनीकी रूप से सक्षम होकर रेडियो रिमझिम का प्रसारण किया जाता है। मन में यह लालसा शुरू से ही रहा है कि लोगों के जीवन को बेहतरी बनाने में हम अपना कौन सा महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विज्ञापन के माध्यम से, आवाज के माध्यम से और लोगों से मिलजुल कर जो हम लोग सुझाव लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, उससे बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रेडियो रिमझिम का मानना है कि जो हमारे गांव देहात या नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र में लोग रहते हैं, महिला पुरुष दिव्यांग जो भी रहते हैं, उन सब की बातों को सुना जाता है। हम लोग अपने को नीचे रखते हैं और जो हमें सुनते हैं उनका हम सेवक मानकर अपने कार्यों को करते हैं। रेडियो रिमझिम में कई ऐसी कहानियां प्रसारित होता है, आप लोग सुनते होंगे, वीरों की कहानियां, विक्रम बैताल की कहानियां, निर्गुण विरहा, आपके मनपसंद गीत, राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सूचना को हम देते रहते हैं। हम लोग का प्रयास रहता है कि जो प्रादेशिक समाचार है या राष्ट्रीय समाचार है उसका डायरेक्ट रिले करें और आपको पूरे संसार के सूचनाओं से प्रतिदिन अवगत कराएं। यह हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। इस काम में हम लोग कितना सफल हुए आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। एक समय था कि रेडियो रिमझिम का प्रसारण सुबह 5 से 10, दोपहर 12 से 3 और शाम को 5 से 10 हम लोग करते थे और हमारी आवाज जन जन तक पहुंचती थी। यह विज्ञान का, तकनीक का देन है कि आज जो है 24 घंटे रेडियो रिमझिम का प्रसारण होता है और आप जहां भी हैं, संसार के किसी भी कोने में हैं, रेडियो रिमझिम को सुन सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से, फोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, जीवन में बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। हम जब दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाते हैं या पटना का छात्र जहां रहते हैं, PMCH हॉस्पिटल के अगल बगल छात्रों का जो हुजूम देखते हैं, वे दिन रात पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। आज के दौर में प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना, अपना मुकाम हासिल करना, जीतोड़ मेहनत करना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। बहुत सारे बच्चे जो है अपने जिले के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित हुए हैं। जब भी कभी मुझे भारत भ्रमण का अवसर मिलता है, हम मध्य प्रदेश के उज्जैन जाएं, केरल जाएं, चेन्नई जाएं, श्रीनगर जाएं, भारत के किसी भी शहर में जाते हैं तो अपने यहाँ के कुछ न कुछ बच्चों को देखते हैं जो तकनीकी रूप से बहुत ही हुनरमंद है और वहाँ के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। संपूर्ण भारत हम लोग का है, हम लोग भी उसके एक अंश हैं। मेरा मानना है कि जीवन में जिस व्यक्ति को जो भी काम करने का अवसर मिला है उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। यह नहीं कि हम सरकारी सेवा या गैर सरकारी सेवा में हैं, काम लग गया उसके बाद जिम्मेवारी खत्म हो गया। असली जिम्मेवारी तो काम लगने के बाद शुरू होता है और बहुत से लोगों ने सरकारी या गैर सरकारी सेवाओं में रहते हुए नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पहले एक समय था कि 6 महीना खेती होता था, 6 महीना बैठकी होता था। अब तो आज कृषि के क्षेत्र में इतनी उन्नति हो गई है कि लगातार हमारे किसान भाई लगे रहते हैं, वह चाहे बागवानी का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, मत्स्य का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जो है लगे रहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धि हासिल किए हैं जो समाचारों के माध्यम से हमें भी ज्ञात होता है। आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम का आपका संदेश मिला कार्यक्रम में हम लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान रखते हैं और अपने बातों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कई श्रोताओं के सुझाव से हम भारत वर्ष के कई रेडियो स्टेशनों से कई अच्छे अच्छे कार्यक्रम मंगवाए और उसे प्रसारित भी करते हैं। कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में भी चलता है। तो मेरा मानना है कि आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में बेहतर करें, अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। कितना तनख्वाह मिलता है, कितना समय लगता है, यदि इस तरफ ध्यान दीजिएगा तो आपकी रफ्तार जो है धीमी पड़ जाएगी। मान लिया जाए हम कपड़े की दुकान में काम करते हैं, यदि अगला को मुनाफा होगा तो वह ऑटोमेटिक हमारा पैसा बढ़ाएगा। यदि सरकारी सेवा में है तो हमें 24 घंटे ड्यूटी में लगे रहना है। यह एक अवसर है, एक मौका है। मेरा मानना है कि जीवन में कई लोगों को कई क्षेत्र में मौका मिलता है और उस मौके को गंवा देते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। हमें आज भी याद है कि 1980-81 में हमारे गांव हमारे क्षेत्र के एक व्यक्ति जो है MSc किए थे और उन्हें कई सरकारी सेवा में जाने का अवसर मिला, लेकिन वह जो है नहीं गए और अच्छा के तलाश में। आज जब भी हम गांव जाते हैं तो उन्हें पाते हैं कि दुआर बाहर रहे हैं, कूड़ लगा रहे हैं, गाय और भैंस को खाना खिला रहे हैं और अपने गलतियों का एहसास होता है और जब वे बातें करते हैं तो उनके आंखों में हम आंसू देखते हैं। काम छोटा हो या बड़ा, यदि आपको अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो मेरा मानना है कि उसे शुरू कर देना चाहिए। जब आप चलते रहिएगा तो कोई ना कोई नया अवसर मिलते रहेगा। हम लोग के पूर्वज कहते थे कि स्टेशन पर जाइए और जो भी ट्रेन पहले मिलता है उसे पकड़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, रुकिए मत, इंतजार मत कीजिए। जीवन इतना लंबा और इतना बड़ा नहीं है कि आपको समय देगा कि आप जो है और समय लीजिए। 60 वर्ष के बाद तो सरकार भी रिटायरमेंट दे देता है, लेकिन कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसे ऐसे नया काम करते हैं जो पूरी दुनिया याद रखती है। आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में सोनू जी बैठे हैं और इशारा कर रहे हैं कि हमें अब हमारे आदरणीय श्रोताओं का जो संदेश आया है उसे पढ़ना चाहिए। तो सोनू जी पहला संदेश पढ़ रहे हैं।
0: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला मेरे पास संदेश पहुंचा हुआ है अमित कुमार, वार्ड नंबर 2, गोपालगंज से। रेडियो रिमझिम का सभी कार्यक्रम अच्छा है, लेकिन सुबह में निर्धारित समय से रेडियो चालू नहीं हो रहा है, कृपया सुधार किया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
1: आदरणीय अमित जी, आपके पूरे परिवार को, आपके वार्ड वासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। शहर में रहते हुए आपने संदेश दिया जो काफी अच्छा लगा। यह बात सही है जाड़ा का मौसम नहीं है और सुबह में रेडियो चालू करने में जो ऑपरेटर हैं विलंब कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो समय निर्धारित है रेडियो प्रसारण का सुबह में, रेडियो पर बहुत सारे लोग सुनते हैं, वह समय से सुने और विशेष करके भजन सुनने वाले लोग सुबह 5 बजे जग जाते हैं और भजन का इंतजार करते हैं। यदि निर्धारित समय से रेडियो नहीं चालू हो रहा है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और कोशिश करेंगे कि समय से रेडियो का प्रसारण शुरू हो। और आप कौन कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। रेडियो रिमझिम सुबह 5 बजे से रात को 11:10 पर जो प्रसारण करता है उसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिकॉर्डेड कई तरह के कार्यक्रम हैं जो आप समय समय पर सुनते होंगे। यदि उन कार्यक्रमों के बारे में आप अपनी बातों को रखेंगे तो हमें काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो सुनता है वही आपका संदेश मिला कार्यक्रम में संदेश दे पाता है, और जो नहीं सुन पाते हैं वह कार्यक्रम का टेस्ट स्वाद समझ नहीं पाएंगे। आज भी बहुत सारा समाचार पत्र आता है, बहुत सारा पत्रिका आता है, टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में किसी न किसी मीडिया के प्रति एक भरोसा और विश्वास होता है कि इसमें जो खबर छपेगा वह अच्छा होगा, या यहाँ रेडियो से जो बोला जाएगा वह सही और सटीक बोला जाएगा। और उस भरोसे को रेडियो रिमझिम हमेशा कायम करके रखना चाहता है कि जो हमारे आदरणीय श्रोता हैं वह हालचाल सुन रहे हैं या कोई भी समाचार सुन रहे हैं तो उनके भरोसे को हम हमेशा कायम रखें। और जो विलंब हो रहा है एक बार पुनः हम क्षमा चाहते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि समय से हमारा प्रसारण शुरू हो। बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है सासा मुसा खजुरी से सरस्वती देवी जी का। रेडियो रिमझिम हमारा पूरा परिवार सुनता है, सुबह का भजन बहुत अच्छा लगता है, आने वाले दशहरा में दुर्गा भजन ज्यादा सुनाया जाए, मुझे विक्रम बैताल बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे भी बड़े ध्यान से रेडियो रिमझिम सुनते हैं। तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दे।
1: आदरणीय सरस्वती देवी जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ

0: जो कार्यक्रम हम प्रसारित कर रहे हैं, यदि सुनने वाले को अच्छा लगता है तो हमारा प्रसारण जो है सफल हो जाता है। इस बात का चिंता सदैव हमारे मन में रहता है और यह जानकर काफी अच्छा लगा कि आपके बच्चे भी रेडियो रिमझिम को सुनते हैं। आज के सोशल मीडिया के जमाने में यदि रेडियो को सुना जाता है, चाहे माध्यम कोई भी हो, हमने बताया भी है और आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, बार बार हम बताते हैं कि रेडियो रिमझिम को आप चार तरह से सुन सकते हैं। पहला, रेडियो पर, दूसरा रेडियो के ऐप पर, तीसरा इंटरनेट से, चौथा वाहन से, और जो 5 किलोमीटर के रेडियस में है वह बिना इंटरनेट को भी रेडियो रिमझिम को मोबाइल पर सुन सकते हैं। और रेडियो रिमझिम शुरू से ही सभ्यता, संस्कृति, उच्च विचार के लिए बच्चों को प्रेरित करता है। जीवन में बहुत सारा धन कमा लेना उपलब्धि नहीं है, धन को भोगना भी चाहिए। मान लिया जाए कोई व्यक्ति बहुत सारा धन कमाया है, थार गाड़ी में या 1 करोड़ के गाड़ी में बैठता है, लेकिन एक रसगुल्ला भी नहीं खा पाता है, तो उसका कमाई तो दूसरा ही न खाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने सुझाव दे दिया है कि आपको शुगर बहुत हाई है, आपको जो है चावल चीनी से दूर रहना है, प्रतिदिन जो है कसरत करना है, भोजन कम करना है, रात को 9 बजे के पहले खाना है। इतना सारा रिस्ट्रिक्शन जब लग जाता है तो वह कमाया हुआ धन दूसरा ही खाता है। तो जीवन में मेरा मानना है कि सुखी वही है कि भरपूर खाए, भरपूर सोए और फिर अपने काम में लग जाए, उसके इतना सुखी जो है आज के दौर में कोई व्यक्ति नहीं है। जीवन में आगे बढ़ना, उन्नति करना बहुत अच्छी बात है और हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात कि आज के जमाने में लोग दुखी हैं, इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास गरीबी है, इसलिए दुखी हैं कि दूसरे का सुख देखकर उन्हें दुख होता है और उसके लिए वे अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं। और जो व्यक्ति सीधे अपने कामों पर नजर रखता है, सीधा चलता है और अपने आप में मस्त है, वह हमेशा मस्त रहेगा। जीवन में दाहिने बाएं क्या होता है उस पर ध्यान मत दीजिए। 24 घंटे में कोई व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है पढ़ाई लिखाई करते हुए, और कोई व्यक्ति जो है वही रह जाता है। 24 घंटे में कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एक ही क्लास में जो टीचर 30 मिनट या 40 मिनट पढ़ाते हैं उसी में से UPSC क्रैक कर लेते हैं और कोई व्यक्ति पीयून तक नहीं बन पाता है। तो स्कूल वही होता है, शिक्षक वही होते हैं। यह जो है आपके ऊपर निर्भर है कि कम समय में कितना ऑब्जर्व कीजिएगा, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के पीछे आप कितना पागलपन रखते हैं। जीवन में आपने लक्ष्य निर्धारित किया और उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया, तब पर भी जो है आप पीछे रह जाते हैं। एक बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ट्रेनिंग में हम गए थे, यह घटना है 20 साल पहले की। उसमें जो टीचर थे, जो फैसिलिटेटर थे, वह बताते थे कि आप यदि लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो उसे आप जो है 6-6 महीना, 3-3 महीना, सप्ताह सप्ताह भर और प्रतिदिन में बांटना होता है, और जब अपने कार्यों को कई भागों में बांटकर आप उस पर कार्य करते हैं, लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाइएगा। लेकिन आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उस लक्ष्य के प्रति आप सजग नहीं हैं, तो वह केवल एक ड्रीम रह जाएगा, सपना रह जाएगा। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना और लक्ष्य के प्रति सजग रहना सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है माझागढ़ सलाउद्दीन अंसारी जी का। रेडियो रिमझिम ऑनलाइन कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, कई दिनों बाद शुरू हुआ।

0: धन्यवाद। सोनू जी का SMS फरमाइश काफी अच्छा लगता है, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय सलाहुद्दीन अंसारी जी, आपके पूरे परिवार को, माझागढ़ के सभी निवासियों को, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगा आपका संदेश। ऑनलाइन कार्यक्रम जो है आपको अच्छा लगता है, यह जानकर हमें भी अच्छा लगा। और सोनू जी की आपने जो प्रशंसा की है, उसके लिए हम अपने पूरे टीम के तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। मनुष्य का एक गुण होता है, जब कोई पीठ थपथपाता है, प्रशंसा करता है, तो व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता है, वह अपने काम के प्रति सजग हो जाता है। कई बार मनोवैज्ञानिक व्यक्ति ने भी बताया है कि जब किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, वह व्यक्ति जो है दुगुने उत्साह से उस कार्य को करने लगता है। और आपका संदेश हमें जो है उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक आग्रह करेंगे कि रेडियो रिमझिम का और भी जो कार्यक्रम आप सुनते हैं, उसके प्रति भी अगले आपका संदेश मिला कार्यक्रम में जरूर लिखिएगा, काफी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
0: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है यादवपुर नया टोला से इंदु कुमारी जी का। रेडियो रिमझिम को हम तीन बहन और पूरा परिवार काफी ध्यान से सुनते हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम में भी जुड़ते हैं। मेरे पापा जी हालचाल सुनने के बाद ही भोजन करते हैं, तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
1: आदरणीय इंदु जी, आपके माता पिता को, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वैसे जादवपुर साइड में रेडियो रिमझिम सुनने वालों की संख्या काफी है। आजकल तो आप देख रही होंगी कि हम लोग रेडियो रिमझिम के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कर रहे हैं, फिर भी हमारी टीम जो है अजीत हैं, आदर्श जी हैं, वे लोग भी गांव-गांव में जाकर लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को यह चेतावनी दे रहे हैं कि बरसात के समय डेंगू का प्रकोप, काला जर का प्रकोप काफी रहता है, उससे आप सावधान रहिए। कई जगह लोग जो है हमारे टीम के तस्वीर भी लेते हैं, उन तस्वीरों को रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर डालते हैं और लोग उसे पसंद करते हैं। आपका प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं बताते चलूं, रेडियो रिमझिम का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वह सब काफी एक्टिव है और उसमें हमारे कई हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। और हम लोग भी जो काम करते हैं फील्ड में, गांव में, देहात में, शहर में जागरूकता अभियान चलाते हैं, उन सब का तस्वीर जो है कोशिश किया जाता है कि प्रतिदिन डाला जाए। तो आप लोग रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर, यूट्यूब पर जुड़िए और उसे देखिए कि रेडियो रिमझिम केवल आवाज के माध्यम से जीवन में बदलाव नहीं लाता है, अपने काम के प्रति लोगों के बीच जाता है, बताता है और यह दर्शाता है कि हम लोग आप लोगों से दिल से, मन से जुड़े हुए हैं। जब कोई बच्चा अपने जिला का बड़ी परीक्षाओं में नेट, UPSC, जुडिशियल में सफल होता है, तो हम लोग का मन मयूर भी खिल उठता है कि हमारे क्षेत्र का बच्चा जो है पूरे भारतवर्ष में एक नया आयाम गढ़ा, एक नई मंजिल हासिल की। वैसे अभी हाल में ही रेडियो रिमझिम का सर्वे हुआ था, जो पिछले आपका संदेश मिला में हमने बताया था कि आज भी गोपालगंज में 26% लोग जो है रेडियो रिमझिम को सुनते हैं, पूरी आबादी का। और उसमें सबसे ज्यादा रेडियो से और ऐप से सुना जाता है। इसकी सूचना हम दिए हैं और जो हमारे कई श्रोता जिनके गांव में सर्वे करता गए थे बैठे थे, उन लोगों का फीडबैक आया है कि आपके क्षेत्र के लोगों का बड़ा ही सकारात्मक सहयोग रहा। वे लोग कई जगह हम लोगों के जाने के बाद पानी पिलाना, मिठाई खिलाना, आदर और सम्मान पूर्वक बातें करना हम लोगों का मनोबल बढ़ाया। वैसे भारतवर्ष के कई रेडियो स्टेशन के श्रोताओं के पास हम लोग गए, लेकिन जो प्यार और सम्मान रेडियो रिंधिम के श्रोताओं ने दिया वह जीवन पर्यंत याद रहेगा। यह सब सुनकर हमें भी काफी अच्छा लगा और मुझे लगता है कि जो भी रेडियो रिंधिम से जुड़ा है वह व्यक्ति वास्तव में बेहतर है। चूंकि शुरू से ही हम लोगों ने नैतिकता पर और संस्कार पर ज्यादा जोर दिया और जो व्यक्ति दिल से जुड़ा रहा वह आज भी बेहतर है। आदरणीय इंदु जी, आपने जो सूचना दिया कि आपका पूरा परिवार, आप तीन बहन काफी सुनती हैं, तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आपके पापा जी बिना हालचाल सुने भोजन नहीं करते हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। वैसे आपको पता ही है कि रेडियो पर हालचाल का प्रसारण रात में 9:05 में और सुबह 7 बजे होता है और फिर इसे हालचाल गोपालगंज के नाम से YouTube पर डाल दिया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। आज भी जब हालचाल YouTube पर आप देखिएगा तो 10-10 बरस पुराना का भी हालचाल आपको दिखाई देगा, तो वह एक रिकॉर्ड बन जाता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं और कितना समय बोलते हैं और अपने जिले की सारी विकास संबंधी गतिविधियों की सूचना देते हैं। आपका संदेश मिला में आपने जो संदेश दिया उसके लिए हम आपके पूरे परिवार को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अन्य कार्यक्रमों के बारे में आप लिखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
0: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है अरविंद कुमार जी का रूपंचक मीरगंज से। सर, बहुत दिनों के बाद अपना संदेश भेज रहा हूं, इसे जरूर शामिल कीजिएगा। मैं एक रिटायर व्यक्ति हूं, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। जीवन का तजुर्बा और आज के परिस्थिति का वर्णन बहुत ही अच्छा करते हैं। व्यक्ति कितना बहादुर हो, अपने अंतिम समय में अपने परिवार पर निर्भर हो जाता है। पैसे का बहुत ही महत्व है, विशेषकर वृद्धा अवस्था में, और लायक परिवार के लोग रहे तो जीवन खुशी से बीतता है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय अरविंद कुमार जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिंझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सोनू जी ने आपका बहुत लंबा संदेश जो पढ़ा है इसके लिए हम इन्हें भी धन्यवाद देते हैं। कहा जाता है कि रिटायर व्यक्ति जो है मेरे समझ से एक निखरा हुआ सोना होता है। जिस तरह सोना को आग में जितना तपाया जाता है उसमें चमक उतना ही आता है, उसी तरह जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया है वह अपने बचपन से जवानी से तक जीवन में बहुत सारा अनुभव जो है पाया है और उस अनुभव को यदि वह अपने परिवार में और समाज में देता है तो सबका कल्याण होता है। आपने जो कहा है कि व्यक्ति कितना भी बहादुर हो लेकिन अंतिम समय में अपने परिवार पर निर्भर हो जाता है, यह बात सही है। जब व्यक्ति का शरीर लगता है जवाब देने, उस समय जो है परिवार के सदस्यों की याद आती है, जरूरत रहती है। जीवन में पैसा का महत्व है लेकिन व्यक्ति से बड़ा मेरे समझ से पैसा नहीं होता है। वृद्धावस्था में परिवार के साथ रहना, खुशी पूर्वक जीवन बिताना, यह अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति जैसा कर्म किया है उसका फल जो है यही भुगतना होता है। मेरे समझ से स्वर्ग और नरक जो है यही है, व्यक्ति जैसा रहेगा उसे जो है वैसा मिलेगा, और जीवन में व्यक्ति को बेहतर कार्य करना चाहिए। युवा अवस्था में व्यक्ति यदि अपने आप पर संयम रखता है, समाज के प्रति परिवार के प्रति जवाबदेह रहता है तो लोग उसका आदर और सम्मान करते हैं। जीवन में अच्छा बनना, बेहतर करना, जो जिम्मेवारी मिला है उसका निर्वहन करना बहुत अच्छी बात है। जीवन में यदि हम अपने आस पड़ोस गांव नगर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं तो वे लोग भी याद रखेंगे। काम करते वक्त समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। जिस दिन व्यक्ति रिटायरमेंट होता है उसको कई महीनों तक अपना ऑफिस कार्यालय याद आते रहता है, और वही दिनचर्या जो 40 साल बिताया है उसे जो है हमेशा याद रहता है, लेकिन धीरे धीरे पारिवारिक और सामाजिक माहौल में खप जाता है। अपने जिला मुख्यालय में हम कई लोगों को देखते हैं जो बैंक से, कलेक्टरियत से, अनुमंडल से या ब्लॉक से रिटायरमेंट हुए हैं, उसके बाद भी वह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। गांव में भी यदि कई लोग बुजुर्ग हैं जिनसे गांव के लोग परामर्श लेते हैं, तो जीवन में अपने आप को व्यस्त रखना, मस्त रखना अपने आप में उपलब्धि है। और यह जीवन जो है बड़ा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि जो काम हम आने वाले समय में करेंगे वह कभी नहीं हो पाता है। एक बार एक पंडित जी के प्रवचन में मैंने एक कथा सुना था कि रावण जब मरने लगा तो लक्ष्मण जी उसके पास गए और राम जी ने कहा कि इनसे कुछ शिक्षा लीजिए। तो वह जब शिक्षा लेने गए तो रावण ने बताया था कि जीवन में जो करना है उसे कर दीजिए, कल के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि मैंने चाहा था कि जो गंगा मैया है उसे जो है दूध का नदी बना देंगे, जमीन से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी बना देंगे। मैं कर सकता था लेकिन मैंने सोचा बाद में करेंगे। तो जीवन में जो काम करना है उसे समय के साथ तरीके से व्यक्ति को कर देना चाहिए, कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन एक उमंग है, एक उत्सव है, एक बेहतर कार्य करने का अवसर ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, इसे बेकार मत जाने दीजिए। आदरणीय श्रोता बंधु, जीवन के कई ऐसे अनुभव हैं जो हम लोग आप लोगों के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, और कई हमारे श्रोता हैं जो हमसे मिलते हैं, अपने जीवन के बातों को बताते हैं, अपने अनुभव को बताते हैं। जो व्यक्ति कष्ट सहा है जब उसे सुख की प्राप्ति होगी तो वही सच्चा आनंद होता है, और जिसने बचपन में ही सुख की प्राप्ति कर ली है तो वह सारा जीवन आनंद के खोज में भटकता रहेगा। मेरा मानना है कि हम लोग कई जगह जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, बाग बगीचे में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, लेकिन असली शांति जो है आपके अंदर है। यदि आपका मन जो है प्रफुल्लित है, आपका मन जो है शांत है, तो आपके पास सारी खुशियां उपलब्ध है। और जीवन के अंतिम समय में भी जो तनाव में रहता है, दबाव में रहता है, टेंशन में भी रहता है, उसका जीवन जो है बिखराव के तरफ चला जाता है। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह रहा है कि जब जो अवसर मिले उसे बेहतर करते चलिए, और किसी के भरोसे किसी काम को न छोड़े। जीवन में आपसे जितना हो सकता है उतना करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है, जनार्दन मौर्य जी कोइनी बाजार से भेजे हुए हैं। सर नमस्कार, मैं रेडियो रिमझिम को लंबे समय से सुनता हूँ। आपका विज्ञापन है वह कार्यक्रम के अलावा बहुत ही अच्छा लगता है, और मुझे जीवन में आगे बढ़ने का शिक्षा भी मिला है। आपका संदेश मिला कार्यक्रम मैं सुनता हूँ। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही देखे तो अभी मेरे पास कई संदेश है, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए। तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा ले।
1: आदरणीय मौर्य साहब, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने कहा कि रेडियो रिमझिम को हम लंबे समय से सुनते हैं और विशेष करके रेडियो रिमझिम का विज्ञापन आपको अच्छा लगता है, यह जानकर हमें भी काफी अच्छा लगा। क्योंकि आज से 15 साल पहले जो विज्ञापन बनता था उसका तरीका अलग था, आज जो विज्ञापन बन रहा है वह एक कार्यक्रम के तरह बन रहा है। हम लोगों को भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि विज्ञापन बनाने में काफी लंबा समय लगता है। पहले स्क्रिप्ट लिखिए, फिर उसका ऑडिट कीजिए, फिर उसको किसी अच्छे एक्सपर्ट से जांच कराइए, फिर जो प्रोफेशनल आरजे हैं उनके द्वारा रिकॉर्ड कीजिए। तो यह लंबा प्रोसेस चलता है, 7-8 दिन में एक छोटा सा 30 सेकंड या 40 सेकंड का विज्ञापन बनता है। इसलिए विज्ञापन को सुनने में काफी अच्छा लगता है। कहा जाता है कि जिस काम में हम जितना लंबा समय देते हैं उसमें उतना ही अनुभव प्राप्त होता है, और जिस काम को करने से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि होता है उससे बेहतर काम दुनिया में कोई नहीं है। बेरोजगारी है, हमारा मन नहीं है इस काम को करने के लिए, लेकिन करे तो क्या करे, उस काम को किसी तरह कर रहे हैं, क्योंकि परिवार के लोगों का मुंह देखना है। यह बातें जो है अक्सर हमको सुनने के लिए मिलता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप लग गए हैं तो पूरे तन मन से उस काम को कीजिए। देने वाला मालिक है, देने वाला भगवान है, आपके बेहतर काम का इनाम आपको जरूर मिलेगा। जीवन में घबराना नहीं है, जीवन में डरना नहीं है। कई बार हमने देखा है कि निर्दोष लोगों के ऊपर भी कई तरह का केस मुकदमा हो जाता है, और समय के साथ हमारी जो न्यायपालिका है वह सही और त्वरित निर्णय लेकर निर्दोष व्यक्ति को छोड़ देती है। तो ईश्वर पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। आप लंबे समय से सुन रहे हैं, इसमें अपना अनुभव जरूर हमें बताइएगा कि हमने जो कार्यक्रमों में बदलाव किया है, समय के साथ हमने जो टेक्नोलॉजी बदला है वह आपको कितना अच्छा लगता है। हम जो भी करते हैं अपने श्रोताओं के सुझाव के आधार पर करते हैं, और हम प्रयास करते हैं कि पंच परमेश्वर का जो सुझाव आता है वह बहुत ही बेहतर आता है। हमारे असंख्य श्रोता हैं, कई श्रोता जो है अधिकारी हैं, कई जो है कर्मचारी हैं, कई महिला सिपाही हैं, कई तरह के लोग हैं जो स्वस्थ मनोरंजन के लिए रेडियो रिमझिम को सुनते हैं। और मेरा मानना है कि जब समाज के इतने बड़े वर्ग के लोग रेडियो रिमझिम को सुनते हैं और इतनी बड़ी संख्या में जो सुझाव आता है वह रेडियो रिमझिम को सुदृढ़ करता है। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में सभी लोगों के बातों को हम सुनते हैं, रखते हैं और पूरी ईमानदारी से जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो आदरणीय श्रोता महोदय, हमें उम्मीद है कि आप हमारे बातों पर गौर कीजिएगा और जीवन में बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोता बंधु, सोनू जी ने कहा कि अब इस कार्यक्रम का समाप्ति करना चाहिए, क्योंकि हर कार्यक्रम का एक परिधि होता है, एक समय होता है जिसके अंतर्गत उस कार्यक्रम का संचालन होता है। आपका संदेश मिला कार्यक्रम रेडियो रिमझिम का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और जिस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे आदरणीय श्रोता अपने सुझाव और विचार को देते हैं वह हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब इस कार्यक्रम से हमें जाने की इजाजत दीजिए और अगले आपका संदेश मिला कार्यक्रम में अपने बातों को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हम आपके विचार और सुझावों पर ही अगले सप्ताह का कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। तो रेडियो रिमझिम को सुनते रहिए और अपने बातों को हम तक पहुंचाते रहिए। आज का दिन आपका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
5: स्प्लेंडर प्लस 91।
8: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
9: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
8: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
10: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
8: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
11: अपडेट रहे, आगे रहें। X@AIR News Hindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
8: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है PM किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
12: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
13: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
12: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
14: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
12: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
15: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबू से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
16: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
15: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
17: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
18: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना हो।
17: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
19: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
17: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
15: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमरीका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
20: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
15: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमरीका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमरीका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: मेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ऑनली ऑन रेडियो।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।

0: बस रोक।
1: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
4: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
1: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
1: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
1: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, वितरित शिक्षकों के लिए वेतनमान की व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदेश में बाढ़ के चलते 17 जिलों की 1050 सड़कें क्षतिग्रस्त, 3800 से अधिक चापाकल भी हुए खराब। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को 90 दिनों की मजदूरी देने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और पुलिस मुख्यालय ने कहा, सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े फर्जी बीमा दावों की जांच अब सीआईडी की विशेष जांच टीम करेगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वित्त रहित शिक्षकों के लिए वेतनमान की व्यवस्था लागू की जाएगी। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में शिक्षकों और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि वित्त रहित शिक्षा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी गठित की गई है।
1: मैंने पदाधिकारी को भी लगाया, हम अपने जितने संघ के साथी हैं उनको भी मैं आश्वस्त करता हूँ, आपसे भी बात करूंगा, जो हमारी घोषणा है वेतनमान उसको जरूर लागू करूंगा, सबके साथ चर्चा करूंगा। हमारे ऑफिसर ने काम शुरू कर दिया, इसको कहीं तो हमने तो कमेटी बनाया है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता, अब इनसे संवाद करूंगा, वकील सब से, फिर आपके जो यूनियन के लोग हैं उनसे बात करूंगा।
0: राज्य सरकार ने 1294 अनुदानित विद्यालयों के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस राशि से शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में बाढ़ से 17 जिलों की 1050 से अधिक ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनकी कुल लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। ग्रामीण कार्य विभाग को जिलों से मिली प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार ये सड़कें फिलहाल बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विभाग की ओर से जिलों से सड़कों की स्थिति की दैनिक रिपोर्ट ली जा रही है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन सी सड़क कितनी क्षतिग्रस्त हुई है। प्रारंभिक रिपोर्ट में भागलपुर में 151 और पटना में 140 ग्रामीण सड़कें पानी में डूबी बताई गई हैं। इसके अलावा भोजपुर में 134, सारण में 101, समस्तीपुर में 86 और वैशाली में 82 सड़कों के प्रभावित होने की जानकारी है। इधर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अनुसार बाढ़ के चलते प्रभावित जिलों में 3800 से अधिक चापाकल खराब हो गए हैं। पटना पूर्वी और पश्चिमी प्रमंडल में 347 नल जल योजनाएं और 294 चापाकल प्रभावित हुए हैं। हाजीपुर में 258 योजनाएं और 136 चापाकल, भागलपुर पूर्वी में 161 योजनाएं और 760 चापाकल तथा खगड़िया में 109 योजनाएं और 450 चापाकल खराब हुए हैं। इसके अलावा बेगूसराय, लखीसराय, समस्तीपुर, छपरा और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी नल जल योजनाओं और चापाकलों को नुकसान पहुंचा है। विभाग की ओर से पानी घटने के बाद क्षतिग्रस्त योजनाओं को जल्द दुरुस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को अब 90 दिनों की मजदूरी विकसित भारत जी राम जी योजना से मिलेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिहार सरकार के इस अनुरोध को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे गरीब परिवारों को अपना पक्का मकान पूरा करने में सुविधा होगी। प्रदेश के सभी जिलों में एक एक मॉडल सहकारी गांव बनाए जाएंगे। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि मॉडल सहकारी गांव में सहकारिता से जुड़ी विभिन्न योजनाएं संचालित की जाएंगी और ये गांव सहकारिता के माध्यम से रोजगार और आर्थिक विकास का उदाहरण बनेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को सहकारी बैंकों के माध्यम से कारोबार के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। श्री यादव ने बताया कि इन गांवों के लोगों को कृषि, डेयरी, मत्स्य और पशुपालन, ग्रामीण विकास, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार और कौशल विकास सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी जोर रहेगा। मॉडल सहकारी गांव में अपनाए गए सफल प्रयोगों और उससे होने वाली आमदनी की जानकारी आसपास के गांवों को भी दी जाएगी। प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मछली पालकों को 80% तक अनुदान मिलेगा। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विशेष घटक पैकेज योजना के तहत आवेदन मांगे हैं। योजना के तहत तालाब निर्माण, बोरिंग पंप सेट, सोलर पंप सेट, शेड और यांत्रिक एरेटर जैसी सुविधाओं के लिए सहायता दी जाएगी। तालाब मात्स्यिकी योजना में अधिकतम 10,10,000 रुपए की लागत पर 70%, जबकि पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण योजना में 16,70,000 रुपए तक की लागत पर 80% अनुदान मिलेगा। इच्छुक लाभार्थी विभागीय पोर्टल fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में इस वर्ष 100 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष में एलोवेरा, अश्वगंधा, ब्राह्मी और शतावरी की खेती के लिए किसानों को 36,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के लिए 36,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में मधुबनी जिले को देश भर में 7वां स्थान मिला है। जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा ठाकुर ने बताया कि मखाना मछली एकीकृत मॉडल के जरिए जिले को यह सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि कृषक उत्पादकता समूहों की सक्रियता के कारण इस योजना से जिले में 2,375 किसान जुड़ चुके हैं। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े फर्जी बीमा दावों की जांच अब सीआईडी की विशेष जांच टीम एसआईटी करेगी। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने सड़क दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें 24 घंटे के भीतर छोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए जिला स्तर पर डीएसपी यातायात के अधीन व्यवस्था की गई है। पुलिस मुख्यालय ने यह भी निर्देश दिया है कि यातायात उल्लंघन का चालान फोटो या वीडियो जैसे साक्ष्यों के आधार पर ही जारी किया जाए। वाहन मुक्त कराने में परेशानी होने पर पुलिस मुख्यालय के मोबाइल नंबर 9031829356 पर व्हाट्सएप, कॉल या एसएमएस के माध्यम से शिकायत की जा सकती है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में 23 सितंबर से 26 सितंबर के बीच बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य में बारिश की अनुकूल परिस्थिति बनेगी। विभाग के अनुसार 24 सितंबर को बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 25 सितंबर को औरंगाबाद, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, गया, मुंगेर, समस्तीपुर, सीवान, वैशाली और पश्चिम चंपारण जिले में भारी वर्षा का अनुमान है। इधर पिछले 24 घंटों में बारिश के दौरान बांका और अररिया जिले में वज्रपात की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA सम्मेलन में भाग लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे। सिडनी पहुंचने पर भारतीय राजनयिक अधिकारियों और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी बिहारियों ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। डॉक्टर कुमार ऑस्ट्रेलिया प्रवास के दौरान संबंधित अधिकारियों, प्रवासी भारतीयों और बिहारियों के साथ संवाद कर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित मिलर हाई स्कूल के पास 108 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक जल मीनार का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि इसके लिए पटना नगर निगम ने लगभग 3,38,00,000 रुपए की परियोजना की निविदा आमंत्रित की है। परियोजना के तहत लगभग 14,400 वर्ग फीट क्षेत्र में परिसर का विकास किया जाएगा। यहाँ लगभग 2,500 वर्ग फीट में आधुनिक कैफेटेरिया का भी निर्माण होगा। वैशाली जिले में सूखे नशे के कारोबार को संरक्षण देने के आरोप में 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सोनू कुमार राय ने बताया कि महनार थाना अध्यक्ष वेदानंद सिंह और डायल 112 के प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि एक स्मैक कारोबारी के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान इन पुलिसकर्मियों की नशे के कारोबार में संलिप्तता की बात सामने आई थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में फरार चल रहे अशोक कुमार साव को पटना से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ और महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने उसे रुकनपुरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। अशोक नवादा जिले के कौवाकोल थाना क्षेत्र के डमैल का रहने वाला है। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र स्थित रसूलपुर के पास डकैती की योजना बना रहे 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देशी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और मादक पदार्थ स्मैक बरामद किए गए। वहीं जिले के नगर थाना क्षेत्र के दर्शन शाह महाविद्यालय के पास वाहन जांच के क्रम में पुलिस ने 102 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। भोजपुर जिले के शाहपुर में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ हेरोइन बरामद किया है। मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। अररिया जिले के चौपनी चेक पोस्ट के पास पुलिस और SSP की टीम ने एक ई रिक्शा से 32 किलो से अधिक गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, विकसित और समृद्ध बिहार बनाने के लिए सभी मिलकर काम करें। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अग्निवीर भर्ती रैली कल से जूता पहनकर दौड़ेंगे अभ्यर्थी। दैनिक जागरण ने एशियन गेम्स से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, भारत का खुला खाता, निशानेबाजी में टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक। दैनिक भास्कर लिखता है, कैमूर तिलहार कुंड में बनेगा एडवेंचर हब, यहां ट्रैकिंग रूट होंगे। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, MLC चुनाव, पीके के 5 उम्मीदवारों के नाम हुए घोषित। आज अखबार लिखता है वित्त रहित शिक्षकों का निराकरण होगा मुख्यमंत्री। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा वित्त रहित शिक्षकों के लिए वेतनमान की व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदेश में बाढ़ के चलते 17 जिलों की 1050 सड़कें क्षतिग्रस्त, 3800 से अधिक चापाकल भी हुए खराब। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को 90 दिनों की मजदूरी देने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और पुलिस मुख्यालय ने कहा सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े फर्जी बीमा दावों की जांच अब सीआईडी की विशेष जांच टीम करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: धन्यवाद। आज 2 मिनट लेट हो गया हूँ, 3 मिनट।
1: हाँ हाँ, 2 मिनट थोड़ा लेट हो गया,
2: बात करते हुए 2 मिनट लेट हो गया हमको भी। चलिए, पार लग गया।
1: तो क्या हाल चाल है आपका?
2: सब बढ़िया, मतलब बताइए भी हुई तो? एक नंबर मत गया मेरा और भाप से बात हो गया।
1: एक नंबर में लगाते तो है लेकिन कॉल आपका,
2: ये शिकायत हम करने वाले थे लेकिन अभी आप ही बता दी।
1: पीछे चला जाता है वो कंप्यूटर में एडिट करने के लिए जब डालते हैं उनको।
2: लेकिन मैम हम आपको एक बात बता दें, एक दिन मनोरमा मैम कोशिश करके बजाई थी एक नंबर में। हम आप बोले थे उस दिन भी कि मैम कोशिश कीजिएगा, इतना खुशी मिलता है, जितना खुशी मिलता है ना, आप एक बार श्रोता बनकर मतलब कॉल कीजिएगा तो पता चलेगा मिलता है जब एक नंबर में बजता है।
1: बहुत खुशी मिलता है, ये तो बात है। श्रोता बन के कॉल या मैसेज करें तो इसके लिए तो मुझे सोनू जी के साथ जुड़ना पड़ेगा, इसलिए उसके बाद ही हम आप लोगों के बीच जुड़ पाएंगे।
2: जी मैम, उनका तो रात में शो चलता है ना। एस एस शर्मा जो मतलब है रेडियो रंजन का, उसका ये शो का उसे नहीं लिखा है।
1: एस एस शर्मा इसका नहीं लिखा है?
2: नहीं, उसका लिखा है, हेलो माय चॉइस का नहीं लिखा है।
1: हाँ, हेलो माय चॉइस का नंबर नहीं लिखा है,
2: नंबर या कुछ भी नहीं लिखा है, उसे टाइमिंग कुछ भी नहीं लिखा है।
1: ठीक है, इसको देख के ध्यान से ठीक कर दिया जाएगा,
2: क्योंकि हम लोग तो पुराने हैं तो जानते हैं कब का कौन शो है। हमको रेडियो सुनते हुए 6 साल हो गया,
1: बढ़िया,
2: और जुड़ते हुए यही 2-3 साल हुआ है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं रेडियो में क्या रखा है, इतना इंटरनेट का जमाना है, लेकिन हम बोलते हैं जो इसे लगाव है
1: वो कहीं नहीं।
2: हाँ, और इसमें सुनने का मजा ही कुछ और है।
1: ये तो है,
2: नेट के द्वारा तो 1 मिनट में सुन सकते हैं कोई भी सॉन्ग मंगा करके।
1: वो तो,
2: लेकिन रेडियो को सुनने का कुछ अलग ही मजा है। तो मैम आज हमें 11 सा गाना सुनाइए और कोशिश कीजिएगा 1 नंबर बजे, और कोशिश कीजिएगा कि मेरा खुशी दुगुना हो जाए।
1: जी बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार मेरा कॉल जो है ये कल बजेगा।
2: हाँ, वो तो हमको मालूम है, मनोरमा जी का कॉल बाकी है। जी मैम, तो कोशिश कीजिएगा फुल।
1: जी जी,
2: नहीं तो फिर से शिकायत रहेगी सोमवार को आपसे।
1: जी बिल्कुल, इस बार कोशिश है कि आपकी फर्स्ट कॉल ही बजे।
2: जी मैम, तो आज मुझे 11 सा गाना जिगर मूवी सुनाइए।
1: ओके, गाने की बोल बता दीजिए।
2: जी, गाने का बोल है, तुझको बाहों में भर लिया हमने ये फैसला कर लिया।
1: और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: सुनवाने वाली तो थी लेकिन अभी है नहीं, तो सभी दोस्तों को सुनवाएंगे और आपको, सभी आरजे को।
1: चलिए बढ़िया है।
2: और कोई भी सॉन्ग है इसमें दिल को मतलब दिल पे लेके नहीं सुनते हैं, बस एंजॉय के लिए सुनते हैं।
1: जी, आपके द्वारा गाना फरमाइश किया जो रहता है वो काफी अच्छा आता है।
2: हमको बहुत ज्यादा मतलब मूवी से ज्यादा गाना से लगाव है, और रेडियो रिंगटोन का सभी शो मतलब सुनते हैं।
1: बढ़िया,
2: इतना लगाव है, उतना किसी को इंसान तो नहीं होगा उतना रेडियो से लगाव है। चलिए कोशिश करेगा मैम, इसके लिए एडवांस धन्यवाद।
1: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
2: ओके मैम, बाय बाय।
1: बाय।

0: नमस्कार कल्चन बानी जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
0: जी हम तो गाने का जैसे लगावत लगावत जाके अब राम जी की सारे बड़े सारे के सारे जा रहे हम कौन है केवरा। हाँ अब बात वहाँ के पड़े के रहते हैं तो अब लास्ट कॉल चला था जी।
1: हाँ हाँ लास्ट कॉल चला था।
0: और क्या हाल चल रहा
1: जी बानी?
0: खाना पीना बढ़िया से कॉफी आदमी जाने।
1: हाँ खाना पीना तो खा पी के आवे एकदम।
0: हाँ तो अब एक बात प्रोग्राम पड़े थे प्रोग्राम ऐसे लेट हो जाते थे ना।
1: हाँ ऐसे लेट हो जाता
0: है। मनोरमा जी नीचे लिखा है
1: वहाँ के बानी
0: तो घर परिवार कोई फिगर चलिए वो गाना बारे मेरा प्यार वो है कि मर के भी तुमको बाहों से जुदा होना देंगे।
1: जी और गाना
0: सबसे पहले तो अपने के मनोरमा जी के सोनू भाई धरन सजीर भाई धरन कमरान भाई धरन जाटा भाई धरन सोनी राजन कुशवाहा जी धरन
1: चलिए फिर ठीक बात। अब गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक बात है तो नमस्कार और सभी दोस्तों को भी नमस्कार।
1: रेडियो रूम जिम में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नाम का पूछिए ना कोई नहीं।
1: दिलीप
0: दिलीप राम
1: जी
0: नमस्कार।
2: मेरा प्यार वो है के मर कर भी तुमको जुदा

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
8: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
8: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
8: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
8: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: खुशी से आजाद रखो, अपने जिंदगी को गम से आजाद रखो, अपने जिंदगी को खुशी से आजाद रखो, अपने जिंदगी को गम से आजाद रखो, इतना गुजारिश है तुमसे सोने से पहले मुझे याद रखो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
13: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
12: मैं भी अच्छा हूँ। बोला कि आज लगाऊं कॉल, अजीम रिकॉर्डिंग होगा, जल्दी लग गया मेरा।
13: जी जी,
12: नाश्ता तो हो गया?
13: हाँ हाँ, नाश्ता करके आते हैं।
12: हाँ, मैं नाश्ता तो कर जाना ही पड़ेगा। मेरा भी नाश्ता तो हो गया है, छत पे आए हैं, धूप पे हल्का हल्का हवा चल रहा है। अच्छा,
13: हाँ वैसे ही मौसम है।
12: हाँ, अगर बारिश वरिश नहीं हो रहा था, बोला था घर पे फोन किया था, बोला बारिश नहीं हो रहा था। देखो समझिए, अक्टूबर का कुछ गर्मी पड़ेगा।
13: अभी तो शीत जैसा मौसम बन रहा है, शीत वगैरह सुबह में रहता है।
12: जी जी जी, समझिए कि नवंबर से ठंडा चालू हो जाता है, अक्टूबर जाएगा तो कुछ अलग हो जाएगा। तो आप बहुत त्योहार भी आने वाला है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ।
13: जी जी, अब तो दुर्गा पूजा हो गया, उसके बाद दिवाली छठ का भी लगातार आने ही वाले हैं।
12: जी जी, लगातार है त्योहार। दिवाली में तो बहुत लोग पूछते हैं कि दिवाली में सवाल खेले जाए, छुट्टी मिलता है।
13: ये तो
12: धनतेरस में सबसे बड़ी बात है टाइम। अगर इंसान अगर काम करने लगा तो बस टाइम का बहुत मायने रखता है। सबसे बड़ी बात है कि टाइम रहता तो कहीं कोई आएगा, कुछ करेगा। और ऐसे अगर कोई काम नहीं करो तो टाइम में टाइम है, चलो कोई बात ही नहीं है। और सब सुनाइए, बढ़िया है?
13: जी, और सब बढ़िया है।
12: घर परिवार?
13: जी सब घर परिवार में भी सही है।
12: तो ये बताइए, चल रहा है उसमें कॉल वाला सिस्टम नहीं रखे आप? क्या हटा दिए लोग? क्या
13: नहीं है, कॉल तो कॉल आ रहा था।
12: मैंने कॉल किया था दिन।
13: हाँ,
12: तो रिसीव नहीं हुआ। मैं बहुत कॉल किया, हमको लगा इसे हट गया था कॉल वाला,
13: तो
12: ये हो रहा था।
13: नहीं,
12: ये अंताक्षरी शुरू करिए ना, तो आप आए गए हैं, दो दो आगे हैं, आपका सोचना है संडे पे?
13: इसके लिए तो हम लोग नहीं कर सकते, वो सर
12: बोलना पड़ेगा। संडे को बहुत बढ़िया चलता था इतना।
13: हाँ, संडे को भोजपुरी एक्सप्रेस चलता है 2 बजे से 5 बजे तक।
12: हाँ हाँ, नहीं वही ना सोचा, बताइए कितना लंबा दिन के प्रोग्राम, 12 बजे से लेकर ये टाइम बढ़ गया ना, तो 3 तक का टाइम से क्या इसका?
13: हाँ, इसका टाइमिंग है 12 से 4।
12: 4 हो गया ना। बताइए, लंबा गिट्टी न्यूज चलता है, तो आप लोग खाना वाला खाते होंगे।
13: हाँ,
12: तो अच्छा लगा आपसे बात करके। गाना हमको सुना दीजिए, गाना नहीं आज कवाली सुना।
13: कवाली बता दीजिए कौन सा?
12: अपने ही रंग में रंग में कवाली है।
13: जी जी, और कवाली तो सुनवाना भी है।
12: जी जी जी, सबसे पहले आपको और आयशा सबनम सिद्दीकी, सबीना सब्बा सिद्दीकी, अख्तरी अहमद अली, दुर्गा परमी, अनिमा साजिया, आयशा अफरीन, भास्कर वर्जी, ईश्वर सोनी, मुकेश, उमर शंकर, देवेंद्र, दिलीप राम, शाहजहां, रुखसार, सजदा अंसारी, कुमारी, निशा सुखनवाल, निशा भारती, जितने लोग सुन रहे हैं सबको सुना दीजिएगा। अच्छा लगा, फिर मंडे को मिलेंगे। नमस्कार
13: नमस्कार, रेडियो रिमिशन में कॉल किए।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: बोलिए क्या हुआ
0: जी? अभी तो बस आप लोगों से बातें हो रही हैं।
1: बोल रही हूँ, गाना सुना है।
0: बिल्कुल बता दीजिए कौन सा।
1: हर कदम से कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई।
0: और ये गाना किसी को सुनवाना भी है
1: आपको? ऑलरेडी मैंने सुना है सभी श्रोता को। मैम आप मनोरमा मैम बोल रही हैं?
0: नहीं,
1: तो सोमवार को रिकॉर्डिंग मनोरमा मैम की थी? नहीं,
0: इसी सोमवार को।
1: हाँ, इसी पिछले बार सोमवार को।
0: हाँ, मनोरमा जी रिकॉर्ड की थी।
1: तो मेरी भतीजी कॉल की थी और छोटी वाली तो बोल रही थी कि मेरा गाना मैम नहीं बजाई है, तो पढ़ने चली गई है। बोल रही थी कि कमेंट कर दीजिएगा बुआ।
0: अच्छा जी, सोमवार को जो गाना उनका रिकॉर्ड की थी कॉल, वो में से जो बाकी कॉल है वो आज बजेगा, तो हो सकता है उसी में हो।
1: वही बोल रही थी, हम लोग उससे रिगा रहे थे, बोल रहे थे कि तुम्हारा गाना मैम नहीं बजाई है, तो रो रही थी। तो बोल रही थी कि हम गोपालगंज जाएंगे ना तो मैम को मारेंगे, जाऊंगा तुम चिंती हो। बोल रही थी
0: नहीं, वो कॉल है उसमें बच जाएगा, सोमवार का जो कॉल है कुछ इनके पास बचा हुआ है।
1: ठीक है, खाना खा लिए?
0: हाँ, हम तो खाना खा लिए।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी

0: विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिन 90.4 अमरजैट पर।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: Now pick your phone up.
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो, जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
9: ठीक है, आप बताइए।
8: जी हम सब तो ठीक है। दूसरा बता दीजिए।
9: बता दिए पवन सिंह की आवाज में।
8: और गाने की बोल
9: अपना पसंद से बता दिए पवन सिंह की आवाज में।
8: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनाएंगे?
9: प्ले
8: करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। हम तो ठीक बने रहो, बताए रहो कैसा बात।
0: ठीक बनी मम्मी, पता नहीं।
1: अरे सर
0: जी,
1: सबका हाल चल रहा?
0: ठीक है, आप सुनाइए।
1: हम लोग भी ठीक बा।
0: रिकॉर्ड लेट कर मिल कर मैम
1: ना था, एकदम टाइमली चालू कोई नहीं है।
0: अच्छा, तो हम जब से लगा तो लागत का है ना ये?
1: लागत ये तो नहीं है कि कॉल एकदम लगातार आज बिल्कुल आ रहा है। अभी तक टाइम पे ऊपर जाता है।
0: हाँ, हम को नहीं कहीं लेट से चालू हो जाए। आप कड़ाई कोई लगा था ही ना, तो मैं बैग पे
1: अबे बंद करे जात्रा नहीं है रिकॉर्डिंग। चले भाग्य भरोसे उठ मिला
0: तो लिखर लग मैंने बात हो जाए ना। गलती से उठ ना मैडम।
1: ना ना, जल्दी से बता दी कौन सा गाना प्ले करे।
0: गाना है बजा दी, प्यार के लिए चप्पल कम नहीं है।
1: गाना क्योंकि सुनवाऊ के बाद
0: और सुने सबके सुनी जितना लोग रेडियो सुनता।
1: चलिए और गाना प्ले कर, सुनत रही रेडियो 90.4 FM।
0: ठीक है।

0: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-911। जी हाँ, 8009-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4
15: FM। गाँव गुनाथ है
14: जी, क्या हाल चाल है आपका?
15: बहुत बढ़िया, मैं वो गाना चाहिए, मैं मेरा महबूब आया है, बारो फूल बरसाओ।
14: हाँ हाँ, ओके, तो आपका ले सकते।

0: नमस्ते
1: नमस्ते,
0: मुझे गाना सुनना है।
1: बिल्कुल बता दीजिए।
0: सड़क पिक्चर का।
1: हेलो
0: जी सर,
1: कौन सा गाना सुनना है उसमें का? सड़क मूवी का बता दो।
0: तू जब जब प्यार पे पहरा हुआ है।
1: और गाना किसी को सुनाएंगे भी?
0: सबसे पहले आप और जिन्हें सुनने वाले हैं।
1: ओके तो आपका ले सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो, तुम सुनना।
0: ठीक, नमस्ते
1: नमस्ते।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। हेलो,
8: क्रिसमस बोलता नहीं।
7: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
8: ठीक है बाबू।
7: अच्छा, ठीक बाना?
8: हाँ, चारों घर ठीक बानो।
7: हाँ हाँ, हमने के सबके ठीक बानी।
8: ठीक है,
7: बता दीजिए कौन सा
8: कव्वाली सुना दो।
7: कव्वाली कौन सा कव्वाली सुना दी?
8: निकाह फिल्म सुना दिया।
7: अच्छा, निकाह मूवी के गाना क्यों के सुना हो के
8: बाद सुनते करने लगते।
7: जी जी, तो चले फिर ठीक बात और गाना प्ले करता नहीं सुनत रही रेडियो 90.4 FM। नमस्ते,
8: खुश रहो।

0: नमस्कार
1: जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में। बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा सॉन्ग। और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
0: सभी दोस्तों को।
1: वैसे आपका नाम?
0: राजू कुमार मधु शर्मा।
1: अच्छा जी, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो 90.4 एफएम।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: Pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
8: Hello.
9: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
11: जी नमस्ते मैडम।
12: नमस्ते,
11: विकास कुमार बोल रहे हैं, उनका फिर से।
12: क्या हाल चल रहा?
11: बढ़िया।
12: हाँ होता अभी।
11: आप कैसन बनी मैडम?
12: हम तो ठीक बनी रहवा, बताए रहवा कैसन बनी।
11: हमने को बढ़िया बनी सर।
12: तब भोजपुरी बोले में कोनो दिक्कत तो नहीं है ना?
11: नहीं दिक्कत नहीं के, हमने की आदत हट जाए हिंदी बोले के, घर पर भी जाये ले तो कबू काल हिंदी बोल दीजिए। तो घर के गाँव का लैको फेको हुआ सन तो कहे सन की चले तू हिंदी बोल रहा है, दिल्ली रहता है तो।
12: नाश्ता पानी हो गया?
11: हाँ नाश्ता पानी हो गया मैडम।
12: हाथ कैसे बा? हाथ में चोट लगा रहे ना?
11: हाँ सही हो, सही है मैडम।
12: चलिए बढ़िया,
11: विश्वकर्मा जी के कृपा से सही हो गई। बढ़िया, और बताइए, और बताइए मैडम।
12: और सब तो ठीक बा।
11: और वो मोनार्मा जी
12: ठीक बानी?
11: अच्छा चलिए बढ़िया है, काम बटे।
12: तो बता दे आज कौन सा गाना सुने?
11: आज गाना सुनेंगे वो निरहुआ का नहीं है, सिनुरमा कैसे जाई बने, वो ऐसे कुछ गाना है वो, लेकिन याद नहीं है ना मैडम। वो जो बम्बई वाली एक नहीं रहती है, वो घर जाती है, वो उसके लिए उसके ट्रैक्टर पर बैठा करके निरहुआ, वो अपने ट्रैक्टर पर बैठा करके ले जाता है उसको छोड़ने के लिए।
12: देखना तो पड़ेगा, याद मुझे भी नहीं आ रहा है।
11: याद नहीं आ रहा है?
12: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
11: ये आपको, आपको सुनवाना है और जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको। ये भोजपुरी वाले तो आप लोग को भी सुनवाएंगे और जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको और सोनी मैडम को भी सुनवाएंगे और सब मैडम। आपके घर में मम्मी पापा आपके सब सही है ना?
12: जी मेरे घर में तो सब सही है।
11: अच्छा सब कोई है अभी
12: मेरे घर में?
11: दादी उदी, दादा उदा सब है?
12: हाँ सब कोई है।
11: चलिए बढ़िया है, सब कोई सही है ना?
12: हाँ सब कोई सही है।
11: चलिए सही है, सही होना चाहिए। भगवान करे बढ़िया से रहे, एकदम बढ़िया तरक्की करे, एकदम आप लोग का प्रोग्राम चलते रहे, चाहिए हम लोग बात ही करते रहे, इससे अच्छा और क्या है।
12: हाँ, ये बात सही
11: है। दुनिया से क्या ले जाना है मैडम?
12: जी
11: बस थोड़ी सी बात हो जाता है, एंजॉय हो जाता है, गाना वाना भी फरमाइश कर लेते हैं। तो मेरे घर में जानते हैं रेडियो का जगह पर वो होम थिएटर है, बड़ी वाली 6-7 हजार का है वो होम थिएटर। जब मैं घर गया था रक्षाबंधन में तो मेरे पापा जी नहीं रहते थे, तो हम जब बजाते थे जब पापा जी घर में आ जाते थे तो नहीं बजाते थे।
12: पापा जी से डर लगता है
11: वो गुस्सा कर लेते थे, बोलते थे कि बहुत पिटाई होगा तो ये सब बजाओगे तो। हम बोले कि चल चलिए ठीक है नहीं बजाएंगे। अब बोलते हैं तो नहीं बजाएंगे। जब कहीं चले जाते थे तो थोड़ा लो-फाई सॉन्ग वॉन्ग लगा करके सुनते थे। चलिए बढ़िया है। तो कल विश्वकर्मा पूजा था जानते हैं?
12: विश्वकर्मा पूजा था, सबके यहाँ पूजा हुआ।
11: तो कल पूजा हो जा, कल पूजा हो जा करवाए। मंदिर है अपने कंपनी में, केला वोला से वो लाए थे, लड्डू वड्डू वही पूजा पाठ सुबह में करवाए थे। पूजा वूजा करवा करके उसके बाद फिर अपने ड्यूटी में लग गए। घर में भी मेरा आटा वाला मोटर वाली मशीन है, आटा वाटा पीसते हैं पापा जी
12: है।
11: और वो पानी चलाने वाला मशीन भी है, सब बड़ी बाड़ी भी है। हाँ सब ये सब आप लोग का कृपा से, भगवान का कृपा से,
12: ये सब भगवान की कृपा है।
11: कमा करके हम भी कर दिया है कुछ।
12: ये सब होना चाहिए, ये सामान बड़ा रहता है तो अच्छा रहता है। अपना काम अपना भी काम हो जाता है खुद।
11: हाँ दो पैसा आ भी जाएगा। 800-900 रुपए डेली का आटा पीस करके आ जाता है।
12: तो पापा जी का खाता चल रहा है।
11: हाँ पापा जी पीते हैं डेली का डेली, कभी 700 कभी 800 इससे करके आ जाता है।
12: बढ़िया
11: है। और सब बढ़िया है ना मैडम?
12: जी जी और सब बढ़िया है
11: जी।
12: तो फिर चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
11: जी नमस्ते मैम।
12: नमस्ते।

0: मैं आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए, नाम बता
1: दीजिए। भारती जी बोल रहे हैं, वहाँ मौसम कैसा है आपका?
0: मेरे यहाँ का तो मौसम हल्का हल्का, बस बादल छाया हुआ है और हल्का धूप है।
1: हम तो पहला बार कॉल लगा है, मैंने आपका पास नया है हम।
0: जी, आपका नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम प्राणनाथ दुबे, तोरा से बोल रहे हैं, हमारा सानी गांव है।
0: तो क्या हाल चाल?
1: बस हम आपका रेगुलर सुनने वाला है, रेगुलर सुनते हैं आपका। एक्चुअली में हम रहते हैं कलकत्ता में, हम कलकत्ता में ही आपको प्रोग्राम सुनते हैं दिन रात। जब मौका मिलता है तब आपका हम रेडियो इंजन सुनते हैं।
0: सब तो बढ़िया है,
1: और यहाँ मौसम है बारिश, बारिश मौसम है, पानी पानी हो रहा है यहाँ तो बता।
0: आपके यहाँ बारिश हो रही है अभी?
1: हाँ, यहाँ पर कलकत्ता में अभी बारिश हो रही है।
0: अभी आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: अभी हमको वही सुना दीजिए, इसी बरसा पानी, बारिश हो रहा है यहाँ पर, तो उस हिसाब से गाना। और हमारे जितने रिपोर्टर है उनको हम सुनाना चाहेंगे, आपको भी सुनाना चाहेंगे, और मेरे घर के मेरे लोग है, रिश्ता है, मैं है, मेरी मम्मी है, सबको सुनाना चाहेंगे, मेरी बहन लोग है।
0: आपको गाना देखना है।
1: ओके मैडम, ओके, थैंक यू।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल

0: रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
7: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजेड पर।
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
11: कैसे मिचा?
10: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
11: हमारे भी ठीक है, खाना खा लिए?
10: हम तो खाना खा लिए हैं, आप बताइए?
11: हम भी खा लिए। अरे सब बताइए।
10: और सब तो ठीक है, बस सबको ही अपने अपने काम में लगे हैं।
11: हाँ, जुमा है।
10: तो कौन सा गाना सुनना है आज?
11: गाना अपना पसंद से सुना है।
10: अपने से कोई भी?
11: हिंदी
10: गाना आज आप नहीं बताइएगा,
11: अपना पसंद से सुना दीजिए।
10: ओके, और गाना किसी को डेडिकेट भी करेंगे?
11: मेरा भाई बता रहा है,
10: तो बता दीजिए।
12: दिल जले का गाना।
10: और दिल जले का कौन सा गाना?
12: शाम है दूंगा।
10: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
12: आपको और बहन हेलो सभी को।
10: जी जी, तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं।
12: ठीक है।
10: वैसे आपका नाम?
12: अरमान आलम।
10: जी, तो
12: कब तक सुनाइएगा मैम?
10: ये आपको कल आएगा या फिर परसों आएगा?
12: ठीक।
10: ओके, रेडियो रूम से मैं कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
12: थैंक यू।

0: हेलो जी,
1: हेलो, नमस्ते
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4
1: मैम,
0: एफएम
1: कैसी हैं आप?
0: में। नमस्ते, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए, आप कैसी
1: मैं भी ठीक हूँ मैम। आपको पहचान रही है? हेलो,
0: हैं? हेलो, हाँ,
1: बोल रहे हैं, आप पहचान रही हैं?
0: थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे याद था, भूल गए हैं।
1: बता दें,
0: हाँ बिल्कुल, बताइए। अच्छा
1: मनीषा कुमारी प्रयास सुंदर से।
0: जी, हाँ, क्या
1: अभी
0: हो रहा है मनीषा जी?
1: तो रेडियो सुन रही थी और अपना गाना सुन ली, बहुत अच्छा लगा मेरा गाना बजा।
0: चलिए, बढ़िया, आपको अपना गाना सुनने को मिला, और क्या चाहिए।
1: ना ही बजता है तो अच्छा नहीं लगता है, जब बज जाता है तो इतना अच्छा लगता है।
0: तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा,
1: सुनवा दीजिए मधुर मेरे दिल की गोजा।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है।
1: मैम गाना मालूम चल गया ना
0: हाँ, चुप हो जा, हुआ से हुआ।
1: जी मैम?
0: हाँ, आगे की लाइन मैंने बताया आपको,
1: क्या?
0: आप थोड़ा पीछे का बताइए और हम उसके आगे का बता दीजिए।
1: हाँ चलिए ठीक है, आप बता दीजिए।
0: हाँ, तो गाना कंप्लीट हो जाएगा।
1: हम एक लाइन में आधा आधा गा दे रहे हैं। चलिए तभी है, खाना खा लिए ना? चलिए
0: हम खा के आते हैं।
1: तभी है,
0: ओके, तो
1: आप
0: गाना
1: सुनवा दीजिए।
0: जी बिल्कुल सुनते रहिए रेडियो रिंग 90.4 FM।
1: मैम अपने घर में सब कोई को सुनाना चाहती हूँ,
0: बिल्कुल,
1: और रेडियो सुनने वाले कभी दोस्तों को और कभी यार जी को।
0: ओके जी।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R, अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 9.4 FM में।
9: नमस्कार दीदी।
8: नमस्कार।
9: दिन भी मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ है, नहीं सुनाई गए दीदी।
8: जी जी, आपका एक कॉल बचा हुआ है, उसको सुना दिया जाएगा।
9: जी जी जी, तो सुना दीजिएगा। आज दिल वाले फिल्म का जीता था, जिसके लिए के लिए मरता था।
8: जी जी बिल्कुल सुनाएंगे। और गाना डेडिकेट भी है किसी को?
9: हाँ, हिमेश कुमार, ऋतिराज कुमार, पंकज कुमार, रेणु देवी, सपना कुमारी।
8: ओके, तो आपका गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी मैं मन्ना बोल रहा हूँ।
0: जी, क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल तो ठीक है, पर मेरा गाना आप ही नहीं बजाए।
0: आपका गाना बजा है?
1: बजा है
0: हाँ, कल ही तो बजा।
1: कल बजा है मेरा गाना? नहीं बजा,
0: कल भी बजा है।
1: परसों दिन भी सुने, कल भी सुने, आज भी,
0: कल ही
1: आज भी सुन रहे थे, तो उसमें कोई गाना ही नहीं हमको मिला ही नहीं।
0: आपका कॉल मैं कल ही बना के बजा दी हूँ।
1: बजा दिए हैं?
0: हाँ
1: चलिए तो ठीक है, तो बजा दिए तो हो सकता है कि हमको ख्याल में बिसर गए हो इधर उधर।
0: जी, मैं
1: यही होगा,
0: बजाई भी हूँ और मेरे रिकॉर्ड में भी है। हाँ
1: चलिए, आपको तो बता रहे हैं, आपका बात को हमको आना ही पड़ेगा, या हमसे कोई मिस्टेक हो गया, कहीं चले गए हो दूसरी जगह, या रेडियो ऑफ हो गया हो, या जो भी हो प्रॉब्लम हो आया हो, जब मैं बच गया तो मैडम को कोई बात ही नहीं। आज भी कोई गाना सुनवा दीजिए मैडम।
0: तो बता दीजिए आज कौन सा सुनना है, आज कौन सा?
1: संडे का मौसम आ रहा है, ठंडा वाला, ठंडे का मौसम वाला कौन सा गाना रहेगा?
0: ठंडी के मौसम वाला गाना
1: ये तो आप गाना बहुत बजाती हैं।
0: कोशिश तो करते हैं कि आप अपनी पसंद के गाने को बजाओ।
1: ठंडा ठंडा का मौसम आ रहा है तो उसमें कौन गाना बजना चाहिए बताइए, हम सोच के बताते हैं।
0: हाँ बिल्कुल बताइए।
1: ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, महेंद्र कपूर का गाना है।
0: एक और है शायद गाना, मीठी मीठी सर्दी है ऐसे करके कुछ गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज का है शायद।
1: बजाइए ना वही, तो ये तो गाना तो बहुत बार सुने आपका संचार वही गाना बजाइए मैडम, आपका चॉइस का मतलब ठंडे वाला तो हो तो अच्छा रहेगा ना। अब देख रहा है कि बहुत शीत गिर रहा है सुबह में,
0: मीठी मीठी सर्दी आ रही है और ये गाना भी वही सेम।
1: हाँ बजाइए मैडम, आपकी चॉइस रहेगा तो उसी गानों को आप बजा दीजिए, हम भी उसी में खुश हैं। हम तो वो तो हमको गाना नहीं मिल रहा था तो वो हमको याद आ गया महेंद्र कपूर का, वो पुत्रा ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए।
0: आपको ये आप कल और परसों ये दोनों के भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि आज मनोरमा जी का जो कॉल बचा हुआ है वो बजेगा।
1: हाँ चलिए, आप बोल देते हमको संतोष हो गया, और बचा हुआ कॉल में वो भी सुनेंगे हम, मेरा गाना वो आया है या नहीं आया है।
0: बिल्कुल सुन लीजिएगा।
1: आज सुनेंगे, आज वो दिल छाप कर सुनेंगे कि मनोरमा जी बजाई है या ना बजाई, सबूत तो खड़ा हो जाएगा ना, तो जब भी मनोरमा जी से बात होगा तो उनको हम बोलेंगे।
0: ओके जी,
1: लेकिन आप भी ख्याल रखती हैं, हर कंज्यूमर का बात को ख्याल रखती हैं भाभी जी।
0: नहीं बजा है तो कोशिश तो करनी ही है, बजानी ही है।
1: हाँ लेकिन हम मैं देख रहे हैं ना, एक आदमी पूछ रहा था आपसे, आप हमको पहचानती हैं तो आप बताएं।

0: हाँ हाँ पहचान रहे हैं, दिल्ली में आप रहते हैं
1: जी,
0: है ना। तो हाँ, तो इससे हमको पता ये चला कि आप हर कंज्यूमर जो भी कॉल करता है उसको आप पहचानती है कि फलाने जगह का है, फलाने जगह रहता है ना। तो ये आवाज से आप पहचानती हो, इतना तो सही है ना कि आप पहचान जाती है। हम कहाँ कराने वाले हैं मैडम?
1: मुजफ्फरपुरा से।
0: अरे वाह, याद कर लिए आप। चलिए मैडम, तो अच्छी बात है, आप बताइए वो गाना।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
0: ओके, थैंक यू,
1: वेलकम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
8: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
7: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
8: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
7: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
8: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
7: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
8: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
9: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो डम छिम 94.4 FM पे शो स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो पुराने गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश हम पूरी कर सकें। ऐसा ना हो कि आप नए गाने की फरमाइश करें तो आपकी गाने की फरमाइश रोक दी जाएगी। तो यदि आप इस कार्यक्रम में स्पेशली रात्रि का समय है तो पुराने गाने के लिए कार्यक्रम चलता है, तो यदि पुराने गाने आप पसंद करते हैं, पुराने गाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल आप फरमा सकते हैं और किसी को सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं या खुद एंजॉय कर सकते हैं गाने के साथ। तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। ध्यान रखना है कि जो हम बातें बोले हैं पुराने गाने, तो पुराने गाने की फरमाइश करना है। फिलहाल कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आगे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि कैसे हैं सर, शौंग हाले दिल तुमसे मिलने को जब मैं आती हूँ। और इस मैसेज को करती हैं मनीषा फ्रॉम अमवा मौजम से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन आप खुद देख लें कि आपकी फरमाइश इस सप्ताह में पूरी हुआ है कि नहीं। आपकी गाने हम सुनाए हैं सो आज नहीं सुनाएंगे, अगले सप्ताह आपकी बारी आएगी। फिलहाल आगे मैसेज कुछ पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए उस मैसेज में दिए गए फरमाए गए गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सुनो मधुसरिया से राजू कुमार यादव जी का, कहते हैं कि शौंग सुनना है तेरे नैना मेरे नैना से मीठी मीठी बातें करते हैं, सुनाना चाहता हूँ सभी दोस्तों को। तो आपकी फरमाइश तो हम पूरी किए हैं। और नीतीश जी आप कॉल ना करें, आप कॉल के बजाय मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है, ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। डेडिकेट है आपको और ऑल लिसनर को, इसलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और इस मैसेज को करती हैं शबीना फ्रॉम दुलुलिया से, और डेडिकेट में ऑल दोस्तों को भी नाम दी है, तो नाम तो नहीं है, ऑल दोस्त हैं। आगे मैसेज कुछ पहुंचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और फिर गाने के साथ भी कार्यक्रम को एंजॉय किया जाएगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सुनो भाई नमस्कार, और सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज हाय मैं दीपराज, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, तो आप आगे भी मैसेज करें और गाने के फरमाइश करें, बिल्कुल पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मैं अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान माझा से, सोनू जी से निवेदन है कि मेरा भी गाना बजा दीजिए। बिल्कुल बजाएंगे, लेकिन आप एक ही बार मैसेज करें, आप स्थिरता बनाए रखें, आपकी फरमाइश हम बिल्कुल प्ले करेंगे। यदि आप बार बार मैसेज करेंगे तो आपकी बारी ही नहीं आ पाएगी, तो आप गाने नहीं सुन पाएंगे। आप स्थिर रहे, आपकी फरमाइश हम बिल्कुल पूरा करेंगे। फिलहाल शबीना खातून की गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि दिल से शुक्रिया सॉन्ग सुनाने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमशन सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है लिखा गया है कि हम नहीं सुने हैं, सीट खाली हो तो सुना दीजिएगा। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा, फिलहाल आगे हम बढ़ेंगे और आगे मैसेज पहुंचाए हुए गाने के साथ अजय मिश्रा जी और गाने की फरमाइश करते हैं लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा की झोंकर से। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप सभी से कहेंगे कि यदि आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 7277665996। ध्यान रखना है कि पुराने गाने के साथ या 90s के गाने के फरमाइश करेंगे तो फरमाइश आपकी पूरी की जाएगी और नए गाने के फरमाइश नहीं करना है। और भोजपुरी भी सुनना चाहते हैं तो पुराने गाने की ही फरमाइश करेंगे, फिल्मी गाने की फरमाइश करेंगे तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल यहाँ पे आगे हमारे पास कॉल पहुँच रहे हैं तो कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। कॉल के बजाय मैसेज करें, हम बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। जितेंद्र कुमार जी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए अगले गाने की फरमाइश को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रमझिम 94.4 FM पे लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा की झोंके से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
4: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे समय हो रहे हैं 9:45 और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो 90s के गाने या ओल्ड इज गोल्ड, रफ़ी जी, लता जी और इन सारे सिंगर के ज़माने के गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी भी फरमाइश हम पूरी कर पाएँ। यहाँ पे एक आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी गाना सुनाने के लिए, आपको भी धन्यवाद है। अजय कुमार मिश्रा जी आपसे कहते हैं हम हर रोज़ निवेदन पूर्वक कि आप स्थिर रहें, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे ही करेंगे और आप थोड़े व्याकुल हो जाते हैं तो इतना व्याकुल नहीं होना है। आप मैसेज कर दिए हैं तो हम एक एक करके जैसे सबकी फरमाइश पूरी करते हैं वैसे आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। मेरा कार्य है फरमाइशों को पूरा करना, बशर्ते हमारे पास समय होने चाहिए। जितना समय मिला है उतना ही में हम कुछ कर पाते हैं। यदि आप समय से पहुंचा दिए हैं मैसेज तो बिल्कुल पूरा होगी ही आपकी फरमाइश। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर जी मुझे सॉन्ग सुनना है दूल्हे का, शहरा सुहाना लगता है, धड़का

मूवी से, तो इसलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और इस मैसेज को पहुंचाए हुए हैं मंटू सिंह एडवोकेट गोपालगंज से। तो चलिए आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रमझिम 94.4 एफएम पे। एक और मैसेज है, हमारे मैसेज नहीं कॉल आ रहे हैं, तो आप लोग कॉल ना करें, कॉल के बजाय आप मैसेज करें। जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं उस नंबर पे अपना नाम, गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम, तीन चीज़ें टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर जो अभी आप कॉल किए हैं 72 77 16 65 96 पे। सेंड करेंगे जैसे वैसे आपकी फरमाइश हम पूरी कर देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं।

कमल के शौक सुनने हैं हम सब रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे भी कई मैसेज हमारे पास पहुँच रहे हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा गाना बजा कि नहीं। तो बिल्कुल अभी तक नहीं बजा है, अभी बजने वाला है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सर प्रणाम, मेरा गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अंकुश कुमार जी जुड़े हुए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि शबनम, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, मैं स्नेहा फ्रॉम गोपालगंज से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं दीपराज जी की फरमाइश, गाने की फरमाइश करते हैं। याद तेरी आती है।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, चैन पट्टी, गोपालगंज।
6: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89733।
8: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
8: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
10: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 एफएम। और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 92। जी हाँ, 9852 78 8291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जब तक हमारे प्यारे प्यारे श्रोतागण हमसे जुड़ते हैं तब तक आप सभी के लिए एक प्यारा सा गाना प्ले करूंगी और गाने की बोल है उड़ी आंखों से नींदे, और काफ़ी खूबसूरत गाना है और पुराना भी है। तो चलिए आप सबके लिए गाना प्ले करती हूँ और इंजॉय करते हैं रेडियो रंजन 90.4 FM में। और मुझे बताइएगा ज़रूर गाना आपको कैसा लगा।

अभी आप लोग सुन रहे थे मेरे साथ एक प्यारा सा सॉन्ग, गुजारिश मूवी से, और गाने की बोल थी उड़ी आंखों से नींदे उड़ी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज काफ़ी सारे पहुँच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं कि वल्ली हाय का मैसेज पहुंचा हुआ है, और इन्होंने नाम नहीं बताया है, तो जी अपना नाम ज़रूर बताएं आप कौन हैं और कहां से, ताकि मुझे पता चले आप कौन हैं। लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहां पे मैसेज पहुंचा हुआ है दिलीप राम जी की तरफ से, जिनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंच चुकी है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहां पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून भारती मैम, मनोरमा जी, सोनी मैम, और आज सप्ताह के सोमवार है, आज हमारा फरमाइश पूरा करोगे क्या, क्योंकि पहले से भेजे हुए हैं न्यायपरा विरई जिला बालोद से, बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, इसर राज, पप्पू ठाकुर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी नमस्कार, साध मास्टर ग्राम धनाव से आपके कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं भारती जी फरमाइश भेज सकता हूँ क्या, तो जी आपके गाने की फरमाइश को मैं मंगलवार को पूरा करती हूँ, और उसी दिन आपके गाने की फरमाइश को पूरा करूँगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि गुड आफ्टरनून प्रिय प्रसारक महोदय जी, आपको सादर नमस्कार, कैसी हैं आप, आज हम काफ़ी दिनों के बाद जुड़े हैं आपके प्रोग्राम में, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल है, और मैं मैम हम लोग ठीक हैं मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल ठीक है और आप सब भी ठीक हैं। यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार सलाम अलैकुम मैडम भारती, मैं मैम हमारा एक फरमाइश है जो कि पूरा कर दीजिएगा, पूरा की नहीं आप बताइएगा, फरमाइश करेंगे ज़रूर। और आलम कुवैत से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी और आपका एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है, कल आपका एक हफ्ता पूरा होगा, और आप अपने गाने की फरमाइश कल कीजिएगा, ज़रूर प्ले करूँगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचाया हुआ है सन्यासी रंजन जी के तरफ से जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार प्रणाम बा भारती जी, हमहूँ आगल बानी, हमरो हाजिरी लगा दी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं उत्तम सोनी जी की, जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, वाओ सुपर, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, लाजवाब ओपनिंग, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि लिख रहे हैं, भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे लंदन से, और मैं भी जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम गुड आफ्टरनून, ताहिर सैंडिला जिला हरदोई से, और मैम प्लीज़ मेरा मैसेज शामिल कर लेना, तो जी आपके भी मैसेज को शामिल कर लिया गया है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो कैसी हैं भारती जी, क्या हाल चाल है, तो जी मेरा तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और शायद मैसेज करने वाले सनी जी हैं, और कंफ्यूज हैं थोड़ा, आप अपना नाम ज़रूर बताइए क्या आपका नाम मैंने सही लिया है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे सॉन्ग सुनना है, और गाने की बोल पहुँची हुई है, और मैसेज करने वाले हैं राजू सोनी हरपुर से, और मेरा सॉन्ग आप कभी नहीं बजाते हैं, तो ऐसी बात नहीं, आपके भी गाने को प्ले किया जाता है, और आप काफ़ी दिनों के बाद भी बाद जुड़ रहे हैं, तो इसलिए नहीं गाना बजा था। और यहाँ पे इनके तरफ से राजू जी की तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं, गाने की बोल है जीता था जिसके लिए, दिलवाले मूवी का गाना है, प्ले कर दीजिएगा, तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, तो इन्जॉय कीजिए सभी के साथ अपने गाने को।

0: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 97665650।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या

छोटे से ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 88 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी की अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं? मैं सिद्धार्थ पासवान बरौली और आज मंडे है, आज मेरा गाना बजाती हैं, गाना सुना दीजिए। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंच चुका है जो कि राजू सोनी हरपुर से लिख रहे हैं कि थैंक यू दिल से गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं उत्तम सोनी जी की, वाव सुपर, बेहद खूबसूरत सॉन्ग और हार्ट टचिंग सॉन्ग। और इसी के साथ यहाँ सनी जी के तरफ से मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं कि राइट, और रेडियो टीम का क्या हाल है? तो जी, रेडियो टीम का भी हाल ठीक है। और आप बताइए आप कैसे हैं। और इसी के साथ यहाँ सन्यासी रंजन जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दुनिया की सारी झूठ एक तरफ और बारात हमारे निवास स्थान से ठीक 4 बजे प्रस्थान करेगी, वाला झूठ एक तरफ। और आपकी बात तो बिल्कुल सही है, जो बताया जाता है बिल्कुल वो तो होता नहीं है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैम जी नमस्कार, हम लोग भी आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा गीत। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह, रुद्रपुर, देवभूमि, उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है राघव जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं कि एहसास बहुत होगा जब छोड़ के जाएंगे, रोएंगे बहुत मगर आंसू नहीं आएंगे, जब साथ कोई ना दे तो आवाज़ हमें देना, आसमान पर होंगे तो भी लौट के आएंगे। और क्या बात है, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैम क्या सॉन्ग सुना सकते हैं, 1 साल के बाद बोल रहे हैं। तो जी बिल्कुल, आपके गाने को प्ले कर सकते हैं और बिल्कुल आपके गाने को सुनाएंगे। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाने की बोल है पैसा बोलता है, और काफ़ी बढ़िया गाना है। और मैसेज करने वाले हैं जो कि लिख रहे हैं, मैसेज करने वाले हैं ताहिर सैंडिला, जिला हरदोई से जुड़े हुए हैं। और गाने की बोल है पैसा बोलता है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा गाना काला बाजार मूवी का, और गाने की बोल थी पैसा बोलता है, और काफ़ी बढ़िया गाना था। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक्स डियर मैम गाना प्ले करने के लिए, और अच्छा लगा आज एक साल के बाद गाना सुनने को मिला, और 5 साल से सुन रहा हूँ मैम। और लिख रहे हैं आप सर, सर से पहले बात होती थी तो शायद होती होगी, और ये बात तो मुझे नहीं मालूम है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं दिनेश कुमार मिश्रा, और लिख रहे हैं कि मन करता है अब आप लोगों को भूल जाने का, उस हसीन पलों को दिल से मिटाने का, जब आप लोगों को मेरी याद आती ही नहीं तो क्या फ़ायदा तुमसे दिल लगाने का। और क्या बात है। और लिख रहे हैं कि माय डियर भारती जी कैसी हैं आप लोग, तो जी हम सब तो ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम अहमद अली सारिया वार्ड नंबर 1 से गुड आफ्टरनून सभी को बोल दीजिएगा मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी तरफ से सभी को गुड आफ्टरनून बोल दिया गया है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि लिख रहे हैं पूजा सोनी सिवान से जुड़े हुए हैं, और मुझे भी सॉन्ग सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और उससे पहले यहाँ पे हमारे पास कुछ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जिसे हम प्ले करेंगे। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार भारती जी, मैं न्यापारा विरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से लीला साहू, और मेरे बहनी खिलेश्वरी बिरगांव विमलेश्वरी कुपेडीही से गाना सुनना चाहती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि का हो उत्तम भाई का हाल चाल बा हो, सन्यासी रंजन बाबा जी को जय माता दी, और शादी में हम लोगों को भी बुलवाइएगा, हम लोग भी आना चाहते हैं, गोपालगंज जिला का जलवा देखना चाहते हैं।

से और नाचे और खुश हो जाए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मैम हमारा नाम बोल दीजिए। तो जी आपका भी मैंने नाम बोला है, और चलिए बिना देरी के आपके ही गाने को प्ले करना है। और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद, और लिख रहे हैं मेरा गाना बजा दीजिएगा। और गाने की बोल है जा ए चंदा, भोजपुरी सॉन्ग है और काफ़ी खूबसूरत गाना है। और मैं भिवाड़ी राजस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए आपके ही गाने को प्ले करते हैं, और ये खूबसूरत सा भोजपुरी सॉन्ग सुनते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 आमज़ ज़ेड पर।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:43 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो हम बता दें कि आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँच गया है और लिख रहे हैं कि यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं जय किशोर प्रसाद जी की, थैंक यू मैम, बहुत बहुत बड़ा थैंक्स और सुपर सॉन्ग। और लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग मैम, थैंक्स और गाना बजाने के लिए। और इसी

और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार भारती जी, कैसी हो आप? मैं शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से, और लिख रहे हैं कि काफ़ी मस्त चुटकुला पहुँचा हुआ है। लिख रहे हैं कि एक औरत मंदिर में बैठी रो रही थी, पुजारी क्या हुआ बेटी? औरत, बाबा कल रात मेरे पति गुजर गए। पुजारी, ओहो बहुत बुरा हुआ, उन्होंने मरते वक्त कुछ कहा क्या बेटी? औरत, हाँ कह रहे थे मेरा गला छोड़ दे डायन। पुजारी बेहोश। और काफ़ी मजेदार लाइन पहुंची हुई है शमशाद अली जी की तरफ से, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि उत्तम सोनी जी की वाओ, ऐसे ही सोच लाइए जी मैम, स्माइल के साथ अच्छा लगता है। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहा है कि उमा शंकर भैया नमस्ते, बिल्कुल वेलकम है आपका गोपालगंज में, शादी का इंतज़ार नहीं कीजिए, ऐसे ही आ जाइए। और मैसेज उमा शंकर जी के लिए था। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि दीनानाथ यादव कुवैत से जुड़े हैं और लिख रहे हैं वेरी नाइस सॉन्ग। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं देख लीजिए मैडम जी, और काफ़ी खूबसूरत दो दो बच्चे की फ़ोटो आए हुए हैं इरशाद मास्टर जी की तरफ से, और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं सच में बच्चे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं शादी में गया था, एक लड़की बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, मैंने उसके लहंगे पर सब्जी गिरा के सॉरी दीदी बोलकर भाग गया, हमसे हटेगी तो घर में बैठेगी। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ सन्यासी रंजन जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच चुका है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं पूजा सोनी सिवान से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और मुझे गाना सुनना है और गाने की बोल है जा बेटी ससुराल तू जा, और काफ़ी खूबसूरत गाना है, तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले कर देते हैं, इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा गाना, और गाने की बोल थी जा बेटी ससुराल तू जा, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना था। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं शुक्रिया दीदी दिल से गाना प्ले करने के लिए, और मैसेज करने वाले हैं पूजा सोनी सिवान से। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं धनेश जी, और प्यारा सा जोक भेजे हुए हैं, और जोक ये है कि पप्पू ट्रेन से अपने गांव जा रहा था, टीटी टिकट दिखाओ, पप्पू गरीब है साहब, चटनी बासी रोटी खाते हैं, टीटी टिकट दिखाओ, पप्पू गरीब आदमी है साग दाल रोटी खाते हैं, टीटी गुस्से में, तो हम क्या गोबर खाते, पप्पू बड़े आदमी हो साहब खाते होंगे।

0: और बड़े मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश जी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि हेलो भारती जी नमस्कार, थोड़ा देर से जुड़े हैं और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और जितेंद्र बरौली से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं राघव जी की, जब कोई ख्याल दिल से टकराता है दिल ना चाह कर भी खामोश रह जाता है, कोई सब कुछ कहकर दोस्ती जताता है और कोई कुछ ना कहकर दोस्ती निभाता है। क्या बात है, सुपर सॉन्ग। और लिख रहे हैं कि दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती, दोस्ती यूं तो कच्चा धागा है मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मैम जी हमारा घर गोरखपुर से 4 किलोमीटर डोहरिया बाजार में के पास ही है, हमने गोरखपुर से ही पढ़ाई किया है, यूनिवर्सिटी गोरखपुर से ही, और ग्रेजुएशन किया है, उत्तराखंड में भी घर है और ज़मीन है और मेरा कारोबार भी है, और शादी का लड्डू खाने के बहाने ही आ पाऊँगा। और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर जी, और मैसेज है उत्तम सोनी जी के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो गुड आफ्टरनून मैम, माई नेम मोहम्मद जोहा अंसारी और मस्कट ओमान से जुड़े हुए हैं और मेरा फेवरेट मूवी का गाना प्ले कर दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है जी, आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है अहमद अली जी की तरफ से, जो कि सारे अवार्ड नंबर 1 से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं और इनके माध्यम से वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं और जानते हैं क्या इनकी वॉइस।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद अली सारे आवाज़ नंबर 1 से, कैसे हैं मैम, मैं तो अच्छा हूँ। आज मेरे को सॉन्ग सुना दीजिएगा जी, ना लगे दिन तेरे यारा मैं क्या करूँ। सुनाना है सबसे पहले आपको और मोनार्मा मैम को, अख्तरी को, कमराम रशीद को, राघव जी को, दिलीप भाई को, फिरोज भाई को, अहमद भाई को, और जो भी जहाँ से भी रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं सभी को।
2: लेटेस्ट

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज। We'll be right back.

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सभी को एक बात बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड करके आप रेडियो रिमझिम के सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी फ़ोन के माध्यम से। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर हमारे पास फीडबैक मैसेज पहुँच गया है जो कि वॉइस के माध्यम से है, तो चलिए सुनते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम गाना बजाने के लिए, शुक्रिया।
0: और यहाँ अहमद अली जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है, और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि जी ना लगे तेरे बिना यह गाना, फरमाइश करने वाले को थैंक यू धन्यवाद। और हम जो कुवैत से जरूर आलम रहने वाले हैं, घर गोपालगंज, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, वल्ली हाय का मैसेज पहुँचा हुआ है, और जी हमें बताइए आप कौन हैं और कहाँ से, तो मुझे पता चले और आपके भी मैसेज को शामिल कर पाऊँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, सन्यासी रंजन जी की बड़े भाई की ससुराल गया था, कुर्सी को चेयर बोल दिया, बगल में खड़ी साली ने बोल दिया अब शादी तुमसे ही करूंगी वरना डीजल पी लूंगी, सुबह से बड़ा भाई हरिहर बांस लेके ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से, जो कि लिख रहे हैं कि एक बार फिर से आज आ गए, मैं लिख रहे हैं कि मैं थारे गम में बीमार पड़ी थी, जो मैं मर जाती तो पति बड़े आराम से, तो मैं पूर्ण सा शमशान की चाबी अपने साथ ले गया था, शमशान में तो 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। और मैसेज करने वाले हैं शमशाद अली जी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो हेलो
2: हेलो मैडम जी, प्रणाम।
0: जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत बार रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: नगेंद्र माझी मेहमान जी अखर पकौली बोधो ब्लॉक फुलवरिया से बोलते नहीं मैडम जी।
0: हाँ जी,
2: कैसा समाचार बा मैडम जी? राहुल
0: हमारे तो ठीक बा, रुआ बताई रुआ कैसन बानी?
2: ठीक बा, हमरो ठीक बा। गाना हम तन के सजावा तनी
0: जी, बिल्कुल बता दी।
2: तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे

0: सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खपा न होना। मैडम जी
1: जी जी बहुत ही अच्छा गाना बाबे।
0: ठीक है भाई,
1: गाना कह के सुना हूँ के बाद। हेलो, गाना क्यों के सुना हूँ के बा?
0: सुनी ना, सबसे पहले रउआ के जन्मी। जितना लोग सुना था सब लोग के हम देखी आई, पूरा परिवार के साथ हम सुनता नहीं बजाई।
1: जी जी, तेरा और गाना प्ले करते नहीं सुनते रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ठीक बा, प्रणाम
1: प्रणाम।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 1:15 हो रहा है और सो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। और आप सभी को एक बात और बता दूं कि आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और विजिट करके गोपालगंज के हाल चाल रेडियो रिमझिम की वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम गाना सुनना है और हम भी। लिख रहे हैं कि यादव लासी बंदर समरिया चौराहा टंडा अम्बेडकर नगर यूपी से जुड़े हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि मुझे भी ये गाना सुनना है, तो जी बिल्कुल आपको भी गाना सुनाया जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि

0: लिख रहे हैं कि लड़की सो गया मेरा सोना लड़का है। हाँ लड़की तो फिर जवाब कैसे किया मेरे सोने ने, लड़का मैं सोना सोने का बाप बोल रहा हूँ। बहुरानी सो जाओ अब एग्ज़ाम है कल तेरे सोने की, अगर फेल हो गया तो तेरा सोना, तो मैं तेरे सोने को इतना मारूंगा कूटूंगा कि सोना सोने के लायक नहीं बचेगा। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है शमशाद जी की तरफ से। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा है हमारे पास जो कि लिख रहा है, भारती जी गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ और मैं रोहित देहरादून से इतिहास गवाह है, लिख रहे हैं कि इतिहास गवाह है, जब भी फ़ोन पर कॉल आता है पास बैठा व्यक्ति पूछ ही लेता है कि किसका फ़ोन था। तो आपकी तो बात बिल्कुल सही है और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हमारा मैसेज भूल जाती हैं का मैडम जी, बजा दीजिए हमको कहीं जाना है 31। ओहो तो आपका गाना 1:30 बजे के पहले बजा दिया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम राधे राधे, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं पाजी UP 54 से, और इनकी तरफ से कुछ लाइन पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि हर दिल की बात बतावल छोड़ देव, दोस्ती में आपके सतावल छोड़ देव, एक बार सच सच बता दी मैडम जी की फ़ोटो भेजे की ना, भगवान के क्रिया खा के कह दानी, रेडियो रिमझिम चलावल छोड़ देव। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा पाजी UP 54 जी की तरफ से, और कि तो हम कुछ नहीं की कह सकत। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है कि भारती जी नमस्कार, सभी दोस्त को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं यादों में, रखिएगा मुझे दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बिल्कुल आप तो याद हैं ही। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते नमस्कार, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और सागिर आलम अंसारी फ्रॉम तेजपुर असम से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है और फीडबैक मैसेज भी पहुँचा हुआ है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फीडबैक मैसेज।
1: कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा नाम अंतिका सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मैम कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है, मेरा नाम अलजीत सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल।
0: और यहाँ काफ़ी खूबसूरत वॉइस में हमारे पास फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है, और इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा गीत चल रहा है, तुमसे बना मेरा जीवन। और उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्जित सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है, और मेरी बहनी इंतज़ार कर रही है भारती जी खिलेश्वरी बिरगांव से और विमलेश्वरी कुपडीही से गाना सुनना चाहती हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे। और गाने के बोल हैं, क्या करती थी साजना हमसे दूर रह के, और बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और आप सभी को बता दूं कि आप फेसबुक पर से रेडियो रिमझिम से जुड़कर वहां के पोस्टर पर लगे सारे प्रोग्राम के नंबर को नोट कर सकते हैं और सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग, और मुझे लिख रहा है कि मुझसे पंगा मत लिया करो, आज सुबह ही मैंने एक बिस्किट को चाय में डुबो कर मार दिया। ओहो क्या बात है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिखने वाले थे रोहित जी देहरादून से, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास, लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, गोविंद कुमार जलंधर पंजाब से जुड़ गया हूँ, और आज

लिख रहे हैं कि आज मेरा गाना प्ले होगा कि नहीं मैडम जी, तो बताइए। तो गाना का लिंक भेजता हूँ। तो जी आपके गाने को बुधवार को प्ले करती हूँ और बुधवार को ही होगा, तो प्लीज़ आप बुधवार को ही भेजें। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, हमारे बहन खुश हो गए गाना सुन के। लीला साहू खिलेश्वरी साहू विमलेश्वरी न्यायपारा विरई से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं उत्तम सोनी जी की, अब ये फ़ोटो किसको चाहिए। और ये फ़ोटो मांगने वाले हैं यहाँ पे जो कि पाजी यूपी चौवन से जुड़े हुए हैं और उन्हीं को चाहिए। और जिसको भी चाहिए आप हमारे डायरेक्टर सर से बात कर सकते हैं और उनसे मांग सकते हैं, शायद वो दे दें, मैं तो नहीं दे सकती। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो गुड आफ्टरनून मैम, और माय नेम मोहम्मद जौहर अंसारी और मस्कट ओमान से जुड़ा हूँ और मुझे गाना सुनना है। और मेरा फेवरेट मूवी का गाना है, मूवी है राजा और रंग, और इसका कोई भी गाना प्ले कर दीजिएगा। और इस मूवी के तो सारे गाने ही अच्छे हैं, तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करती हूँ। और गाने की बोल है तो कितनी अच्छी है और काफ़ी खूबसूरत गाना है, तो एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे राजा और रंक मूवी का काफ़ी खूबसूरत सा गाना, तो कितनी अच्छी है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती मैम, अभी जुड़नी है, मेरा भी हाजिर लगा दो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि, और धनेश जी की तरफ से यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है।

0: और उधर कुछ लोग कह रहे थे पूरी नरम दे रहे, और काफ़ी मज़ेदार लाइन जुड़ी हुई है दिनेश जी की तरफ से, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि और इसी के साथ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार।

0: एक बार और बता दीजिए गाने की बोल।
1: गोरखपुर बन छपरा मोर गणिगाजीपुर बन लखना मोर, यही गाना सुनना है।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: सबसे पहले आपको जितना रेडी रूम जी मैं सब कुछ सुनाना चाहता हूँ।
0: और ये गाना मैं आपको बता दूं कि नहीं बजा सकते क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड है, और कोई आप दूसरा गाना बोले तो मैं बजा दूं।
1: अपना पसंद से गाना महाराज जी, पवन सिंह का बजाइएगा।
0: आप नहीं बताइएगा अब?
1: नहीं इतना याद नहीं, वही गाना था याद।
0: अच्छा जी,
1: पवन सिंह का गाना कोई भी बजा दीजिएगा।
0: ओके, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार।

0: रखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782191। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से जुड़े हैं और लिख रहे हैं कि आलू नखरे दिखाए तब भी चलेगा, भिंडी एटीट्यूड दिखाए तो बनता है, लेडीज़ फिंगर है, और टमाटर एटीट्यूड दिखाए तब भी अच्छा है क्योंकि लाल है, खूबसूरत है। लेकिन इस अदरक की हालत तो देखो, 240 रुपये किलो है, ना कोई आकार है ना इसके पास खूबसूरती है, इसीलिए इसकी इतनी कुटाई होती है। और काफ़ी मीनिंगफुल लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि अगला फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
1: जी, मैंने आज पहली बार फोन लगाया, अभी रेडियो सुन रहा था तब तक लाइट चली, तब तक मैंने कॉल लगाया, मैंने कॉल लगाया देख रहा
0: हूँ। अच्छा जी, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: बल्लू शर्मा बात कर रहा हूँ, बताइए।
0: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: जी बढ़िया मैम।
0: वैसे कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना सुनना है वो आलम गवान निगम जी का है, तो वो किसी और से मिल के आ रहे हैं।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: नहीं नहीं, मैं अपनी पसंद है।
0: ओके
1: जी, धन्यवाद।
0: चलिए फिर रेडियो रिमझिम में आपके गाने को प्ले करते हैं, एंजॉय कीजिए सभी के साथ।
1: धन्यवाद,
0: वेलकम।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा गाना, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले उत्तम सोनी जी लिख रहे हैं, वाह बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, लाजवाब झकास। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास, लिख रहे हैं कि अगर रसगुल्ला देखकर मुंह में पानी आ जाता है तो फिर पानी देखकर मुंह में रसगुल्ला क्यों नहीं आता है। और ये बात तो हमें रसगुल्ले से ही पूछनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो जानते हैं हमारे मुंह में रसगुल्ला देख के पानी आता है और रसगुल्ला क्यों नहीं आता, ये उसी से पूछना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि गाना सुनना चाहते हैं और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, और लालसी बंदर शाम हरिया से जुड़े हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070605575।
8: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम में, और यहाँ हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:57 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो दी, मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से और का हलवा दी, और हम भी जुड़ गिलवानी, और लिख रहे हैं कि मेरे भैया तो आपसे गुस्सा हैं और क्योंकि आप कल गीत नहीं बजाई थी इसीलिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी, और आपके भैया से बोलिए कि नाराज ना हो क्योंकि कल तो बहुत सारे लोगों का गाना मैंने प्ले नहीं किया था और संडे था, और संडे के दिन बहुत सारे काफ़ी हमारे लिसनर एक साथ जुड़ते हैं और सबके गाने को प्ले करना होता है, तो उसमें किसी के गाने कभी कभी नहीं बज पाते हैं, और हमेशा से तो आप दोनों का गाना हमने बजाया ही है। कोई नहीं, बोल दीजिए कि आज अपने गाने की फरमाइश कर दे, मैं उनके गाने को प्ले कर दूंगी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहा है कि हेलो भारती मैम, मेरा भी नहीं मेरा मैसेज भी नहीं पढ़े और मैं भी नाराज, और लिख रहे हैं कि मैम नाराज हो क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, और आपके मैसेज को भी मैंने शामिल किया पर आपने ध्यान नहीं दिया। और एक बार फिर से चलिए आपका स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम में, और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: रामनिवास बोल रहे हैं, ग्राम सोबरन
0: जी,
1: हेलो। उस फिल्म का गाना सुनवा दो, दिलवाली फिल्म का।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। कौन सा गाना सुनना है? दिलवाले मूवी का। दिलवाले मूवी का कौन सा गाना सुनना है? अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है? हेलो,
1: हेलो,
0: गाना किसी को? हेलो,
1: हेलो,
0: गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: हाँ जी।
0: बहुत शोर हो रहा है आपकी तरफ।
1: ना ना, वो सुनवा दो गाना, कितना हसीन चेहरा।
0: अच्छा जी, तो चलिए जी जी आपके गाने को प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमझिम 90.4 एफएम।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना, कितना हसीन चेहरा, और कुमार शानू की आवाज़ में, और दिलवाले मूवी से मूवी है उससे गाना है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से कि सोना महंगा हुआ, चांदी महंगी हुई, पेट्रोल और गैस सिलेंडर भी महंगे हो गए, औरतें दिल पर पत्थर रख के फिर भी चुप रहीं, लेकिन जिस दिन गोलगप्पे महंगे हो गए उस दिन तलवार चलेगी, कोई बाबू सोना नहीं होगा। और काफ़ी बढ़िया लाइन के साथ जुड़े हैं शमशाद जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हमारे पास जो कि लिख रहे हैं वाओ सुपर सॉन्ग,

और यहाँ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि रोहित देहरादून से, पुराने जमाने में लोग बातों से ताने मारते थे और आजकल तो स्टेटस लगाकर निपटा देते हैं। और ये बात तो बिल्कुल आपकी 100% सही है। और यहाँ पे इसी के साथ जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ था जो कि लिख रहे थे मुझे गाना सुनना है, और काफ़ी पहले मैसेज पहुँचा हुआ था जो कि न्यायपारा बिरई जिला छत्तीसगढ़ बालोद से बसंत कुमार ठाकुर जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं, मैम मैं झारखंड जमशेदपुर आया हूँ और दो दिन से, और मेरे दो नतनी है प्राची और देविका ठाकुर, इन दोनों बहनों ने सुना बहनों को गाना सुनाना चाहते हैं और बंगाली सॉन्ग है। और लिख रहे हैं कि यदि आपके स्टूडियो में बंगाली सॉन्ग हो तो ज़रूर प्ले कीजिएगा। तो जी बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी कि आपके गाने को प्ले किया जाए। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि, नमस्कार भारती जी, मैं नारायण विरई जिला बालोद से प्रमोद कुमार साहू, आपने मेरे पति पत्नी को व्हाट्सएप चैट करना नहीं आता था लेकिन आपने रेडियो रिमझिम सुना, आपके रेडियो रिमझिम को सुनने के बहुत कुछ सीख गया और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं, थैंक्स मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, हेलो आरजे सोनू शुभम शुभ दोपहरिया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आरजे सोनू जी हमारे बीच, और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और भोजपुरी गाना सुनना चाहते हैं। और मैसेज करने वाले हैं दिवाकर जी और गाना सुनना चाहते हैं भोजपुरी में। और गाने की बोल है अपना राजा जी के। तो चलिए बिना देरी किए आपके लिए पवन सिंह की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में दिवाकर जी की तरफ से।

और इसी के साथ हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:11 हो गए हैं और समय होने वाला है दोपहर न्यूज़ का। तो हमारी मुलाकात आपसे होगी फिर दोपहर न्यूज़ के बाद। तब तक आप सभी इस गाने को एंजॉय करते रहें, और जिनके गाने प्ले नहीं किए गए हैं दोपहर न्यूज़ के बाद प्ले होंगे, तो एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: सकेनी
1: गोंदले के साथ तो।
2: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नु सारा मार्केट देख लेनी नु सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
3: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है हाँ
6: भरोसे वाले से लेंगे
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
9: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
10: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
11: सुनिए जी पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा
12: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
11: यहां नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन हर्निया अपेंडिक्स पित्त की थैली बवासीर भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
13: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
11: संपर्क करें 9939365923।
14: श्रोताओ आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: Indian shooters win 3 medals in men's 10-meter air rifle, taking total tally to 6 at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केन्द्र कार्यरत हैं।
4: Today we have around 1150.
5: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
4: Which will make a big change in times to come.
1: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
5: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
4: Which recognize and accept the Indian pharmacopoeia.
1: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
5: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
6: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों तेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्धनगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमासानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
7: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य में राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। भटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
8: पंजाब की नशा मुक्ति के अभियान चला रहे हैं, हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज मैं चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
1: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिन्दू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
9: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
10: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगी।
9: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
11: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
9: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
12: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थीं। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमरीका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं की 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.0। दोपहर न्यूज के

0: बात स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
1: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
4: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम।
7: सुनो दिल से।
8: किस बात से डर रहा है यार, एज डिफरेंस? हर लड़की है ना, अपने होने वाले में फादर फिगर ढूंढती है। फिगर उसके पास है, फादर तू है।

0: सुझाव शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

छोटे से ब्रेक के बाद और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527888291 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72776। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है सोनू जी की तरफ से जिन्होंने मैसेज किया है सुबह शुभ दोपहरिया हमें भी गाना सुनना है ये गलिया ये चौबारा और सुनाना चाहते हैं रामा जी प्रसाद जी और पूरे थावे बाजार सहित ऑल रेडियो दोस्तों को। तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है तो चलिए प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं गाने को।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे लोग सोनू जी की तरफ से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँच गए हैं जो कि लिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून भारती मैम, मनोरमा मैम, आज सप्ताह के सोमवार हैं, आज हमारा फरमाइश पूरा करोगे क्या, क्योंकि पहले से भेजे हुए हैं और मैसेज करने वाले हैं। बसंत कुमार ठाकुर नए पारा धीरे जिला बलोद से, और सुनवाना चाहते हैं बसंत कुमार ठाकुर, सरोज कुमार ठाकुर, राजकुमार ठाकुर, और नए पारा भी रही छत्तीसगढ़ जिला बलोद से बसंत कुमार ठाकुर। और इन्होंने मैसेज किया, मैं झारखंड जमशेदपुर आया हूँ जो 2 दिन से, और मेरा 2 नातिन है प्राची और देविका ठाकुर, इन दोनों बहनों ने सुनना चाहते हैं बंगाली सॉन्ग, यदि आपके स्टूडियो में बंगाली सॉन्ग है तो ज़रूर प्ले कीजिए, धन्यवाद। तो जी चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन गाना है, तो एंजॉय करिए अपने गाने।

0: पिताजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
1: अच्छा मिला ही नहीं।
0: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
0: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ हमारे पास

नमस्कार प्रणाम, हम धर्मेंद्र सैनी समस्तीपुर से जुड़ गया हूँ और बहुत दिन बाद जुड़ा हूँ। मुझे भी गाना सुनना है और ये गाना सुनना चाहते हैं अखिया लड़ल बा जब से, तो प्लीज़ बजा दीजिएगा। तो ज़रूर, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए प्ले करते हैं आपके गाने को और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, अखिया लड़ल बजब से दिल में करारे नहीं थे। और धर्मेंद्र जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया बा जो कि लिखत बने थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास अगला फरमाइश पहुंचा है कॉल के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
1: मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। जी जी, क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल अच्छा है, आप बताओ मैडम कैसे?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ। तो कौन सा गाना सुनना है आज?
1: गाना सुना दे, छोड़ गया मेरा आवाज से जो कर से लाल दिखा का यही गाना।
0: और ये गाना किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको जितना रेडियो रिमझिम सुनता है दोस्त साथ सब सबके साथ।
0: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं आपका गाना।
1: जी मैडम जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, एंजॉय करिए अपने।

जो कि लिख रहे हैं, हेलो दीदी, मैं सुबोध कुमार पिपरा नारायण से, का हलवा भारती दीदी हमरो हाजिर लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और ये गाना सुने के चाहत बानी जे कि गाने के बोल बा हरियारा हरियारा रह हो, तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

ब्रेक के बाद आप सभी के फिर से स्वागत। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँच चुके हैं जो

साल हमारा गाना ना बाजू भोजपुरी एक्सप्रेस में, तो आप सुना दी हमारा गाना। और गाना के बोल बा लिंक के माध्यम से बाटे, तो चली प्ले करते हैं और गाना के और इंजॉय करी। रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे बहुत ही खूबसूरत सा गाना बा।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, उड़नी प्यार करे लागल पुरवैया से, और मैसेज पहुँच चुकल बा जो कि लिखत बानी।

और यहाँ पे मैसेज लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, धन्यवाद गाना बजाने के लिए। मैं मिथिलेश चौहान, हिजरा नवादा, घर हमार, बहुत बहुत धन्यवाद बा गाना बजावे खातिर। और यही के साथ ही हमने के बढ़न सुना गए। और हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा लाइन पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, शायद फिर हमें वो तकदीर मिल जाए, शायद फिर हमें वो तकदीर मिल जाए, जीवन के वो हंसी पल फिर मिल जाए, चल फिर से बैठे क्लास की लास्ट बेंच पे, शायद फिर से वो पुराने दोस्त मिल जाए। और मैसेज करने वाले हैं ओम साई टेलर जी। तो बहुत ही खूबसूरत सा लाइन था और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, मनोरमा जी कैसी हैं? तो मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है

और एक सॉन्ग से पहले एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मनोरमा जी और भारती जी, हम भी जुड़ गए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और मैसेज करने वाले हैं। धनेश कुमार मिश्रा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे।

और मैसेज करने वाले हैं जो कि लिख रहे हैं, मैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से और मुझे गाना सुनना है काफ़ी बार नमे हमार, तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए प्ले करते हैं इनके गाने को और सुनते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है धनेश कुमार जी की तरफ से, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा लाइन लिखे हैं जो कि लिख रहे हैं, अब हम ना आपको खोना चाहते हैं, अब ना आपकी यादों में रोना चाहते हैं, बस तुम्हारा साथ मिले हमें हर पल, अब बस इतनी सी बात आपसे कहना चाहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा लाइन था, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे।

और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया मनीष कुमार जी की तरफ से, इन्होंने मैसेज किया, हेलो भारती मैम नमस्कार, हमको भी गाना सुनना है। तो जी बिल्कुल आपको भी गाना सुनाएंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं विनोद कुमार चौहान जी, हेलो मनोरमा जी क्या हाल चाल है। तो बिल्कुल बढ़िया है, आप बताइए कि आप कैसे हैं। और विनोद कुमार चौहान मुंबई से अभी गोपालगंज साकी बाजार के रहने वाले हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं,

और मैसेज करने वाली हैं जसवंत कुशवाहा हजियापुर से, हरियाणा से सॉरी। और तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, और इसी के साथ एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, हम ही पिया जी के पत्री त्रिवा, और मैसेज पहुंच गया यहाँ पे जो कि लिख रही हैं सुपर सॉन्ग, और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा जी पिपरा नारायण से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे जो कि मिथिलेश कुमार शर्मा भोजपुरिया प्रणाम बा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले करेंगे। इससे पहले एक और फरमाइश पहुंच गया है जो कि

सही से बताया करिए लो, ताकि मुझे कंफ्यूज ना हो। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको गाना को फिर से प्ले करते हैं और इन्जॉय कीजिए अपने गाने को। और गाने के बोल है काफ़ी बार लड़का तो हर एक पापा का होता है, तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं।

अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहा है, वाओ सुपर सॉन्ग मनोरमा मैम, नमस्ते, गुड इवनिंग मैम। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा सॉन्ग चल रहा था मनोरमा मैडम जी, प्रणाम। और बाय बाय के मैसेज भी पहुँचे लागल बात, और मैसेज करे वाला बानी मिथिलेश चौहान,

0: एक और मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रही है सविता देवी दिल्ली से। ये वो गाना बजा दी, ये सॉन्ग अपने देवर को डेडिकेट करना चाहती हैं, धनेश कुमार मिश्रा को। प्लीज़ मनोरमा दी, मनोरमा जी सुना दीजिए। तो बिल्कुल चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।
1: हम बबीता सागर रोव सब क्षमा करम, शोक बैठका में बैठ के रोवत और बजरंग बली में वार्तालाप।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे, जो कि चलिए जिनका गाना था उन्हें सुन लिया और थैंक यू का मैसेज भी पहुंच गया है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि मैसेज पहुंचा है, हेलो मैम मनोरमा जी, हमें भी गाना सुना दीजिए दिल के बीमारी। और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद, और मैसेज किया है कि नहीं बजेगा क्या मैम, तो आपका गाना जरूर बजेगा।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे लो गाना दिल के बीमारी हुआ, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं ओके मैम थैंक यू गाना बजाने के लिए। तो इसी के साथ हम आप लोग को बता दो कि तो श्रोताओं समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527888291, और कॉल करने के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 72776695। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से लूँगी विदा। तो सुनते रहिए ये प्यारा सा सॉन्ग, और यहाँ पे सबके तरफ से बाय बाय का मैसेज पहुँच चुका है। तो चलिए फिर भी मिलते हैं अगले दिन, तो एंजॉय करिए इस गाने को।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9067665।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: All right.

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह।

0: अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
4: रेडियो रिमझिम।
3: सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH

0: 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9451211001।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम।
5: सुनो दिल।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते,
2: कैसे हैं मैडम जी?
1: मैं ठीक हूँ।
2: तबीयत ठीक है?
1: हाँ, तबीयत ठीक है। आप बताइए, आप कैसी हैं?
2: मैं ठीक है।
1: तो क्या कर रही हैं अभी?
2: फोन लगाया है आपके पास।
1: अच्छा
2: जी जी, बताते अभी लगा।
1: तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
2: गाना सुना भी, दिल लगा लिया तुमसे प्यार कर।
1: और गाना किसी को सुनाएंगे भी?
2: आपको जितना रेडियो
1: तो गाना प्ले करते हैं।
2: नेहा बोल रहे हैं भोरे से।
1: नेहा जी?
2: जी जी।
1: अरे बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई।
2: हाँ, तो फोन नहीं लगता है, यहाँ कभी लगता है तो मनोरमा जी रिकॉर्डिंग करती है।
1: अच्छा जी, नेहा जी तो ठीक है ना?
2: जी मैडम जी ठीक है।
1: और उसमें तो आप शायद कॉल करती थी ना, योर वॉइस वाले में?
2: हाँ करती हूँ।
1: अभी करती है कि नहीं?
2: अभी नहीं करती है, 10 दिन से फोन नहीं करती है, रेडियो बिगड़ गया है ना।
1: वही तो बोल रहे हैं, बहुत दिनों से नहीं मेरे से बात हुआ है। चलिए फिर ठीक है, गाना आपका प्ले करते हैं।
2: जी मैडम जी, नमस्ते।
1: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या हाल है
0: जी? मेरा तो कुछ, आप बताइए आपका क्या हाल है?
1: मेरा भी बढ़िया है। नाश्ता पानी हो गया?
0: जी मेरा हो गया है।
1: रामानंद तारीफ खेड़िया से बोल रहे हैं। तो 44
0: बता दीजिए कौन
1: 44 गाने का बोल ये अरे मोमिनो सुनो ये करामत नमाज थी।
0: कौन सा?
1: अरे मोमिनो सुनो ये करामत नमाज थी,
0: ये
1: जन्नत जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज
0: बोल रहे हैं। ये पूरी फिल्म का गाना है?
1: फिल्म का नहीं, कव्वाली है।
0: अच्छा, तो अगर फिल्म का कोई बताते तो मैं बजा देती।
1: तो फिल्म का गाना अगर बजाना है तो फिर कुल्ली फिल्म का गाना बजा दीजिए।
0: उसमें कव्वाली है?
1: कव्वाली तो है
0: उस मूवी में।
1: हाँ, उस मूवी में कव्वाली है जो लास्ट में गाना है ना, बजने वालों से मेरा सलाम कहना।
0: अच्छा,
1: ये गाना बजा दीजिए।
0: और गाना किसी को सुनाएंगे भी?
1: और हम आप जितने रेडियो रंजन सुनने वाले श्रोता है सब सुनवाएंगे।
0: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं। रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी नमस्कार मैडम जी।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मिशन 90.4 FM में।
5: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला, गुना, मध्य प्रदेश से।
6: जी कैसे हैं आप?
5: बढ़िया है, बारिश हो रही है हमारे इधर, आपके इधर हो रही है क्या?
6: नहीं, मेरे यहाँ तो अभी नहीं हो रहा है।
5: हमारे यहाँ तो गिर रहा है, सुबह से ही गिर रहा है और अभी भी गिर रहा है।
6: अच्छा जी, आपके यहाँ बहुत बारिश होता है ना?
5: जी जी जी,
6: जब भी फोन करते हैं तो बताते हैं आप हमेशा कि हाँ यहाँ बारिश हो रहा है।
5: बारिश हो गया है और जो हमारे कुएं हैं वो फुल हो चुके हैं, उनमें से पानी ऊपर से निकल रहा है।
6: अच्छा
5: जी, हमारे इधर ज्यादा कुएं होते हैं, आपके उधर क्या है, ट्यूबवेल है कि तालाब है?
6: हमारे यहाँ तो तालाब है, नदी है, यही है।
5: हमारे इधर नदी नहीं है, ये पार्वती मैया है वो कभी भराती नहीं है, और कुएं हैं, कुएं तो खुले हैं ऊपर तक, और नल में पानी चल रहा है ऑटोमेटिक, इतना पानी का जलस्तर बढ़ गया है।
6: अच्छा जी
5: जी, जो हैंडपंप होते हैं उनमें से पानी ऑटोमेटिक निकल रहा है,
6: नहीं बढ़ गया है।
5: जी जी, तो एक डैम है, डैम भी खुल हो गया है हमारे इधर का।
6: चलिए तो ठीक ही है
5: जी,
6: बाढ़ वगैरह का समस्या तो नहीं है ना?
5: नहीं नहीं, हमारे इधर बाढ़ नहीं आएगा, हमारा आखिरी एंड ही होगा, जब ही हम एंड होंगे, बाकी हम बीच सेंटर में हैं।
6: अच्छा जी
5: जी, किधर से भी आएगी मौत तो हम बीचों में, बीचों में बीच है।
6: अच्छा
5: जी, उधर उधर जैसे नेपाल में होगा, बेचारे नेपाल में बहुत सारे लोग जान गंवा दी उन्होंने, लेकिन इधर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, और इधर हमारे इधर तालाब भी नहीं है, डैम भी नहीं है, एक पार्वती है वो भी कभी भराती नहीं है, वो तो ऊंचाई में है वो भी, तो हमें जान का खतरा नहीं है, जो तो प्राकृतिक रूप से कभी आपदा आएगी जब भी है, बाकी पानी से हमें कोई दिक्कत नहीं है।
6: चलिए तब तो बढ़िया है
5: जी।
6: तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा आप?
5: जी, पिक्चर का नाम है सिर्फ तुम,
6: और गाने की बोल?
5: और गाने के बोल है पहली पहली बार मोहब्बत, ये कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं।
6: ओके, और गाना किसी को सुनवाएंगे?
5: जी, ये गाना डेडिकेट रहेगा भारती मैम को, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, और गोपाल ओझा जी, जितेंद्र धाकड़ जी है, और गजराज सिंह लोधी है।
6: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए। तुम
5: कब आएगा? आज ही आ जाएगा ना?
6: नहीं, आज तो नहीं आएगा
5: जी,
6: कल आएगा, नहीं तो परसों आएगा।
5: ठीक है,
6: ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
1: इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजरा बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, कैसी हैं?
1: अच्छी हैं, अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है
1: जी।
0: तो क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो बहुत पहले से कॉल लगा रहे हैं, कॉल ही नहीं लग रहा था। आज बहुत बार ट्राई की है।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसके पिछले बार लगाए थे इसी दिन को, तो 3 बार में ही लग गया। कम से कम 100 बार लगाए हैं, तब जाके लगा है।
0: हाँ,
1: सब ठीक है ना?
0: हाँ, और सब ठीक है।
1: ठीक है, तो आज भजूरी सॉन्ग सुनवा दीजिएगा।
0: गाने की बोल बता दीजिए।
1: छाने छाने बदले तारों में जाए रजाऊ, सिल्की राग आवाज में है ना। और सुनवाना चाहती हूँ आपको, अपने हस्बैंड जी को और कुछ रेडियो दोस्त हैं, हिना जी है, सफार जी है, सलेहा जी है, शाहजहा जी है, ब्यूटी परवीन है, और रुबीना नाथ, इरफान जी, कमरान जी, गुलाम हुसैन, वीरेंद्र गुदा, साहिल राजा और बाकी जितने लोग जाने पहचानने वाले इन सभी।
0: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4
12: प्रणाम।
11: हम तो ठीक, बने रहो, बताए रहो की सुनवाई।
12: ठीक है,
11: पहले ही नाम लेके बोलने हैं कि कंफ्यूज ना हो क्या।
12: कंफ्यूज कल डबलिंग के चलते कंफ्यूज हो गए थोड़ा है।
11: अच्छा।
12: पूरा दिन भर ये सोचा नहीं कैसे कंफ्यूज हो गए, नहीं ये सोचे वाली बात।
11: अब गाना कैसे लगुए?
12: गाना तो एकदम मस्त लगुए, गाना में तो कोनो कमी ना रहे। हम तो ये सोचे कि हमार चॉइस और फरमाइश राहुल कैसे एक हो गए समझ में ना आए।
11: ना ना राहुल जन गाना बानो कोनो कोनो बहुत अच्छा लगेला।
12: पता ना ऊपर के मने कहत नहीं अच्छा लगेला
11: कि अच्छा लगेला तभी बजाऊं मैं ऐसा
12: कल परसों छुट्टी में रहनी
11: काल
12: बनी की ना
11: आज बानी एकदम
12: चल फिर आज फरमाइश
11: बता दी।
12: आज रही खुशबू सिंह की आवाज में
11: और गाने के बोल
12: गाना के बोल रही तो सुधा से निक नहीं हरवे के पानी
11: तो गुण में एकदम अलग अलग होला।
12: अच्छा हमारे देखिए हम हमारे फरमाइश से कुछ अलग होला। हम फरमाइश हम तो ऐसा ऐसा फरमाइश से दे देगी जब मिली ना रोड से चली आशा ना पूरा विश्वास बा हमारे गाना पर याद है।
11: और गाना के होगी सुनाऊंगे
12: बस रोड लोग सुना एक बार जितना हमारे नाम से जाने वाला लोग है सबके। हमारा नाम धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से
11: रेडियो रूम से मैं कॉल के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
12: तो घर ही

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में। हेलो,
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।
1: क्या
0: मेरा ठीक है, आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: मेरी बढ़िया है। उस समय तो कॉल लगा रहे हैं, कॉल मेरे रिसीव नहीं कर रहे हैं आप।
0: अच्छा, अभी तो कॉल कटा, जस्ट तो आपका आया।
1: नहीं, खाली बिजी बिजी बता रहा था।
0: थोड़ा आज ज्यादा ही कॉल आ रहा है।
1: और मनोरमा दीदी कैसे हैं?
0: मनोरमा दीदी भी ठीक है,
1: तो उसका हाल बता दीजिए, कैसा है?
0: वो भी बहुत अच्छे हैं।
1: मौसम कैसा है गोपालगंज का? गरम गरम बनाती है खाना?
0: गरम गरम खाना ही चाहिए।
1: और सब बताइए। तो
0: और सब तो हम सबका ठीक है। साढ़े
1: का तो टाइम हो गया, कब चलेगा? जल्दी
0: 12 से तो बता दीजिए, जल्दी जल्दी कौन सा गाना सुनिएगा।
1: जल्दी बजा दीजिए ये सॉन्ग, बजा दीजिए। सिलफिला की आवाज में है भोजपुरी सॉन्ग, मारदा तो के होता की तो गर्दा उड़ा दूं, यही सॉन्ग बजा दीजिए।
0: और गाना सुनाइएगा।
1: डेडिकेट है सबसे पहले आपको, मनोरमा दीदी को, सोनू दीदी को, दिव्या दीदी को, और पूरा रेडियो रंजन को, और स्पेशल में कृष्ण दीदी को।
0: सुनाते हैं आपका।
1: कब बजेगा दीदी? शाम को भी कल?
0: मेरा आज नहीं बजेगा, आज मनोरमा जी का बजेगा जो छूटा हुआ है, और मेरा कल बजेगा और परसों बजेगा।
1: अच्छा, चलिए ठीक है। नमस्ते
0: आपका गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: दीदी।
0: नमस्ते।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
12: Now pick it up,
13: hello.
12: Now pick your phone up,
13: hello.
12: Pick it up,
13: hello.
12: Now pick your phone up,
13: hello.
14: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 FM में।
17: नमस्ते दीदी।
16: नमस्ते,
17: क्या हाल है?
16: मेरा सब ठीक है, सुनने में आया है आपका तबीयत खराब है।
17: हाँ, बुखार लगल बाटे।
16: अच्छा, कहे बुखार लग जाता रहुआ?
17: पता ना, ऐसा भी नहीं पता कि बुखार लग गई।
16: मौसम चेंज होता है, थोड़ा ख्याल रखो करी। रुआ तो अभी बनाओ तो नहीं गरम गरम।
17: हाँ बना दो नहीं गरम गरम। रुआ से क्या कर लगता है?
16: के बता सकता रहुआ, बताई ना।
17: भाइये बतेला है ना। मनोरमा दीदी कहाँ वानी?
16: कहीं के नहीं वानी।
17: और सब ठीक बन?
16: बता दी आज रुआ कौन सा गाना सुने?
17: गाना बजा दी दोनों की भोजपुरी।
16: कौनो भी आजकल कौनो भी सुन लेता नहीं, पसंद नहीं की बताओ।
17: दोनों तो गीते हो सुना दी कौनो अपना पसंद से।
16: ना ये पारी रुआ बताई अपना पसंद से।
17: मैं तो याद नहीं के रहू, अपना पसंद से बजा दी कल इतना सुंदर गीत बजाई ले रहा है।
16: अच्छा, तो बता दी कौना हीरो के सुने?
17: बजा दी पवन सिंह। टिकेट रही सबसे पहले रघुआ के, मनोरमा दीदी के, जितना सुनते हैं लोग वहाँ लोग के, और सोने दीदी के, और हमने के सुने।
16: चल ठीक बात, गाना प्ले करता नहीं, सुनत रही रेडियो 91.4 FM।
17: थैंक यू,
16: वेलकम।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी क्या हाल चाल है आपका?
0: है आप रेडियो रिमझिम का पूर्ण परिवार कह रहे हैं?
1: रेडियो रिमझिम के सभी टीम बहुत ही अच्छे हैं।
0: चलिए बढ़िया जाना चाहिए। और बताइए मौसम क्या है, बारिश होता है कि नहीं आ रहा?
1: अभी तो फिलहाल बारिश नहीं हो रहा है।
0: चलिए रात में तो हमारे यहाँ तो बारिश हुआ है। अभी तो अभी ठीक है, अभी मौसम ठीक है, अभी तो निकला है।
1: और कौन?
0: आज जी जी
1: जी ठीक है। गाना बता दीजिए, आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: आज गाना सुना दीजिए, ये गलिया दोबारा चाहे आना ना दोबारा। तो हम पढ़ लेती कि तेरे यहाँ कोई ना ऐसी करके गाना है, ये सुना दीजिए।
1: सुनवाना भी है
0: सबसे तो पहले आपको रेडियो परिवार को और दोस्त में हो गया खाना से मामा साहब जी को मजे से उत्तम कुमार जी राम सुहा जी की बगान से अर्जुन कुमार कला भाई कोरधाम से नरेश सोहनी दीपक दास उदय बहन ठाकरे द्वारा मध्य प्रदेश से जुमना शाह धर्मैया और दीपक दास हमारे नाम से दीपक दास उदय बहन ठाकरे हमारे नाम से जन पहचाने तमाम दोस्तों विशेष तौर सुना दीजिए। रामचंद्र कुमार मुखिया शंकर प्रसाद शंभू पारा कुशवाहा पारा शर्मा राजेंद्र यादव भारती सुनाते हुए मोहम्मद सलाह अंसारी मझवलिया का विशेष उनको सुनाते हुए अभी विदा लेंगे। नमस्कार
1: जी। नमस्कार, रेडियो रंजन में कॉल किए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो।
8: नमस्ते मैडम,
7: 90.4 FM जी। नमस्ते।
8: अब उसी समय से मेहनत करते करते अभी लगा है।
7: अच्छा जी, बहुत ज्यादा देर से मेहनत कर रही हैं।
8: हाँ, वही वजह से कॉल करते हैं। तो अब टाइम तो खत्म ही हो चुका है, थोड़ा भी बाकी है।
7: हाँ हाँ, बस एक मिनट।
8: हाँ, हमको गाना सुनना है।
7: बताइए।
8: ये थे कृष्ण भगवान के शोहर सुनना है हम लोग का।
7: मूवी का कोई शोहर हो तो बता दीजिए, और एल्बम होगा तो नहीं बजा।

0: गाना सुनना है।
1: ओके जी, तो गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
0: अभी घर के लोग और आपकी सुनवाना है
1: जी। और से आपका नाम?
0: मेरा नाम है सुमन कुमारी। मेरा एक अमन है भतीजा, और मेरे भाभी और मेरे बहन है, और मेरे एक भतीजी है, उसी को सुनाना है।
1: चलिए आपका गाना प्ले करेंगे। दे रही है
0: आज बजाएंगे ना मैडम?
1: आज नहीं बजेगा, आज किसी और का प्रोग्राम चलेगा। मेरा कल चलेगा और परसों चलेगा।
0: अच्छा, बिहान चलेगा? चलिए ठीक है।

0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 924 एफएम में।
0: के लिए दिल से धन्यवाद है। आपकी तो आप सुनाइए कैसे हैं?
1: जी हम तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं कुशवाहा बोल रहा हूँ, दुर्गापुर भी चंपारण से।
1: जी जी।
0: और मौसम कैसा है उधर?
1: इधर तो मौसम अभी ठीक है।
0: जी जी, हमारे यहाँ तो बहुत अधिक धूप निकला हुआ है, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है।
1: धूप तो हल्का है इधर, ज्यादा नहीं।
0: जी लेकिन इधर बहुत अधिक है, ऐसा लग रहा है कि जून का माह चल रहा है। सब घर परिवार में अच्छा है?
1: जी जी सब घर परिवार में सही है।
0: जी जी अच्छा रही है।
1: तो
0: गाना सुना दीजिए। फिल्म का नाम है दूध का स्वर्ग।
1: ओके।
0: और गाने का बोल है कि मैं दिल से कैसे जुदा हम करेंगे।
1: और गाना किसी को सुनवाएंगे?
0: जी सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ। और दो सुनोगे संजय शाहजी, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मुखिया जी, अंचल कुमार जी, कंसराज यादव जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू, विकास अभय कुमार, सुधीर कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, आदर्श कुमार, बबुल प्रसाद कुशवाहा जी, रविंद्र प्रसाद कुशवाहा जी और अभी भारती जी की प्रस्तुति का कार्यक्रम सुन रहे हैं। सब श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल, तो चलिए आप सुनते रहिए।
0: जी धन्यवाद।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
10: कैसे मिलता
9: है? मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
10: हमारे भी ठीक है, खाना खा लिए?
9: हम तो खाना खा लिए हैं, आप बताइए।
10: हम भी खा लिए। अरे सब बताइए।
9: और सब तो ठीक है, बस सब कोई अपने अपने काम में लगे हैं।
10: हाँ, जुमा है।
9: तो कौन सा गाना सुनना है आज?
10: गाना अपना पसंद से सुना चाहिए।
9: अपने से कोई भी?
10: हिंदी
9: गाना आज आप नहीं बताइएगा,
10: अपना पसंद से सुना दीजिए।
9: ओके, और गाना किसी को डेडिकेट भी करेंगे?
10: मेरा भाई बता रहा है,
9: तो बता दीजिए।
11: दिल जले का गाना।
9: और दिल जले का कौन सा गाना?
11: शाम है दूंगा।
9: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
11: आपको और बहन हेलो सभी को।
9: जी जी, तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं।
11: ठीक है।
9: वैसे आपका नाम?
11: अरमान आलम।
9: जी, तो
11: कब तक सुनाइएगा मैम?
9: ये आपको कल आएगा या फिर परसों आएगा?
11: ठीक।
9: ओके, रेडियो रूम से मैं कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
11: थैंक यू।

आरजू झूठ है, कहानी है आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी। और बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM
1: नमस्ते मैम,
0: में।
1: कैसी हैं मैम?
0: नमस्ते, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं।
1: मैं भी ठीक हूँ मैम। आपको पहचान रही है? हेलो
0: हेलो, हाँ
1: बोल रहे हैं, आप पहचान रही हैं?
0: थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे याद था, भूल गए हैं।
1: बता दें,
0: हाँ बिल्कुल बताइए। अच्छा
1: मनीषा कुमारी प्रिया सुंदर से।
0: जी हाँ, क्या हो रहा है मनीषा जी?
1: अभी तो रेडियो सुन रही थी और अपना गाना सुन ली, बहुत अच्छा लगा मेरा गाना बजा।
0: चलिए बढ़िया, आपको अपना गाना सुनने को मिला, और क्या चाहिए।
1: शांति है ना, ही बजता है तो अच्छा नहीं लगता है, जब बज जाता है तो इतना अच्छा लगता है।
0: तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनेगा,
1: सुनवा दीजिए मधुर मेरे दिल की बोझा।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है।
1: मैम गाना मालूम चल गया ना
0: हाँ, चुप हो जा हुआ से हुआ।
1: जी मैम?
0: हाँ, आगे की लाइन मैंने बताया आपको,
1: क्या?
0: आप थोड़ा पीछे का बताइए और हम उसके आगे का बता दीजिए।
1: हाँ चलिए ठीक है, आप बता दीजिए हम। हाँ
0: हाँ, तो गाना कंप्लीट हो जाएगा।
1: एक लाइन में आधा आधा गा दे रहे हैं। चलिए तभी है, खाना खा लिया ना? चलिए
0: हम खा के आते हैं।
1: तभी है,
0: ओके, तो
1: आप
0: गाना
1: सुनवा दीजिए।
0: जी बिल्कुल सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: मैम अपने घर में सब कोई को सुनवाना चाहती हूँ,
0: बिल्कुल
1: और रेडियो सुनने वाले कभी दो को और कभी यार जी को।
0: ओके जी।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे वाह इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाक

0: 2994-9911। जी हाँ, 8009-94-9911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94 FM में।
1: नमस्ते मैम।
2: जी नमस्ते,
1: हम थारू से बोल रहे हैं, रामाजी प्रसाद।
2: हाँ जी, क्या हाल चाल बा?
1: हाल चाल ठीक बा। विनोद भाई चालू है भाई?
2: हाँ,
1: और भाई चालू रहे भाई?
2: ना अब जाते नहीं चालू करे।
1: अच्छा, रेगुलर कॉलिंग दोनों में।
2: हाँ हाँ,
1: गाना सुना दे।
2: बता दी कौन सा गाना?
1: हम तुमसे मिलने आए मंदिर जाने के बहाने।
2: अच्छा, और गाना क्यों के सुनवाओगे
1: बात? जितना रेडियो सुनता सब कुछ सुनी। रवा भाला मन सुने?
2: ना ना, हम तो बिल्कुल सुने नहीं, हम तो पहले तो हम ही सुने। ठीक बात, अब गाना और प्ले करते नहीं, सुनत रहे रेडियो 94.4।
1: अब जाते आखिरी कॉल हमरे हो।
2: हाँ
1: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टू मिशन 90.4 FM में।
1: जी
0: हाँ जी
1: मैं कृष्णा जी
0: जी जी क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: जी हम भी ठीक हैं।
1: चलिए काम है। आज हमारा गाना सुनने के बाद भौरव शर्मा के बहुत पुराने गाना है, ये यवा गई ले परदेश सखी ओकर ससुरा से निक नहीं हटेगा। हेलो
0: जी, और गाना क्यों के सुना हूँ के बाद?
1: आज इतना लोग सुना था, सब कोई सुनी वो सुने, हमारे मैडम बड़ी यही जाए वो सुने। हेलो
0: तो चलिए और गाना प्ले करते नहीं सुने।

जे हमरा घरे ले जाकर मलकिनी के दे दी है। लेकिन जब वो सामान घरे पहुँचेला मलकिनी के हाथ में तो खुश ना होके बल्कि बहुत दुखी होली। उनका ये बुझा जाला कि वो अभी आई है ना, यही से सामान भेजले बड़े।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक तकनीक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: प्रसाद क्लिनिक
10: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
9: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
11: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
13: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello, hello.
14: Break ke baad.
11: बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 90.4 एफएम में।
15: आपको भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। गाना सुनना है मैम।
14: सुनाऊंगी, नाम भी बता दीजिए।
15: मेरा नाम यासुद्दीन अहमद है, चौराहे से बोल रहे हैं यासुद्दीन अहमद।
14: ओके ओके, और क्या हाल चाल है आपका?
15: अल्हम्दुलिल्लाह सब दुआ है, अपना बता दीजिए।
14: हम सब भी ठीक है
15: जी। खैनी का दुकान है हमारा, खैनी चलता है चौराहे।
14: अच्छा जी
15: जी,
14: सब तो बढ़िया है
15: जी।
14: कौन सा गाना है आपको?
15: गाना सुनवा दीजिए सनंदे वफाते, अल्लाह है करम करना, लिल्लाह है करम करना, परवरदिगार आलम तेरे रहम करना।
14: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
15: जी, और जितना रेडियो रंजन में सुनने वाले लोग हैं सभी लोगों को सुनवाना चाहते हैं, और आप लोग को भी।
14: ठीक है, आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
15: के बाद कॉल किया है मैम
14: जी,
15: बहुत दिन के बाद आज आपसे बात हो रहा है, पहली बार बात कर रहा है, थोड़ा सुनवा दीजिए।
14: जी जी बिल्कुल सुनवाएंगे, मेरा ये वाला कॉल आपको कल बजेगा और परसों बजेगा।
15: तो ठीक है, थोड़ा लास्ट में बजाइए जब कॉल हम सुन सके। ठीक है
14: ओके
15: जी, ठीक है, चलिए नमस्ते
14: नमस्ते।

0: जी मैम नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
0: जी मैम धन्यवाद। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं RMC से।
1: जी क्या हो रहा है?
0: बस कुछ नहीं मैम, बस हम ट्राई कर रहे थे, बहुत फोन भी लग गए मैम। और मैम वहाँ का मौसम कैसे हाल चाल है?
1: उधर का मौसम तो अभी थोड़ा बढ़िया है।
0: अभी बारिश वारिश नहीं हुआ मैम? हमारे यहाँ तो बारिश चालू मैम शाम।
1: नहीं अभी तो बारिश नहीं हुआ है, रात को हल्का मतलब थोड़ा बहुत बूंदे गिर रही थी।
0: जी जी जी जी तो आज फरमाइश है फिल्म मुस्कान और गाने से बोला जाने मन से सबसे और सुनवाएंगे कितने रेडियो और इंजिन जो लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
0: धन्यवाद मैम,
1: वेलकम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

हमेशा की तरह विक्रम ने बैताल को वृक्ष से उतारा, अपने वश में किया और कंधे पर लादकर चल पड़ा। और हमेशा की तरह बैताल ने विक्रम को एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी थी चंदमपुर गांव की। चंदमपुर में एक गरीब बुढ़िया रहती थी, जिसका इकलौता जवान बेटा था दगड़ू। न काम का, न काज का, न मन अनाज का। बुढ़िया बेचारी लोगों के ब्याह शादी के जोड़े पर गोटा किनारी लगा लगा कर अपना और अपने लाडले का पेट पालती थी। और लाडला दगड़ू, वो तो भाई जब देखो लेटकर सपने देख रहा होता।

0: लिया, लूट लिया।
1: अरे किसने लूट लिया, किसको लूट लिया?
0: एक दूल्हा दुल्हन को डाकुओं ने लूट लिया।
1: हाय राम, फूट गई मेरी किस्मत जब तुझ जैसा निकम्मा बेटा मेरे घर पैदा हुआ। जब देखो तब माँ धार लूट फाट की बातें सोचता रहता है। अरे कलमू है, कभी तो किसी के बारे में भला सोच लिया कर।
0: अम्मा मैं तो सबका भला ही सोचता हूँ, लेकिन क्या करूँ, भगवान ने लोगों को बुद्धि कम दी है तो इसमें मेरा क्या दोष है। मैं तो जब भी सच बोलता हूँ लोगों को बुरा लग जाता है।
2: दगड़ू की अम्मा, हमारा जोड़ा तैयार है।
3: आओ आओ चौधाई, बस थोड़ी सी किनारी लगानी बाकी है, आप बैठो मैं अभी लगाई देती हूँ।
4: अच्छा। चाची ये जोड़ा किसके लिए बनवा रही हो?
2: अपनी बहू के लिए। आज मेरा बेटा अपनी बहू को अपने ससुराल से ला रहा है, ये जोड़ा मैं अपनी बहू को भेज दूंगी।
0: चाची तेरा बेटा घोड़े पे सवार होके आ रहा है?
1: हाँ।
0: और रास्ते में जंगल पड़ता है?
2: सो तो पड़ता है।
0: तो चाची इस जोड़े को भूल जा और जल्दी से किसी बैद को बुला के ला मलम पट्टी करने के लिए।
1: क्यों?
0: क्योंकि जंगल में तेरे बहू और बेटे को डाकू लूट लेंगे, उनके गहने जेवर कपड़े सब ले जाएंगे और उनकी इतनी मरम्मत करेंगे, इतनी मरम्मत करेंगे कि उनकी हड्डी पसली एक हो जाएगी।
1: काली जुबान वाले, अगर मेरे बेटे बहू को कुछ हुआ तो मैं भरे बाजार में तुझे जूते मार मार कर तेरा सर गंजा कर दूंगी।
5: नहीं नहीं ठकुराई, ये तो भी बच्चा है।
1: छी, कैसी गंदी जुबान दी है भगवान ने, कभी किसी का भला नहीं सोचता, जब देखो सबकी बर्बादी की भविष्यवाणी करता रहता है। हाँ, चोरा तैयार करके भेज देना, समझी?
0: देखा अम्मा, सच कितना कड़वा लगता है। अभी तो मुझे गालियां दे रही ना, थोड़ी देर बाद होती पीटती आएगी कि दगड़ू तू सच कहता था, हम लुट के बर्बाद हो गए।
1: चुप कर दगड़ू,
5: तू कभी मुझे चैन की सांस नहीं लेने देगा, एक से एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा मेरे लिए। इससे तो अच्छा था कि तू पैदा ही ना हुआ होता, पैदा ही ना हुआ होता।
0: अम्मा, अम्मा।

0: जुबान वाले, मैं तेरा भी वैसा ही हाल करूंगी जैसा मेरे बेटे बहू का किया था। ये जरूर किसी चोर डाकू से मिला हुआ है, वरना उसे कैसे पता था कि मेरे बेटे बहू को डाकू लूट लेंगे। मारो मारो इसको। ऐसी मरम्मत करूंगी कि तुझे तो क्या, तेरे सारे खानदान को कोई सपना नहीं आएगा। मारो, मारो, मारो, मारो,
1: मारो, मारो। अति सुंदर घर बनाया, बधाई हो आपको।
2: दया है आप जैसे महान भावों की।
3: वो तो ठीक है भाई, जो जरा लड्डू तो खिलाओ।
4: अवश्य अवश्य, लो भी लो, तुम भी लो, मैं तो सारे गांव में लड्डू बांटूंगी। चलो भाई।

0: ठीक है, चल गया, चल गया, जल गया, जल गया।
1: अब किसको जला रहा है तू? किसको जला कर राख कर देगा?
0: किसी का घर जल जाएगा अम्मा। चाची ने मेरे सर पे इतने जूते मारे थे और कहा था कि मैं जीवन में कभी सपना नहीं देखूंगा, लेकिन मैंने सपना देखा।
1: बेटे।
0: अरे मौसी आओ आओ, ये क्या है लड्डू? ये कैसे लड्डू?
2: हमने नया घर बनाया है, आज गृह प्रवेश है, लो मुंह मीठा करो।
0: वो जो घर चल रहा था उसमें मुझे चौधरी की शक्ल दिखाई दी थी, हो ना हो वो चौधरी का ही घर है। मौसी तुमने अपने घर में नए पर्दे लगाए हैं?
2: हाँ।
0: और वहां पर एक दिया है?
2: हाँ है।
0: पहले लड्डू ले लूं, बाद में तो जूते ही पड़ने। मौसी तू बधाइयां मत ले, थोड़ी देर में तेरा घर जल जाएगा।
1: दगड़ो।
0: अम्मा दगड़ू दगड़ू करने से कोई फायदा नहीं, मौसी तेरा सब कुछ जल के सवा हो जाएगा।
1: आग लगी तेरी जुबान को? अरे तेरी शक्ल गंदी है तो बात तो अच्छी कर लिया कर।
0: मौसी मेरा सपना कभी छूटा नहीं होता। हाँ
3: चल चौधरी चल, मैं पहले कहती थी इनके घर में आना गुनाह है, इनको लड्डू मत दे। चल
0: अरे मत दो, तो हमें लड्डू ना देने से तुम्हारा घर जलने से बच नहीं जाएगा। हाँ अम्मा मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता ना, नहीं होता।
1: दगड़ू
0: अम्मा।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री कमल श्री कमल श्री बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: मत रो अम्मा, सच बोलने पर तो दुनिया वालों ने बड़े बड़े महापुरुषों का जलूस निकाल दिया, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। लेकिन अम्मा ऐसा क्यों होता, मैंने तो सच बोला है, मुझे तो इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मिला क्या, गंदे अंडे टमाटर।
1: तूने जब भी भविष्यवाणी की है, दूसरों की तबाही के बारे में ही भविष्यवाणी की है, और ऐसा सच भी किस काम का जो दूसरों को दुख दे, तकलीफ दे, और फिर मेरे कहने का ढंग भी तो गलत है। दूसरों की तबाही पर तू हंसता है, कहने का भी एक ढंग होता है, लेकिन तुम तो सीधा ही।
0: ठीक है अम्मा, ठीक है, अब मैं ऐसे ही कहूंगा। अम्मा बहुत दर्द हो रही, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, मेरी खटिया का है। तो मेरी खटिया खड़ी कर दी, अब मैं सपने कहाँ देखूंगा।
1: सपने अब घनघोर जंगल में जाकर लेना, क्योंकि गांव वालों ने तुम्हें

बेचारा दगड़ू बड़ा हैरान था वो कि सच इतना कड़वा क्यों होता है। वो दिशाहीन जंगल में भटकने लगा भूखा प्यासा। जब थक कर हार गया तो एक घने वृक्ष की छाया में लेट गया। लेटते ही गहरी नींद सो गया और सोते ही फिर एक सपने में खो गया।

0: सच्चे पुरुष, उठ उठ जाग जा, देख तो तुम्हारे पास कौन आया है।
1: अरे महाराज, आप महाराज हैं, आपके चरण कहाँ हैं? मुझे पता था आप जरूर आएंगे महाराज।
2: अरे अरे, ये क्या कर रहे हो महाराज? मैं नहीं, मैं तो उनका सेवक हूँ, महाराज जी तो वो हैं।
1: महाराज, आप आ गए। मैंने अभी अभी सपने में देखा था कि आप मुझे अपनी शरण में लेने आ रहे हैं महाराज। मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता महाराज।
3: कौन हो तुम?
1: दुनिया का सताया हुआ पुरुष दगड़ू, अब तो आप ही का आसरा है महाराज।
3: क्या कर सकते हो तुम?
1: सपने देख सकता हूँ। क्या नहीं कर सकता महाराज? आप जो आज्ञा देंगे उसे अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझ के निभाऊंगा महाराज।
3: ठीक है, हमारे महल में पहरेदार की जगह खाली है, लेकिन तुम्हें सारी रात जागकर महल का पहरा देना होगा।
1: हाँ महाराज, हाँ, मैं सारी रात उल्लू की तरह जाग के आपकी सेवा करूंगा। मुझे एक मौका दीजिए महाराज।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ दुर्व्यवहार मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बाढ़ के पानी में डूबने से 6 बच्चों की मौत। और मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद राज्य में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। पटना के एक निजी होटल में आयोजित ग्राम संसद बिहार चैप्टर मुखिया संवाद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है।
1: डिलिमिटेशन का काम हमारे यहाँ जो पंचायत इतने बड़े हैं, इसका एक तरह से डिलिमिटेशन का काम शुरू करना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने काम भी शुरू कर दिया और अगला जो चुनाव होगा पूरी तरह डिलिमिटेशन कराने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। मानक तय है कि 7,500 की आबादी में एक मुखिया का पंचायत होगा।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2037 तक समृद्ध और विकसित बिहार बनाने में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि पंचायतों में कारोबार करने वाले उद्यमियों, ईंट भट्टा, निजी स्कूल और मोबाइल टावर से टैक्स वसूलने का अधिकार पंचायतों को दिए जाने का प्रस्ताव है।
1: मैंने कहा गांव में टैक्स लगाना चाहिए। गांव का टैक्स का मतलब नहीं कि आम लोगों पर, ये ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, आम लोगों पर टैक्स नहीं हो सकता, गरीबों पर टैक्स नहीं हो सकता, लेकिन गांव में जो इंडस्ट्री चलाएंगे, कोई ईटा भट्टा चल रहा है, कोई स्कूल चल रहा है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रहा है, मोबाइल टावर है, इससे तो पंचायत को टैक्स आना चाहिए कि नहीं चाहिए।
0: कार्यक्रम का उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने किया। इस अवसर पर ग्राम संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधान पार्षद संजय मयूख समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। जमुई में एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी और अभद्र व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि मामले में वायरल वीडियो की सघन जांच पड़ताल के बाद BNS और पॉक्सो की धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में गठित विशेष जांच टीम अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उन्होंने बताया कि अपलोड वीडियो के टेक डाउन की कार्रवाई भी की जा रही है।
2: जो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है और अभी तक जो है वीडियो के आधार पर, पहचान के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। ये सभी जो है मड़वा गांव है, यहीं पे जमुई थाना क्षेत्र में वहीं के लोग हैं। और भी जो वीडियो के आधार पर कुछ और लोग को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
0: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने जमुई की घटना को अत्यंत निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि आयोग इसे लेकर गंभीर है, जल्द ही आयोग की टीम पीड़िता से मिलकर मामले में पूरी जानकारी लेगी। उन्होंने कहा कि आरोपी कोई भी हो, उसे सख्त सजा दिलाई जाएगी।
3: पुलिस प्रशासन सभी प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है और भी गिरफ्तारी हो जाएगी और इस तरीके से जो भी समाज में गलत संदेश देने का काम करेंगे वो दंडित होंगे।
0: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने नाबालिग छात्रा और उसके मित्र से अमानवीय व्यवहार की घटना की निंदा की है। उन्होंने इसे समाज को शर्मसार करने वाली घटना बताया। श्रेयसी सिंह ने कहा कि प्रशासन इस मामले में तत्परता से कार्रवाई कर रहा है।
4: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट भी हो और ये चाहती भी हो कि आगे भी इस गति में कोई कमी ना आए और इसी तरह से कार्रवाई हो।
0: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जमुई की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त हो गया है। श्री यादव ने एनडीए सरकार पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया।
5: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग को बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई है, लेकिन सरकार को कोई शर्म और लाज नहीं रही है। बिहार में आज लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, चाहे दिन हो या रात हो।
0: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी के मामले में कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मांझी ने कहा कि राज्य सरकार को श्री पासवान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तरैटा नारायणपुर गांव में आज स्नान करने के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से 6 बच्चों की मौत हो गई। सभी मृतक बच्चों की उम्र 10 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। इनकी पहचान सुल्तानगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 27 के रहने वालों के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार कर्मा धर्मा पूजा को लेकर बच्चे स्नान कर रहे थे, इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से यह हादसा हुआ। अंचलाधिकारी रमन कुमार ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और हर प्रकार की सरकारी सहायता दिए जाने का भरोसा दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत लाभार्थी को हर साल 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योजना सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से प्रेरित है।

0: मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के जरिए जरूरतमंद परिवारों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधा और आर्थिक राहत का जिक्र किया है। इसी योजना का लाभ सुपौल के कैलाश कुमार चौधरी को भी मिला। उन्होंने आयुष्मान कार्ड के जरिए अपना इलाज कराया और बताया कि इसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ा।
1: मेरा नाम कैलाश कुमार चौधरी है, घर किशनपुर सुपौल जिला। मैंने आयुष्मान कार्ड पे अपना इलाज कराया था, पाइल्स का फ्री में, और ऑपरेशन करवाए थे सुपौल जिला के अनंतपरमा हॉस्पिटल के यादव के पास, और हमारा ऑपरेशन चालू हुआ और हमको एक भी रुपया नहीं लगा। मतलब तो खाना पीना का भी खर्च हम फ्री में, सब चीज फ्री में, दवा भी फ्री मिला हमको। और हम मोदी सर जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, हम लोग गरीब लोगों को इतना सोचा है।
0: कैलाश कुमार चौधरी के अनुसार इलाज के साथ उन्हें दवाइयां भी मुफ्त उपलब्ध कराई गई। उनका कहना है कि आयुष्मान कार्ड ने गरीब परिवारों के लिए इलाज कराना आसान बनाया है। उन्होंने इस सुविधा के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। सुपौल से रविशंकर चौधरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निधिश्री।
2: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत की गौरवशाली ज्ञान परंपरा का प्रतीक है। श्री हसनैन ने आज विश्वविद्यालय सभागार में विकसित भारत के निर्माण में भारतीय ज्ञान परंपरा की भूमिका विषय पर आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी ज्ञान विरासत को आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जोड़ना आवश्यक हो गया है। प्रदेश के विभिन्न भागों में मानसूनी गतिविधियां बढ़ने से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हुई है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर तेज हवा के साथ छिटपुट बारिश भी हुई है। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, नालंदा, गया, नवादा समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की आशंका है।
3: दिनांक 22 सितंबर को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन तथा वज्रपात होने के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
2: सुपौल जिले के बीरपुर में नेपाल सीमा के से सटे क्षेत्रों में एसएसबी की ओर से युवाओं के लिए 5 दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रोहतास के जिलाधिकारी समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में अभियान बसेरा के तहत लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योग्य लाभुकों को स्थानीय अंचल कार्यालय में भूमि के लिए आवेदन करना होता है। मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी अभियान के दौरान एक चारपहिया वाहन से 85 किलोग्राम गांजा जब्त किया। इस संबंध में अंतर जिला तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। अरवल समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। स्थानीय सांसद सुरेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले में चल रही विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कटिहार जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न स्थानों पर संध्या चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने फलका प्रखंड के भरसिया पंचायत में आयोजित चौपाल में भाग लिया। मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घर में छापेमारी कर पुलिस ने 63 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ 8 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व मध्य रेल के सोनपुर मंडल अंतर्गत 7 प्रमुख स्टेशनों पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्टेशन और रेलवे कॉलोनियों में स्वच्छता जागरूकता रैली, जनसंपर्क अभियान और सफाई कार्यक्रम संचालित किए गए। अररिया जिले के रहने वाले हृदय रोग से पीड़ित 3 बच्चों को निःशुल्क इलाज के लिए आज अहमदाबाद रवाना किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इन बच्चों की शल्य चिकित्सा की जाएगी। जिला पदाधिकारी विनोद दुहन ने शुभकामनाओं के साथ इन्हें रवाना किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ दुर्व्यवहार मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बाढ़ के पानी में डूबने से 6 बच्चों की मौत। और मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: नया पहरेदार अपनी जिम्मेदारी प्रति सजग लगता है। अगर इसी ईमानदारी से काम करता रहा तो अगले मास हम उसका वेतन बढ़ा देंगे। हाँ रानी, कल सूर्य उदय से पहले हमें जगा देना, एक जरूरी काम से हमें सोनपुर जाना है।
1: जागे महाराज।
2: जागते रहो।
3: अरे दिए गुल हो गए, मतलब महाराज सो गए। अगर महाराज सो गए तो प्रजा भी सो जानी चाहिए।

0: महाराज कहीं जा रहे हैं क्या?
1: जी हाँ, सोनपुर जा रहे हैं।
2: तो बस आ गया महाराज का अंत समय, कर लो चंदन की लकड़ी इकट्ठी उनकी चिता जलाने के लिए।
1: क्या
3: तूने जब भी भविष्यवाणी की है, दूसरों की तबाही के बारे में ही भविष्यवाणी की है, और ऐसा सच भी किस काम का जो दूसरों को दुख दे, तकलीफ दे, और फिर तेरे कहने का ढंग भी तो गलत है।
2: नहीं नहीं माँ, मैं तेरी बात पर अमल करूंगा।
0: महाराज की जय हो।
2: महाराज गुस्ताखी की क्षमा चाहता हूं, अगर आप अपनी यात्रा स्थगित कर दें तो ये प्रजा के हित में होगा महाराज।
4: किंतु हम एक बहुत ही आवश्यक काम से।
2: महाराज जान है तो जहान है, सोनपुर में भूकंप आने वाला है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा महाराज।
4: तुम्हें कैसे पता?
5: उसे पता हो या ना हो, किंतु ये अब शकुन है महाराज। नहीं नहीं, मैं आपको कदाचित नहीं जाने दूंगी। आइए मेरे साथ आइए। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी।
2: शुक्र महाराज बच गए।

0: एक बहुत बुरी सूचना है महाराज, सोनपुर में भारी भूकंप आया है, सारा नगर भूमिग्रस्त हो गया और सारे नगरवासी मर गए हैं।
1: शुक्र है कि हम वहां नहीं गए, बच गए।
2: अगर आप अपनी यात्रा स्थगित कर दें तो ये प्रजा के हित में होगा महाराज। जान है तो जहान है, सोनपुर में भूकंप आने वाला है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा महाराज।
1: दगड़ों को हमारे सामने दरबार में उपस्थित किया जाए।
0: जो आज्ञा महाराज।
2: महाराज की जय हो। महाराज ने दगड़ों को बुलाया, दगड़ों हाजिर।
1: दगड़ों, तुम्हारी बात सच निकली, सोनपुर में भूकंप आया है और वहां की तमाम जनता मारी गई है।
2: महाराज, मैंने आपसे कहा था ना कि वहां मत जाइएगा।
1: हाँ, लेकिन तुम्हें इस बात का पता कैसे चला?
2: महाराज, मैंने सपना देखा था और महाराज मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता। हाँ
1: दगड़ू, चलो तुम्हारा इनाम।
2: महाराज की जय हो।
1: और अब इसी समय हम तुम्हें नौकरी से निकाल देते हैं, ले जाओ इसे।
3: इतनी कहानी सुनाकर वैताल रुक गया और हंसकर विक्रम से पूछा, बता विक्रम, राजा ने दगड़ू को क्यों इनाम दिया और उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया?
4: जल्दी बता वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ।
5: सुन बेटा, राजा ने उसे हीरों का हार इसलिए इनाम में दिया क्योंकि उसने अपने सपने के अनुसार ये बताकर कि सोनपुर में भूकंप आने वाला है राजा की जान बचाई, और नौकरी से निकाल इसलिए दिया क्योंकि वो सारी रात जागकर पहरा देने के बजाय सोता हुआ सपने देख रहा था। राजा को एहसास हुआ कि दगड़ू अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार नहीं था, इसलिए उसने सपनों वाले दगड़ू को नौकरी से निकाल दिया।
4: कहा तो ठीक, मगर कहा क्यों? अरे तू बोला और मैं चला, मैं ये चला।
6: मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 पे।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
10: अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी अंगूरी।

0: अंगूरी अंगूरी
1: दम दम के
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंट स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
8: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है जो गेट 2027 के माध्यम से कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में करियर के अवसर उपलब्ध करा रहा है। आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं कार्यकारी प्रशिक्षु केमिकल, कार्यकारी प्रशिक्षु इलेक्ट्रिकल, कार्यकारी प्रशिक्षु इंस्ट्रूमेंटेशन तथा कार्यकारी प्रशिक्षु मैकेनिकल के लिए। योग्यता की शर्तें, अन्य नियम और शर्तें तथा निर्देश देखने के लिए विस्तृत विज्ञापन को देखिए गेल की वेबसाइट पर। वेबसाइट है gailonline.com, gailonline.com। वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन के अंतर्गत विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। डीएनएस क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान शास्त्री नगर पटना बिहार आमंत्रित कर रहा है संविदा के आधार पर व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन। पदों की संख्या और विभाग इस प्रकार से हैं: कृषि अर्थशास्त्र एक पद, एमबीए ऑपरेशन सप्लाई चेन एवं लॉजिस्टिक्स एक पद, एमबीए कृषि व्यवसाय दो पद तथा वित्त एवं लेखांकन एक पद। इन पदों पर नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी के संतोषजनक कार्य निष्पादन या संस्थान की आवश्यकता के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र, सभी संबंधित प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतियों सहित संस्थान के पते पर पंजीकृत डाक से भेजें। योग्यता, मानदेय तथा नियुक्ति के अन्य नियमों और शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी संस्थान की इस वेबसाइट पर www.dnsricmpatna.org। भारी उद्योग मंत्रालय इस विवरण के अनुसार संविदात्मक आधार पर सलाहकार ग्रेड 1 के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदों की संख्या एक है। समेकित पारिश्रमिक ₹1,00,000 प्रति माह रहेगा। संलग्नता की अवधि रहेगी 2 साल, जिसे 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। आवश्यक योग्यताओं में शामिल हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वाणिज्य में CA, ICWA, CS, MBA अथवा वाणिज्य में मास्टर्स डिग्री। संलग्नता की विस्तृत शर्तों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट है heavyindustries.gov.in। भारतीय स्टेट बैंक नियमित आधार पर विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारियों के इन पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। व्यापार वित्त अधिकारी कुल पद हैं 14, व्यापार वित्त अधिकारी IBG के लिए कुल पद हैं 21। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिशा निर्देश, शुल्क के भुगतान के लिए निर्देश, दस्तावेज कैसे अपलोड करें, चयन प्रक्रिया, सामान्य जानकारी आदि के लिए विवरण संबंधित विज्ञापनों में दिए गए हैं, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट है sbi.bank.in/web/careers/current-openings। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया कॉन्टेक्ट अस या पोस्ट योर क्वेरी के लिंक के माध्यम से लिखें, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है sbi.bank.in/web/careers। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
9: सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
11: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
13: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
14: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
15: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
16: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
13: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती अकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका, ये आकाश DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:44 और पूरे 50 सेकंड हुए हैं। ठीक है, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: Into concrete economic outcome.
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
3: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
5: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
6: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
7: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
6: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर यूपीआई के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
8: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है यूपीआई के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो यूपीआई ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
6: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापानी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग।
10: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
11: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
12: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
11: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
12: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
11: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
11: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
12: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
11: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
12: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
12: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
11: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
14: ठक ठक।
15: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
16: अच्छा मिला ही नहीं।
15: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
17: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
15: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
17: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
18: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
19: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
12: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707-06-575।
20: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
21: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
20: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
21: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
20: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
21: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
20: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
12: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89733।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
14: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
14: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री

0: कृष्णा साड़ी को। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हथुआ अंचल का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। छाड़ी नदी का अब होगा जीर्णोद्धार, अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान शुरू। 30 तारीख को लग रहा है बृहद जॉब मेला। नीट छात्रा का फांसी के फंदे से लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। अलग अलग मामलों में लगभग 1000 लीटर शराब को पुलिस ने किया जब्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने हथुआ अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राजस्व कार्यों, अभिलेखों एवं विभिन्न पंजीयों के संधारण की स्थिति की समीक्षा की गई। बड़ी संख्या में लंबित परिमार्जन आवेदनों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान प्रधान सहायक की नोटबुक, सूचना का अधिकार पंजी, CWJC पंजी और पूर्ण स्थानांतरण पंजी तथा शनिवारीय पंजी का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के संधारण में कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने सभी पंजियों को अद्यतन एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप संधारित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अपने साथ जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त 3 मामलों के आवेदन भी लेकर पहुंचे, लोगों से बातचीत की और संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा मामले का त्वरित निष्पादन भी करवाया। छाड़ी नदी के जीर्णोद्धार एवं उसे अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से आज अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में स्थल का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर नदी के करीब 1.5 किलोमीटर लंबे चिन्हित क्षेत्र में अंचल अमीन के द्वारा की जा रही मापी का स्थल निरीक्षण किया गया। मापी के दौरान अब तक 42 अस्थायी अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। निरीक्षण के क्रम में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि छाड़ी नदी के चिन्हित क्षेत्र में मापी की कार्रवाई पूरी गंभीरता के साथ कराई जाए, ताकि नदी की वास्तविक स्थिति, उपलब्ध भूमि एवं अतिक्रमित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जा सके। अंचलाधिकारी रजत बर्णवाल को निर्देशित किया गया है कि मापी की पूरी कार्रवाई 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराते हुए सभी संबंधित अतिक्रमणों को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना सुनिश्चित करें। इस दौरान अंचलाधिकारी रजत बर्णवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया,
4: छाड़ी नदी के अतिक्रमण को लेकर के 7 लोगों अमीन की टीम बनाई गई है, जिसमें हाजियापुर, सरेया और गोपालगंज नगर के में लगभग 1.5 किलोमीटर जो छाड़ी नदी बह रही है, पहले इन 3 मोजा का हम अमीन की टीम द्वारा निरीक्षण करके सभी घरों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पे छाड़ी नदी की पर अतिक्रमण कर लिया गया है। उस अतिक्रमित नदी को हम लोग पहले सबको घर को चिन्हित करके समय मार्क निशान लगा रहे हैं, और उसके बाद सभी फिलहाल तक 42 घरों को चिन्हित किया गया है। और आज SDM मैडम द्वारा 1 हफ्ते का अल्टीमेटम टाइम दिया गया, 1 हफ्ते के अंदर पूरा 1.5 किलोमीटर का नापी करके एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया, फिर उनको बिहार लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत प्रपत्र 1 और 2 में नोटिस करके उस अतिक्रमण को हटाया जाए।
3: 30 सितंबर को जिला स्तरीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन मिंज स्टेडियम में हो रहा है। इस 1 दिवसीय रोजगार मेला में निजी क्षेत्र की लगभग 15 से अधिक कंपनियां शामिल हो रही हैं। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

0: विभाग के तहत जिला नियोजनालय इसका आयोजन कर रहा है। इस दौरान बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसर और व्यवसायिक मार्गदर्शन मिलेगा। जिला नियोजन पदाधिकारी ने अधिक से अधिक युवाओं से मेले में पहुंचने की अपील की है। नगर थाना क्षेत्र के श्याम सिनेमा रोड से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। यहाँ किराए के मकान में रहकर ऑनलाइन नीट की तैयारी कर रही एक 20 वर्षीय छात्रा उजाला कुमारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि मृतिका सिधवलिया थाना क्षेत्र के सरया पहाड़ गांव के रघुनाथ शर्मा की बेटी उजाला कुमारी शर्मा थी। वह अपने परिवार की इकलौती बेटी थी और पिछले करीब एक साल से यहाँ कमरा लेकर रह रही थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रा के कमरे का दरवाजा बंद पाए जाने पर जब उसे खोला गया तो अंदर उसका शव फंदे से लटका मिला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस मामले में मृतिका के भाई अभिषेक शर्मा का कहना है कि करीब एक वर्ष से शहर के श्याम सिनेमा रोड स्थित कौशल किशोर श्रीवास्तव के मकान में किराएदार के तौर पर यह छात्रा रहती थी और ऑनलाइन नीट की तैयारी कर रही थी। इसी बीच फांसी के फंदे से लटका उसका शव मिला है। मृतिका के भाई ने कहा कि जब वह अपनी बहन के कमरे में गया तो देखा कि उसका दरवाजा बाहर से बंद है। उसने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गया। अब इस मामले में पुलिस के तरफ से एक एक बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही पुलिस का आधिकारिक बयान भी सामने आ सकता है। परिजनों ने इस मामले में गहन जांच की मांग की है और स्थिति पर अपनी आशंकाएं जताई हैं। बताया जा रहा है कि नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतिका के मोबाइल फोन और एक डायरी को जब्त कर चुकी है। डायरी में मानसिक परेशानी और तनाव से जुड़ी कुछ बातें लिखी मिली हैं। एफएसएल की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर एक एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर साक्ष्य को एकत्रित की है। सदर एसडीपीओ कृपाल चंद जायसवाल के अनुसार शुरुआती तौर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। पुलिस ने मोबाइल के सीडीआर और डायरी के आधार पर भी मामले की गहनता से तफ्तीश शुरू कर दी है। आज पुलिस ने कई अलग अलग जगहों से शराब के भारी मात्रा में खेप को पकड़ा है। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। माझा पुलिस ने 35 लीटर से अधिक देशी चुलाई शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भैंसही गांव में छापेमारी की। इस दौरान 35 लीटर से अधिक देशी चुलाई शराब को जब्त किया गया और इस मामले में भीम राजभर को गिरफ्तार किया गया, जो भैंसही गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। इधर सिरीपुर थाना की पुलिस ने 303 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक कार को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच करते हुए मिस्र बतराहा के पास कार को पकड़ा। इस गाड़ी की तलाशी लेने पर इसके अंदर से 303 लीटर देशी शराब मिली। इस मामले में दीपक कुमार गोण, पिता राम सूरत गोण, साकिन बनकटिया दुबे थाना बनकटिया जिला देवरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपी पर भी उत्पाद अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके शराब और कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इधर बिशंबरपुर थाना की पुलिस ने भी 24 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गश्ती के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने बिशंबरपुर के तिवारी मटिहनिया के पास एक व्यक्ति को प्लास्टिक के बोरे में शराब लाते हुए पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी कृष्णा शाह गोण, पिता नरेश शाह गोण, साकिन बलिवन सागर थाना बिशंभरपुर का निवासी है। यह एक बोरे में पीठ पर शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस इसे दबोच लिया। अब आरोपी को भी उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। गोपालपुर थाना की पुलिस ने भी 495 लीटर देशी शराब के साथ एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया है। इसमें भी एक कार को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर नहर के पास वाहन जांच शुरू किया। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसके अंदर से 495 लीटर देशी शराब मिली। इसमें चालक को पकड़ा गया, यह विधि विरुद्ध बताया जा रहा है। इसके बाद शराब और कार को जब्त करते हुए इस पूरे शराब तस्करी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को पुलिस तलाश रही है। नगर थाना की पुलिस ने थावे बंजारी बाईपास और वाहन जांच करते हुए एक चोरी की मोटरसाइकिल को पकड़ा। इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस वाहन जांच कर रही थी, इसी दौरान मोटरसाइकिल से बबलू कुमार यादव आ रहा था, जो माझागढ़ के धामा पाकड़ स्थित बीरेश चौधरी का पुत्र है। पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो आरोपी भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर आरोपी को पकड़ा। मोटरसाइकिल के कागज मांगे गए, जिस पर आरोपी ने कोई वैध कागज प्रस्तुत नहीं किया। संदेह उत्पन्न होने पर उसे पुलिस ने हिरासत में लिया, तलाशी ली गई और पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी बबलू कुमार यादव के द्वारा बताया गया कि वह अपने सहयोगी जिशान अली उर्फ गोलू साकिन डोमा हता थाना माजागढ़ जिला गोपालगंज के साथ मिलकर बंजारी मोड़ से मोटरसाइकिल चोरी कर ले जा रहा था। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए इसके सहयोगी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है और इसमें आवश्यक जांच पड़ताल भी किया जा रहा है। इधर माझागढ़ थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त शमसुद्दीन पिता स्वर्गीय मुर्तुजा साकिन सिरवनिया थाना माझागढ़ को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मजदूरी के बकाया रुपए मांगने को लेकर अभियुक्त द्वारा वादी के साथ मारपीट कर उसे घायल किया गया था और इसी मामले में वादी ने थाने में आवेदन दिया था, जिसमें आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज अपने कार्यालय में भी जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान 25 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें नियमानुसार यथा शीघ्र कार्रवाई करते हुए आवेदनकर्ता को फौरी राहत उपलब्ध कराने का उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। जंगलिया में आपसी विवाद के दौरान झगड़ा छुड़ाने गए एक युवक पर हुई चाकूबाजी कांड में पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने अनुसंधान करते हुए इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक आरोपी सिराजुद्दीन उर्फ सिराजुद्दीन आलम, दूसरा सैफ अली, ये दोनों निजामुद्दीन राय के पुत्र हैं, और तीसरा निजामुद्दीन राय पिता सुलेमान राय, ये सभी जंगलिया के रहने वाले हैं और बाप बेटे बताए जा रहे हैं। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो रिमझिम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी इस सेवा का लाभ दुनिया के किसी भी कोने से उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हथुआ अंचल का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, छाड़ी नदी का अब होगा जीर्णोद्धार, अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान शुरू, 30 तारीख को लग रहा है बृहद जॉब मेला, नीट छात्रा का फांसी के फंदे से लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी, अलग अलग मामलों में लगभग 1000 लीटर शराब को पुलिस ने किया जब्त। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द। अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
8: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
10: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
11: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
12: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
11: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
13: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:25 हो रहे हमारी स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। तो कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यदि आप भी पुराने गाने पसंद करते हैं तो आप भी फरमाएं। मेरा नंबर है 72 77 16 65 96, यानी कार्यक्रम का नंबर 72 77 16 65 96 है। इस पर टेक्स्ट मैसेज करना है जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है और फिर किसी को सुनवाना चाहते हैं तो सुनवा सकते हैं। हाँ, लेकिन जानते पहचानते हैं उन्हीं व्यक्ति का नाम देंगे तो बेहतर रहेगा। फिलहाल कुछ मैसेज, पहला मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, कैसे हैं आप और सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भी सो से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से। और गाने की फरमाइश करते हैं, मत करे वफा के वादे, मैंने अक्सर रिश्ते वालों को मजबूरी के बहाने ढूंढते देखा है। ओहो, लाइन लिखे हुए हैं, कहते हैं प्यार मत कर वफा के वादे, मैंने अक्सर रिश्ते टूटे देखे हैं, मोहब्बत की कसम खाने वालों को मजबूरी के बहाने ढूंढते देखे हैं। मत सिखा मुझे मोहब्बत करना, मैंने अक्सर सच्ची मोहब्बत करने वालों को बिछड़ते देखे हैं। बिल्कुल प्यारा लाइन और एकदम क्या बोलते हैं, जो ज़माने चल रहे हैं उस ज़माने के अनुसार आपने लाइन पेश की है, अच्छा लगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मधुसरिया से राजू कुमार यादव, कहते हैं सॉन्ग सुनना है, कागज़ कलम दुआत लाल लिख दूँ दिल तेरे नाम कर। सुनाना चाहता हूँ मेरे को जानने पहचानने वाले सभी दोस्तों को। तो चलिए आपकी फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सिकंदर कुमार जुड़े हुए हैं काकड़कुंड से और कहते हैं कि का हाल बा, एकदम बढ़िया बा, आपन बताएं कि कैसन बानी। और फिर कहते हैं कि मुझे भी सॉन्ग सुनना है, छूले छूले आ मुझे छूले, महानता मूवी से। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, फिलहाल बन रहे हमारे साथ और यहाँ पे राजू जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यदि आप सब भी सुन रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें 72 77 16 65 96 पे। फिलहाल हम गाने के साथ इंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो 90.4 FM पे।

रेडियो रेम झीम 94 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है, फिर कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पर आगे कुछ मैसेज पहुँचे हैं तो मैसेज देखा जाए। और आगे मैसेज लिखा गया है कि हाय हेलो सर जी, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे ऑल लिस्नर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ, निशा भारती विलेज उज्जवलिया उचका गांव प्रखंड से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं, आपकी गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, बिल्कुल नाइस सॉन्ग। और इस मैसेज को करते हैं सिकंदर जी, बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज और फिर से रिपीट हुआ, निशा भारती जी आप बन रहे हैं हमारे साथ और आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज हम गाने को प्ले करते हैं सिकंदर जी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचे हुए तो हम प्ले करते हैं महानता मूवी से, और सुनते हैं हम सभी रेडियो रमछीम 94 FM पे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रामछेम 94.4 FM पे सोशल लाइफ में फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया कि हेलो भैया, गुड इवनिंग, आप कैसे हैं, मुझे गाना सुनना है बेटुआ तो हार गुर हुई हो, डेडिकेट है माई डियर हॉबी को और सभी लिसनर को, और इस मैसेज को करती हैं सजदा अंसारी मीरगंज से, कहती हैं प्लीज़ भैया बजा दीजिएगा। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए कुछ श्रोतागण की उनकी भी हाजिरी लगा लें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोना भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं ओपनिंग सॉन्ग सुपर से ऊपर दिलीप राम दिल्ली से, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हमारे यहाँ लाइट कट चुका है और हम गाना नहीं सुन पा रहे हैं सर, फिर भी सॉन्ग बजा रहे थे इसलिए दिल से शुक्रिया। ओहो, तब तो बड़ी तकलीफ़ हुई होगी। चलिए

0: आप किससे सुनते हैं ये बता दीजिए, ऐप से या रेडियो एफएम के माध्यम से। आगे मैसेज पहुंचे हुए लिखा गया है कि नाम अंकुश कुमार, पता गोपालगंज से, गाना सांसों की माला जपते जपते। स्वागत है आपका भी और ये गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्कार भैया जी, मैं जुल्ली कुमारी फ्रॉम मेरवा से, और
1: राधा तुमने
0: मुझे
1: अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया?
0: सर मुझे सॉन्ग सुनना है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये सॉन्ग डी मिश्रा जी को सुनाना है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग, वेरी नाइस, मैसेज करती है निशा भारती। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर मुझे भी सॉन्ग सुनना है कोई भी अपने पसंद से, और इस मैसेज को करती है निशा पांडे। तो आपसे निवेदन है कि आप अपना पसंद बताएं, क्योंकि कार्यक्रम है, कार्यक्रम आप लोग के लिए ही चलता है। वैसे हम सभी तो अपने पसंद से तो दिन भर सुनाते ही हैं आप लोगों को। कुछ समय आप लोगों को दिया गया है कि इस समय में आप अपने पसंद के गाने फरमाएं, ताकि हम लोगों को भी सुनकर कुछ मज़ा आए कि आपकी पसंद बहुत अच्छी थी या अच्छा था। तो आप लोग भी अपना पसंद बताएं, हम लोग भी सुने। मेरे श्रोतागण सभी प्यारे प्यारे हैं और गाने की फरमाइश करते हैं तो प्यारे लगते हैं, तो आप अपना पसंद बिल्कुल फरमाएं, हम भी सुनना चाहते हैं, हम सभी भी सुनना चाहते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम और साजिदा अंसारी की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं।

रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सन बाबू, कैसे हैं? हम भी जुड़ गए हैं, कल मेरा मैरिज एनिवर्सरी है और कल मैं आ रहा हूँ आपके जिले माता थावे माई के दरबार में मैडम जी के साथ दर्शन करने और आशीर्वाद लेने। जय माता दी। इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया खिखरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। बिल्कुल आपका स्वागत है, गोपालगंज जिले में आए और माता रानी का दर्शन करें, पूजन करें और आशीर्वाद ले, हमेशा खुश रहे। और फिलहाल कार्यक्रम में भी आपका स्वागत है, इस कार्यक्रम में बने रहें हम सब के साथ। आगे कुछ मैसेज पहुंचे हुए लिखा गया है कि मैं डॉक्टर नाजीर अहमद, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और गाने के फरमाइश करते हैं, चल उड़ जा रहे पंछी, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल बने रहे आप भी हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू भाई, क्या मेरा मैसेज नहीं पहुंचा है? मैं ब्रिज बिहारी पांडे, तो बिल्कुल अभी मैसेज आपका पहुंचा हुआ है कुछ ही समय पहले, हमें लगता है कि 20-25 सेकेंड पहले मैसेज आपका पहुंचा है, तो आपकी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज और आगे मैसेज पहले से जो पहुंचे हुए इनकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। निशा भारती की, इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हमें तुमसे प्यार है, और सॉरी मुझे तुमसे मोहब्बत है। डेडिकेट करती हूँ आपको एंड सोनी मैम, श्रुति मैम, दिव्या मैम, भारती मैम, निशा सिंह एंड निशा पांडे, सुधा सिस्टर, बतरदे वाली, शिल्पी सिस्टर, रोशनी सिस्टर, शाहिदा अंसारी एंड प्यारे प्यारे और लिस्टनर को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपको पसंद के गाने।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो 96.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और लिखा गया है कि उनकी आवाज़ सुनने को बेकरार रहते हैं, शायद इसी को दुनिया में प्यार कहते हैं, काटने से भी जो ना कटे वक्त, उसी को मोहब्बत में इंतजार कहते हैं। बिल्कुल, भले बड़ा पियाऊं शवार, और सजदा अंसारी की गाने को लिखे हुए कि सुपर शाम, गाने की बोल थोड़ी सी गलती हो गई है, और चलिए कोई बात नहीं, और इस मैसेज को करते हैं दिलीप जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि मेरा बेस्ट सॉन्ग सुनाने के लिए थैंक यू वेरी सो मच, आपको धन्यवाद है रेडियो रेमछम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि हाय सर, मैं डॉक्टर नाजीर अहमद एट बखरौर जद्दी बरौली गोपालगंज से। तो बिल्कुल आपकी भी मैसेज हमारे पास पहुंची है, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और लिखा गया है कि गाने का बोल है रब दी कसम यारा, रब दी कसम, प्लीज़ बजा दीजिएगा। बिल्कुल बजाएंगे, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि रेडियो रेमछम, मुझे सॉन्ग सुनना है, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मूवी का नाम है जीना, जीने की राह में। और इस मैसेज को करते हैं मंटू सिंह भूपुरवा से। तो बिल्कुल आप भी बन रहे हैं हमारे साथ, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है, और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। और इस गाने की फरमाइश करने वाले जुल्ली कुमारी फ्रॉम मैरवा से, और गाने की फरमाइश करती हैं बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, डी मिश्रा को डेडिकेट है स्पेशल में। तो सुनते हैं, आप भी सुने, एंजॉय करें अपने गानों के साथ।

रेडियो रेम झीम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज हैं और कई मैसेज तो शामिल करने पड़ेंगे। और अगले गाने के फरमाइश हम बता दें, अगले गाने के फरमाइश प्ले करेंगे ब्रिज बिहारी पांडे जी, गाने के फरमाइश किए हुए राजेंद्र नगर बस स्टैंड गोपालगंज से, और इनकी तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है। आया है मुझे फिर याद वह जालिम गुजरा जमाना बचपन का, मुकेश जी की आवाज़ में गाने के फरमाइश किए हुए। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि सर जी मुझे सॉन्ग सुनना है, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। बिल्कुल आपकी मैसेज हमारे पास पहुंची है। मंटू सिंह जी भोजपुरवा से जुड़े हुए हैं और आप बन रहे हमारे साथ, आपकी फरमाइश भी हम प्ले करेंगे। फिलहाल ब्रिज बिहारी पांडे जी की फरमाइश के साथ एंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो रमझिम 94.4 FM पे। और इन्होंने कुछ डेडिकेटेड नामे भी दिए हुए हैं और कहते हैं कि पूरे परिवार के साथ सुनना चाहता हूं और वीरेंद्र गुप्ता जी को सुनवाना चाहता हूं। तो बिल्कुल सुनाइए और सुनिए, एंजॉय करिए।

रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और अभी हम सभी ब्रिज बिहारी पांडे जी की फरमाइश सुन रहे थे। काफ़ी प्यारा रहा आपके द्वारा फरमाए गए सॉन्ग, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे गाने की फरमाइश किए हुए हैं बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। तो चलिए मंटू सिंह जी, आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम पे। साथ ही साथ एक और हमारे श्रोतागर हैं जिनका नाम है डॉक्टर नाजिर अहमद जी, बखरौर थाना बरौली जिला गोपालगंज से जुड़े हुए हैं और गाने की फरमाइश किए हुए हैं चल उड़ जा रहे पंछी अब देश हुआ बेगाना। तो आपकी फरमाइश हम बैक टू बैक दो गाने प्ले करेंगे क्योंकि समय जो है समाप्ति का हो चुका है। तो आप सभी, आप दोनों श्रोतागण इंजॉय करेंगे। साथ ही साथ कई अभी हमारे पास फरमाइश है जो पूरा नहीं कर पा रहे, तो उन सभी से निवेदन है कि कल कोशिश करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि कल आप सबकी फरमाइश हम पूरा कर दें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहें रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम, जो हमेशा कहता है सुना दिल से। नमस्कार।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नहीं बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: चचा

0: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारी व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: कौन था बोलो, कौन था, कौन था, कौन था बोलो, कौन था।

0: कल जब मैं कॉलेज से आ रहा था तब मैंने तुझको देखा।
1: क्या?
0: किसी और के बाइक पे बैठी थी, बाहों में उसे लपेटी थी, साथ उसके रेस्टोरेंट गई, उस पे तू प्यार लुटा रही थी, जिसके हाथों से होटल में तू पिज्जा बर्गर खा रही थी।
1: हाँ तो?
0: जो लड़का तुझे खिला रहा था बोल कौन था? कौन था? सोनू था?
1: नहीं।
0: मोनू था?
1: नहीं।
0: सोनू था, मोनू था, कौन था? कौन था?
1: मेरा भाई था।
0: भाई था?
1: हाँ भाई था।

0: बातों पे तेरे एतबार नहीं है, करती तू मुझसे प्यार नहीं है। खाके कसम तू बोल जरा, क्या वो तेरा यार नहीं है?
1: कसम से नहीं है।
0: नहीं है?
1: नहीं।
0: शॉट के सेल्फी ले रही थी, मेरा गिफ्ट किया ही फोन था, आईफोन था, बोल कौन था? सोनू था।
1: कौन सोनू?
0: मोनू था।
1: मैं नहीं जानती।
0: सोनू था, मोनू था, कौन था, कौन था?
1: अरे मेरा भाई था।
0: भाई था?
1: हाँ।
0: चल झूठी चल झूठी चल झूठी चल झूठी।
1: विश्वास नहीं है मैं...

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
2: Pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जी 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते,
2: कैसे हैं मैडम जी?
1: मैं ठीक हूँ।
2: तबीयत ठीक है?
1: हाँ, तबीयत ठीक है। आप बताइए, आप कैसी हैं?
2: मैं ठीक है।
1: तो क्या कर रही हैं अभी?
2: फोन लगा रही आपके पास।
1: अच्छा
2: जी, बताते बताते अभी लगे।
1: तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
2: गाना सुना दी, दिल लगा लिया है तुमसे प्यार कर।
1: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
2: आपको जितना रेडियो रूम जी सकेगा दोस्त।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
2: नेहा बोल रहे हैं भोरे से।
1: नेहा जी?
2: जी जी।
1: अरे बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई।
2: हाँ, तो फोन नहीं लगता है, यहाँ कभी लगता है तो मनोरमा जी रिकॉर्डिंग करते हैं।
1: अच्छा जी, नेहा जी तो ठीक है ना?
2: जी मैडम जी ठीक है।
1: और उसमें तो आप शायद कॉल करती थी ना, योर वॉइस वाले में?
2: हाँ करती हूँ।
1: अभी करती है कि नहीं?
2: अभी नहीं करती है, 10 दिन से फोन नहीं करती है, रेडियो बिगड़ गया है ना।
1: वही तो बोल रहे हैं, बहुत दिनों से नहीं मेरे से बात हुआ है। चलिए फिर ठीक है, गाना आपका प्ले करते हैं।
2: जी मैडम जी, नमस्ते।
1: सुनते रहिए रेडियो रूम जिम 90.4 FM।

0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या हाल है?
0: मेरा तो ठीक है, आप बताइए आपका क्या हाल है?
1: हमारा भी बढ़िया है। नाश्ता पानी हो गया?
0: जी मेरा हो गया है।
1: रामाकन तारीख की कड़िया से बोल रहे हैं, कव्वाली सुनना
0: है। बता दीजिए कौन
1: कव्वाली गाने का बोल? ये अरे मोमिनो सुनो ये करामत नमाज थी।
0: कौन सा?
1: अरे मोमिनो सुनो ये करामत नमाज थी,
0: ये
1: जन्नत जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज।
0: बोल है ये फिल्म का गाना है?
1: फिल्म का नहीं, कव्वाली है।
0: अच्छा, तो अगर फिल्म का कोई बताते तो मैं बजा देती।
1: तो फिल्म का गाना अगर बजाना है तो फिर कुल्ली फिल्म का गाना बजा दीजिए।
0: उसमें कव्वाली है?
1: कव्वाली तो है
0: उस मूवी में।
1: हाँ, उस मूवी में कव्वाली है, जो लास्ट में गाना है ना, पसीने वालों से मेरा सलाम कहना।
0: अच्छा,
1: ये गाना बजा दीजिएगा।
0: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
1: और हम जितने रेडियो रिंगिंग सुनने वाले श्रोता है सब सुनवाएंगे।
0: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: The phone gindi bajti hai to kehte hai hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी नमस्कार मैडम जी।
7: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
7: जी कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है, बारिश हो रही है हमारे इधर, आपके इधर हो रही है क्या?
7: नहीं, मेरे यहाँ तो अभी नहीं हो रहा है।
6: हमारे यहाँ तो गिर रहा है, सुबह से ही गिर रहा है और अभी भी गिर रहा है।
7: अच्छा जी, आपके यहाँ बहुत बारिश होता है ना?
6: जी जी जी,
7: जब भी फोन करते हैं तो बताते हैं आप हमेशा कि हाँ यहाँ बारिश हो रहा है।
6: बारिश हो गया है और जो हमारे कुएं हैं वो फुल हो चुके हैं, उनमें से पानी ऊपर से निकल रहा है।
7: अच्छा
6: जी, हमारे इधर ज्यादा कुएं होते हैं, आपके उधर क्या है, ट्यूबवेल है कि तालाब है?
7: हमारे यहाँ तो तालाब है, नदी है, यही है।
6: हमारे इधर नदी नहीं है, ये पार्वती मैया है वो कभी भराती नहीं है। और कुएं हैं, कुएं तो खुले हैं ऊपर तक, और नल में पानी चल रहा है ऑटोमेटिक, इतना पानी का जलस्तर बढ़ गया है।
7: अच्छा जी
6: जी, जो हैंडपंप होते हैं उनमें से पानी ऑटोमेटिक निकल रहा है,
7: नहीं बढ़ गया है।
6: जी जी, तो एक डैम है, डैम भी खुल हो गया है हमारे इधर का।
7: चलिए तब तो ठीक ही है
6: जी।
7: बाढ़ वगैरह का समस्या तो नहीं है ना?
6: नहीं नहीं, हमारे इधर बाढ़ नहीं आएगा, हमारा आखिरी एंड ही होगा जब ही हम एंड होंगे, बाकी हम 20 सेंटर में हैं।
7: अच्छा जी
6: जी, किधर से भी आएगी मौत तो हम बीचों में, बीचों में बीच है।
7: अच्छा
6: जी, उधर उधर जैसे नेपाल में होगा, बेचारे नेपाल में बहुत सारे लोग जान गंवा दी उन्होंने, लेकिन इधर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और इधर हमारे इधर तालाब भी नहीं है, डैम भी नहीं है, एक पार्वती है वो भी कभी भराती नहीं है, वो तो ऊंचाई में है वो भी, तो हमें जान का खतरा नहीं है। जो तो प्राकृतिक रूप से कभी आपदा आएगी जब भी है, बाकी पानी से हमें कोई दिक्कत नहीं है।
7: चलिए तब तो बढ़िया है
6: जी।
7: तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा आप?
6: ये पिक्चर का नाम है सिर्फ तुम,
7: और गाने की बोल?
6: और गाने के बोल है पहली पहली बार मोहब्बत, ये कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं।
7: ओके, और गाना किसी को सुनवाएंगे?
6: जी ये गाना डेडिकेट रहेगा भारती मैम को, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, और गोपाल ओझा जी, जितेंद्र धाकड़ जी है, और गजराज सिंह लोधी है।
7: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
6: अब आएगा, आज ही आ जाएगा ना?
7: नहीं आज तो नहीं आएगा
6: जी,
7: कल आएगा नहीं तो परसों आएगा।
6: ठीक है
7: ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो जी।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं आगरा बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, कैसी हैं?
1: अच्छी हैं, अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है
1: जी।
0: तो क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो बहुत पहले से कॉल लगा रहे हैं, कॉल ही नहीं लग रहा था। आज बहुत बार ट्राई किए हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसके पिछले बार लगाए थे इसी दिन को, तो 3 बार में ही लग गया। कम से कम 100 बार लगाए हैं तब जाके लगा है। और सब ठीक है ना?
0: हाँ, और सब ठीक है।
1: ठीक है, तो आज भोजपुरी सॉन्ग सुनवा दीजिएगा।
0: गाने की बोल बता दीजिए।
1: छाने छाने बदले तारो मिजाज रजाओ, सिल्की राग की आवाज में है ना। और सुनवाना चाहती हूँ आपको, अपने हसबेंड जी को और कुछ रेडियो दोस्त है, हिना जी है, सफाक जी है, सलेहा जी है, शाहजहाँ जी है, ब्यूटी परवीन है और रुबीना नाथ, इरफान जी, कमरान जी, गुलाम हुसैन, वीरेंद्र गुडा, साहिल राजा और बाकी जितने लोग जाने पहचानने वाले इन सभी।
0: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: ओके मैम।

0: प्रिंसिपल।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello,
2: hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4
7: पे। भारती भारती जी प्रणाम।
6: प्रणाम,
7: कैसे बने?
6: हम तो ठीक बने, रुआ बताए रुआ किस बने?
7: बस ठीक है बने।
6: आप पहले ही नाम लेके बोलने हैं कि कंफ्यूज ना हो क्या?
7: कंफ्यूज कल डबलिंग के चलते कंफ्यूज हो गए पर है।
6: अच्छा,
7: हम पूरा दिन भर ये सोचे नहीं कैसे कंफ्यूज हो गई, नहीं ये सोचे वाली बात।
6: अब गाना कैसे लगुए?
7: गाना तो एकदम मस्त लगुए, गाना में तो कोनो कमी ना रहे। हम तो ये सोचे कि हमार चॉइस और फरमाइश राहुल कैसे एक हो गई समझ में ना आए।
6: ना ना, और जो गाना बानो कोनो कोनो बहुत अच्छा
7: लगेला। पता ना ऊपर के मन कहत नहीं अच्छा लगेला कि
6: अच्छा लगेला तभी बजाऊं, ऐसा थोड़ी अच्छा लगे तो हम जाती
7: हूँ।
6: रोबा तो कहले रही अपना पसंद के बजाओ, कहाँ अच्छा लगे तो हम बजती।
7: तू तो बात रहे कोई रहे चुआई समार रही फरमाइश राहुल रही। सब दिन तो रोड़ा लोग नहीं कर कोई अब रोड़ो लोग से सुने के चाहिए ना।
6: सब
7: वहाँ कहाँ बनी
6: अपना काम में लागल बनी।
7: कल परसों छुट्टी में रहनी का?
6: ना कल तो आई रही तो योर भाई
7: परसों पर आ जाए बनी की ना?
6: हाँ आज बनी एकदम।
7: चलिए फिर आ जाएगी फरमाइश
6: बता दी।
7: आज रही खुशबू सिंह की आवाज में
6: और गाने के बोल
7: गाना के बोल रही ससुरा से निक नहीं हरवे के पानी।
6: तो गनवे एकदम अलग अलग होला।
7: अच्छा हमारे देखिए हम हमारे फरमाइश से कुछ अलग होला। हम फरमाइश हम तो ऐसा ऐसा फरमाइश से दी देखी जब मिली ना रोड से। चलिए आशा ना पूरा विश्वास बा हमारे गाना बजा दे।
6: और गाना क्योंकि सुना
7: हूँ बस रो तो सुना एक बार जितना हमारे नाम से जाने वाला लोग है सबके। हमारा नाम धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से
6: रेडियो रूम से मैं कॉल के नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
8: तो घर

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में। हेलो,
1: नमस्ते दीदी,
0: नमस्ते।
1: क्या हाल है?
0: मेरा ठीक है, आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। कुछ समय से कॉल लगा रहे हैं, कॉल मेरी रिसीव नहीं कर रहे हैं आप।
0: अच्छा, अभी तो कॉल कटा, जस्ट तो आपका आया।
1: नहीं, खाली बिजी बिजी बता रहा था।
0: थोड़ा आज ज्यादा ही कॉल आ रहा है।
1: और मनोरमा दीदी कैसे हैं?
0: मनोरमा दीदी भी ठीक है,
1: तो उसका हाल बता दीजिए, कैसा है?
0: वो भी बहुत अच्छे हैं।
1: मौसम कैसा है गोपालगंज का? गरम गरम बनाती है खाना?
0: गरम गरम खाना ही चाहिए।
1: और सब बताइए। सुबह
0: और सब तो हम सबका ठीक है। साढ़े
1: का तो टाइम हो गया, कब चलेगा?
0: 12 से तो बता दीजिए जल्दी जल्दी कौन सा गाना सुनिएगा।
1: जल्दी जल्दी बजा दीजिए, ये सॉन्ग बजा दीजिए। सिलफिला की आवाज में है भोजपुरी सॉन्ग, मारदा पके ताकि तगड़ा दम, यही सॉन्ग बजा दीजिए।
0: और गाना सुनाइएगा।
1: डेडिकेट है सबसे पहले आपको, मनोरमा दीदी को, सोनू दीदी को, दिव्या दीदी को और पूरा रेडियो रिजन को और स्पेशल में कृष्णा दीदी को।
0: सुनाते हैं आपका।
1: कब बजेगा दीदी? शाम को भी कल?
0: मेरा आज नहीं बजेगा, आज मनोरमा जी का बजेगा जो छूटा हुआ है, और मेरा कल बजेगा और परसों बजेगा।
1: अच्छा चलिए ठीक है। नमस्ते
0: आपका गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो रूम 90.4 FM।
1: दीदी।
0: नमस्ते।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजर 91.4 FM में।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते,
1: क्या हाल है?
0: मेरा सब ठीक है, सुनने में आया है आपका तबीयत खराब हो।
1: हाँ, बुखार लगल बाटे।
0: अच्छा, कहे बुखार लग जाता रहुआ?
1: पता ना, ऐसा भी नहीं पता कि बुखार लग गई।
0: मौसम चेंज होता है, थोड़ा ख्याल रखो करी। रुआ अभी बनाओ तो नहीं गरम गरम।
1: हाँ बना दो नहीं गरम गरम। रुआ से क्या कलर है
0: के बता सकता रहो, मैंने बताई ना
1: भाई बतेला है ना। मनोरमा दीदी कहाँ वाली?
0: वहाँ के नहीं बानी।
1: और सब ठीक बन? चलिए ठीक है।
0: बता दी आज रुआ कौन सा गाना सुने?
1: गाना बजा दी दोनों की भजपुरी।
0: कोनो भी आजकल कोनो भी सुन लेता नहीं, पसंद नहीं की बताओ।
1: दोनों तो गीते हैं, सुना दी दोनों अपना पसंद से।
0: ना ये पारी रुआ बताई अपना पसंद से।
1: मैं तो याद नहीं खेल रही, अपना पसंद से बजा दी कल इतना सुंदर गीत बजा ले रहा है।
0: अच्छा तो बता दी कौन हीरो के सुने?
1: बजा दी पांच सिंह टिकेट रही सबसे पहले रघुआ के, मनोरमा दीदी के, जितना सुनते हैं लोग वहाँ लोग के, और स्वर्ण दीदी के, और हमने के सुने सुन।
0: चल ठीक बात, गाना प्ले करता नहीं, सुनत रही रेडियो रेंजन 90.4 FM।
1: थैंक यू,
0: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते
1: जी नमस्ते बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: इसके लिए धन्यवाद। मैं संजय कुमार
1: जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: मेरा हाल चाल बढ़िया है। आप कैसे हैं? आप रेडियो रिमझिम का कौन परिवार कर रहे हैं?
1: रेडियो रिमझिम के सभी टीम बहुत ही अच्छे हैं।
0: चलिए बढ़िया जाना चाहिए। और बताइए मौसम क्या?

0: उदय बहन ठाकरे, हमारे नाम से जाने पहचाने तमाम दोस्तों विशेष कृष्णा दीजिए, रामचंद्र कुमार मुखिया, शंकर प्रसाद शंभु, पारस कुशवाहा, पारस शर्मा, राजिंदर जादव भारती, संत लाल गौतम को सुनाते हुए और मोहम्मद सलाज अंसारी मझोलिया का विशेष उनको सुनाते हुए अभी विदा लेंगे। नमस्कार
1: जी। नमस्कार रेडियो रंजन में कॉल किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
1: hello, hello, hello, hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो।
6: नमस्ते मैडम,
5: 90.4 FM जी। नमस्ते।
6: अब उसी समय से मेहनत करते करते अभी लगा है।
5: अच्छा जी, बहुत ज्यादा देर से मेहनत कर रही हैं।
6: हाँ, वही वेरा से कॉल करते हैं।
5: तो
6: अब टाइम तो खत्म ही हो चुका है, थोड़ा भी बाकी है।
5: हाँ हाँ, बस एक मिनट।
6: हाँ, हमको गाना सुनना है।
5: बताइए।
6: ये थे कृष्ण भगवान के शोहर सुनना है हम लोग का।
5: मूवी का कोई शोहर हो तो बता दीजिए, और एल्बम होगा तो नहीं बजा।

0: होला है, यही गाना सुनना है।
1: ओके जी, तो गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
0: अभी घर के लोग और आपकी सुनवाना है।
1: आपका नाम?
0: मेरा नाम है सुमन कुमारी। मेरा एक अमन है भतीजा, और मेरे भाभी और मेरे बहन है, और मेरे एक भतीजी है, उसी को सुनाना है।
1: चलिए आपका गाना प्ले करेंगे।
0: आज बजाएंगे ना मैडम?
1: आज नहीं बजेगा, आज किसी और का प्रोग्राम चलेगा। मेरा कल चलेगा और परसों चलेगा।
0: अच्छा, बिहान चलेगा? चलिए ठीक है मैडम।

0: हेलो नमस्कार
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 94 एफएम में।
0: के लिए दिल से धन्यवाद है भाभी को। आप सुनाइए कैसे हैं
1: जी? हम तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं कुशवाहा बोल रहा हूँ, दुर्गापुर भी चंपारण से।
1: जी जी।
0: और मौसम कैसा है उधर?
1: इधर तो मौसम अभी ठीक है
0: जी। हमारे यहाँ तो बहुत अधिक धूप निकला हुआ है, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है।
1: धूप तो हल्का है इधर, ज्यादा नहीं
0: जी, लेकिन इधर बहुत अधिक है। ऐसा लग रहा है कि जून का माह चल रहा है वह सब घर परिवार में अच्छा है।
1: जी जी, सब घर परिवार में सही है।
0: जी जी, अच्छा रही है।
1: तो
0: गाना सुना दीजिए। फिल्म का नाम है दूध का स्वर्ग।
1: ओके।
0: और गाने का बोल है तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे।
1: और गाना किसी को सुनवाएंगे?
0: जी सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ। और दोस्त लोग संजय साजी, दीपक कुमार दास जी, रामचंद्र मुखिया जी, अंचल कुमार जी, कंसराज यादव जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू, विकास अभय कुमार, सुधीर कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, आदर्श कुमार, बबलू प्रसाद कुशवाहा जी, रविंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, और अभी भारती जी की प्रस्तुति कार्यक्रम सुन रहे हैं, सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
1: जी बिल्कुल। तो चलिए आप गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए थोड़ा सा।
0: जी धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 29 94 911। जी हाँ, 80 29 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: नमस्ते मैम
6: जी। नमस्ते,
5: हम थारो से बोल रहे हैं, रामाजी प्रसाद।
6: हाँ जी, क्या हाल चाल बा?
5: हाल चाल ठीक बा। विनोद भाई चालू है भाई?
6: हाँ,
5: और भाई चालू रहे भाई?
6: ना अब जाता नहीं चालू करे।
5: अच्छा, देखो दोनों में।
6: हाँ
5: हाँ, गाना सुना दे।
6: बता दी कौन सा गाना?
5: हम तुमसे मिलने आए मंदिर जाने के बहाने।
6: अच्छा, और गाना क्योंकि सुनवाओगे बात?
5: जितना रेडियो सुनता सब कुछ सुनी। रवा भले मन सुने?
6: ना ना, हम तो बिल्कुल सुने नहीं, हम तो पहले तो हम ही सुने। ठीक बात, अब गाना और प्ले करते नहीं, सुनत रहे रेडियो। थैंक यू। बंद कर
5: आखिरी कॉल हमारे।
6: हाँ
5: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: जी जी।
1: हाँ जी,
0: कृष्णा जी की जय।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, अपना सुनाइए।
1: जी हम भी ठीक है।
0: चलिए, काम है। आज हमारा गाना सुनने के बाद, भरत शर्मा के बहुत पुराने वो गाना है, जो करवा गई ले परदेश सखी और ससुरा से निक नहीं हटेगा। हेलो
1: जी, और गाना क्यों के सुनाऊं के बाद?
0: जितना लोग सुना था सब कोई सुनी, वो सुने हमारे मैडम बड़ी है जी, वो सुने। हेलो,
1: तो चलिए और गाना प्ले करते नहीं, सुनते ही रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: धन्यवाद।
1: ओके, गाना प्ले करते नहीं, एंजॉय करिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

आई गांव पर तो साया साड़ी ब्लाउज पाउडर वगैरह वगैरह चीज लोग भेज देला जे हमरा घरे ले जाकर मलकिनी के दे दी है। लेकिन जब वो सामान घरे पहुँचेला मलकिनी के हाथ में तो खुश ना होके बल्कि बहुत दुखी होली। उनका ये बुझा जाला कि वो अभी यहीं है ना, यही से सामान भेजले बड़े।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.

0: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजम 90.4 एफएम में।
2: कैसे मिलता
1: है? मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: हमारे भी ठीक है। खाना खा लिए?
1: हम तो खाना खा लिए हैं, आप बताइए।
2: हम भी खा लिए। अरे सब बताइए।
1: और सब तो ठीक है, बस सब कोई अपने अपने काम में लगे हैं।
2: हाँ, जुमा है।
1: तो कौन सा गाना सुनना है आज?
2: गाना अपना पसंद से सुना चाहिए।
1: अपने से कोई भी?
2: हिंदी गाना।
1: हिंदी गाना आज आप नहीं बताइएगा,
2: अपना पसंद से सुना दीजिए।
1: ओके, और गाना किसी को डेडिकेट भी करेंगे?
2: मेरा भाई बता रहा है।
1: तो बता दीजिए।
3: दिल जले का गाना।
1: और दिल जले का कौन सा गाना?
3: शाम है दूंगा।
1: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
3: आपको और बहन हेलो सभी को।
1: जी जी, तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं।
3: ठीक है।
1: वैसे आपका नाम?
3: अरमान आलम।
1: जी, तो
3: कब तक सुनाइएगा मैम?
1: ये आपको कल आएगा या फिर परसों आएगा?
3: ठीक।
1: ओके, रेडियो रमजम में कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM
1: नमस्ते मैम, कैसी
0: में। नमस्ते,
1: हैं मैम?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ मैम। आपको पहचान रही है?
0: हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ
1: बोल रहे हैं, आप पहचान रही हैं?
0: थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे याद था, भूल गए हैं।
1: बता दें,
0: हाँ बिल्कुल बताइए।
1: मनीषा कुमारी प्रिया सुंदर से।
0: अच्छा जी, हाँ क्या
1: अभी तो
0: हो रहा है मनीषा जी?
1: रेडियो सुन रही थी और अपना गाना सुन ली, बहुत अच्छा लगा मेरा गाना बजा।
0: चलिए बढ़िया, आपको अपना गाना सुनने को मिला, और क्या चाहिए।
1: सुनती है ना, ही बजता है तो अच्छा नहीं लगता है, जब बज जाता है तो इतना अच्छा लगता है।
0: तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा,
1: सुनवा दीजिए मधुर मेरे दिल की गोजा।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी
1: मैम गाना मालूम चल गया ना?
0: है। हाँ, चुप हो जा, हुआ तो हुआ।
1: जी मैम,
0: हाँ, आगे की लाइन मैंने बताया आपको,
1: क्या?
0: आप थोड़ा पीछे का बताइए और हम उसके आगे का बता दिए।
1: हाँ चलिए ठीक है, आधा आप बता दीजिए, हम
0: हाँ, तो गाना कंप्लीट हो जाएगा।
1: एक लाइन में आधा आधा गा दे रहे हैं। चलिए तभी है, खाना खा लिया ना? चलिए
0: हम खा के आते हैं। ओके,
1: तभी है,
0: तो
1: आप
0: गाना
1: सुनवा दीजिए।
0: जी बिल्कुल सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: मैम अपने घर में सब कोई को सुनवाना चाहती हूँ,
0: बिल्कुल,
1: और रेडियो सुनने वाले कभी दोस्तों को और कभी यार जी को।
0: ओके जी।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello,
1: hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: आपको भी बहुत बहुत स्वागत है मैम।
5: हेलो
6: मैम, गाना सुनना है मैम।
5: सुनाऊंगी, नाम भी बता दीजिए।
6: मेरा नाम यासुद्दीन अहमद है, चौराहे से बोल रहे हैं यासुद्दीन अहमद।
5: ओके ओके, और क्या हाल चाल है आपका?
6: अल्हम्दुलिल्लाह सब दुआ है, अपना बता दीजिए।
5: जी हम सब भी ठीक है।
6: जी फैली का दुकान है हमारा, फैली चलता है चौराहे।
5: अच्छा जी,
6: जी
5: तो बढ़िया है।
6: जी
5: कौन सा गाना सुनना है आपको?
6: गाना सुनवा दीजिए सनम बे वफाते, अल्लाह है करम करना, लिल्लाह है करम करना, परवरदिगार आलम तेरे रहम करना।
5: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
6: जी, और जितना रेडियो रंजीन में सुनने वाले लोग हैं सभी लोगों को सुनवाना चाहते हैं, और आप लोग
5: के भी। ठीक है, आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
6: बहुत दिन के बाद कॉल किया है मैम।
5: जी
6: बहुत दिन के बाद आज आपसे बात हो रहा है, पहली बार बात हो रहा है, थोड़ा सुनवा दीजिएगा।
5: जी जी बिल्कुल सुनवाएंगे। मेरा ये वाला कॉल आपको कल बजेगा और परसों बजेगा।
6: तो ठीक है, थोड़ा लास्ट में बजाइए जब कॉल हम सुन सके। ठीक है,
5: ओके
6: जी ठीक है, चलिए नमस्ते
5: नमस्ते।

0: जी मैम नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी मैम धन्यवाद। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं एमपी से।
1: जी क्या हो रहा है?
0: बस कुछ नहीं मैम, बस हम ट्राई कर रहे थे, बहुत कम दिन लग गए मैम। और मैम वहाँ का मौसम क्या हाल चाल है गोपालगंज
1: का? उधर का मौसम तो अभी थोड़ा बढ़िया है।
0: अभी बारिश वारिश नहीं हुआ मैम? हमारे यहाँ तो बारिश चालू मैम शाम।
1: नहीं अभी तो बारिश नहीं हुआ है, रात को हल्का मतलब थोड़ा बहुत बूंदे गिर रही थी।
0: जी जी जी जी। तो आज फरमाइश है फिल्म मुस्कान और गाने से बोला जाने मन से सबके, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिंगिंग जो लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
0: ओके मैम,
1: और
0: धन्यवाद मैम,
1: वेलकम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: क्या बोले थे? बुलाती है मगर जाने का नहीं।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: जय हो पवन कुमार, तेरी शक्ति है अपार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।